0: यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज बात करते हैं नींबू वर्गीय वृक्षों में जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी कमी के लक्षणों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गंधक की। इसकी कमी के लक्षण नई नई वृद्धि में प्रकट होते हैं। पौधे हल्के हरे से पीले पड़ने लगते हैं। गंधक की कमी का असर शुरू शुरू में जो नींबू वर्गीय फलों की वृद्धि होती है उस समय सबसे ज़्यादा होता है। गंधक के बाद जस्ता भी एक ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी कमी का प्रभाव नींबू वर्गीय फलों में पड़ता है। जस्ते की कमी से जो नई पत्तियां होती हैं उनका विकास सबसे पहले प्रभावित होता है, जो बाद में पीली और सूख जाती हैं। पत्तियों का छोटा गुत्थे का स्वरूप ले लेना, समय पूर्व पत्तियों का गिरना, पुरानी पत्तियों की शिराओं पर सफ़ेद पीली पत्तियां व ऊपर की पत्तियों का सफ़ेद होना जस्ते की कमी के कुछ सामान्य लक्षण हैं। अधिक प्रकोप की अवस्था में पत्तियां असामान्य रूप से संकरी व सीधी खड़ी रहती हैं व आकार में छोटी हो जाती हैं। इन पत्तियों का किनारा बहुत नुकीला हो जाता है। जैसे जैसे जस्ते की कमी बढ़ती जाती है पत्तियों पर इसका असर और साफ दिखता है। टहनियाँ बहुत पतली हो जाती हैं जो बाद में मर जाती हैं। जस्ते के बाद आइए बात करते हैं एक और सूक्ष्म पोषक तत्व लोहे के बारे में। पहले नई पत्तियों में अंतर शिराओं में सफ़ेद पीलापन प्रकट होता है जब लोहे की कमी होती है। फिर सभी खुली सतह पर क्लोरोसिस यानी ये सफ़ेद पीलापन फैलता जाता है। पत्तियां सूखने के पश्चात कुछ अवस्था में पूरी तरह से रंगहीन भी हो जाती है व सतह पूरी तरह से खुरदुरी हो जाती है। गंभीर अवस्था में पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है, पत्तियां कमज़ोर व पतली हो जाती हैं व गिर जाती हैं। लोहे की कमी से पेड़ों का जो ऊपरी भाग होता है वो सूख जाता है और मर जाता है व नीचे सामान्य रूप से पत्तियों का विकास होता रहता है। लोहे के बाद आइए अब देखें मैग्नीस की कमी के क्या लक्षण होते हैं नींबू वर्गीय फलों में। पीले धब्बे लिए शिराओं में हरी व पत्तियों के उत्तक में पीलापन सफ़ेदपन पहले पुरानी पत्तियों में प्रकट होता है, फिर अन्य पत्तियों में ये लक्षण धीरे धीरे फैल जाते हैं। मैग्नीस की कमी से तना पीला हरा व अक्सर कड़ा हो जाता है। नई पत्तियों में हल्की पीली पृष्ठभूमि में हरी शिराएं मकड़ी के जाले के समान दिखाई देती है। मैग्नीस की कमी से पत्तियां अक्सर आकार में बदलाव नहीं करती, लेकिन संक्रमित पत्तियां पेड़ से गिर जाती हैं। तांबे की कमी का भी असर नींबू वर्गीय फलों में होता है। सिरे के तंतु सूखने से इनकी मृत्यु हो जाती है। पत्तियों का रंग हल्का हो जाता है, कैरोटीन व अन्य पिगमेंट कम हो जाते हैं। असामान्य फैलाव लिए हुए बड़ी गहरी हरी पत्तियां, फल देने वाले टहनियों की पत्तियों के बीच की शिरा का पीली पड़ जाना आदि तांबे की कमी के लक्षण हैं। जहां तक मॉलिब्डनम का सवाल है, पत्तियों का हल्का पीला हो जाना यानी क्लोरोसिस इसका प्रमुख लक्षण है। पत्तियों का विकास रुक जाता है, पत्तियों के बढ़ने के साथ साथ पीले धब्बे पत्तियों पर पड़ जाते हैं। अधिक गंभीर अवस्था में ये लक्षण फल पर भी आ जाते हैं। बड़े असामान्य भूरे पीले धब्बे और कभी कभी रंगहीन धब्बे फलों पर विकसित हो जाते हैं। साथ ही गूदे पर भी इसका असर होता है। बोरोन की कमी से पौधों के ऊपर की पत्तियों के बीच में गांठ व अंत में गांठ छोटे हो जाते हैं। प्रायः पत्तियां काली होकर मर जाती है। जड़ें छोटी रह जाती हैं और उनकी दीवार मोटी हो जाती है। पौधे छोटे गुच्छे के रूप में विकसित हो जाते हैं। फूलों का विकास व बीज उत्पादन कम या लगभग नहीं के बराबर होता है। तो किसान भाइयों, ये तो कुछ लक्षण रहे सूक्ष्म पोषक तत्वों के जो कि प्रकट होते हैं नींबू वर्गीय फल वृक्षों में। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया, इन लक्षणों के प्रकट होने से पहले ही फलों पर इसका बुरा असर पड़ने लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि समय समय पर बागान के मिट्टी की जाँच करवाएँ और

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहलिंग कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केन्द्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार जन को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी

0: और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Nina Arakel. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality. The newly recruited candidates, selected from across the country, will be joining various ministries and departments, including Ministries of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidis have called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and for the early finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. In a joint statement issued after talks between the two leaders in New Delhi yesterday, both sides urged strong and coordinated action against all UN and EU designated terrorists and terrorist organizations, including those listed under the 1267 UN Security Council Sanctions Committee. As maritime nations with deep-rooted naval traditions, India and Cyprus also agreed to expand cooperation in the maritime domain. U.S. Secretary of State Marco Rubio will arrive in Kolkata today on a 4-day visit to India. This will be his maiden visit to India. During his stay in Kolkata, Mr. Rubio is expected to pay respects at Mother Teresa's cemetery. He is also likely to visit Victoria Memorial. Later, the U.S. Secretary of State will arrive in New Delhi and call on Prime Minister Narendra Modi. Tomorrow, Mr. Rubio will hold talks with External Affairs Minister S. Jaishankar in National Capital. He will also attend the U.S. Embassy's Independence Day celebrations. On Monday, Mr. Rubio is scheduled to visit Agra and Jaipur before returning to New Delhi to attend the Quad Foreign Ministers meeting on Tuesday, hosted by India. The Ministry of Petroleum and Natural Gas has said that India has adequate availability of petrol and diesel and supplies across the country remain stable. In a social media post, the ministry advised its citizens to avoid panic buying and to purchase fuel only as per actual requirement. It said any temporary pressure at a few retail outlets is being addressed through continuous supply, monitoring and coordinated distribution by oil marketing companies. The ministry further stated that responsible consumption and public cooperation will help ensure smooth fuel availability for all during the ongoing high demand period. Indian Army officer Major Abhilasha Barak, serving with the

जहाँ सरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार MV स्वराज द्वीप विशाखापट्टनम की यात्रा पर मंगलवार 26 तारीख को सवेरे 10 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। यात्रियों को जहाज में चढ़ाने का कार्य उसी दिन सवेरे 10 बजे से 9 बजे तक किया जाएगा। प्रशासनिक कारणवश MV सेंटिनल के स्थान पर अब MV भारत सीमा माया बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर आज रात 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल रविवार 24 तारीख को सवेरे दोपहर बाद 2 बजे डिगलीपुर से चलकर माया बंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। प्रशासनिक कारणवश सिंधु जलयान लिटिल अंडमान के लिए कल रविवार 24 तारीख को सवेरे 8 बजे के स्थान पर अब रात 10 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और सोमवार 25 तारीख को रात 9 बजे के स्थान पर अब सवेरे 10 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम वापस आएगा। ननकौरी होते हुए कैम्बल बे की यात्रा पर सिंधु जलयान मंगलवार 26 तारीख को सवेरे 9 बजे के स्थान पर अब बुधवार 27 तारीख को सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और गुरुवार 28 तारीख के स्थान पर अब शुक्रवार 29 तारीख को सवेरे 8 बजे कैम्बल बे से चलकर ननकौरी होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा।

भी हडबे, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए आज सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और कल रविवार 24 तारीख को सवेरे 7 बजे रंगत से चलकर उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी रानीचंगा आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा तथा दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा। यह जहाज दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। शहीद द्वीप के लिए एमवी रानी लक्ष्मी आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी आज शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कमोबुट्टा स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज संध्या 5 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और कल रविवार 24 तारीख को सवेरे 5:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा।

0: एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए कल रविवार 24 तारीख को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी रानीचंगा कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप के लिए कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी रानी लक्ष्मी कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा तथा दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। श्रोताओं, ये था जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:15 हुए हैं। पेश है इंद्रधनुष कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष

श्रोताओं नमस्कार। इंद्रधनुष कार्यक्रम में आज बातें छांव की। छांव यानी वो ठंडक जो हमें कड़ी धूप से बचाती है। गांव की आबोहवा आज भी ताजा है। सुबह उठते ही द्वार पर खड़ा नीम का पेड़ हरियाली देता है। नीम के पेड़ से छनकर आती ठंडी हवा ऐसे लगती है मानो सहला रही हो, और पगडंडियों पर खड़े पेड़ अपने डालियों की छांव में पथिकों की सारी थकान दूर कर जाते हैं।

कभी धूप कभी छांव, जिंदगी का यही तो नाम है। कभी सपनों की चमकती धूप तो कभी यादों की ठंडी छांव, कभी राहें आसान लगती हैं तो कभी सफर थका देता है, लेकिन हर मोड़ पर वक्त हमें कुछ नया सिखा देता है। जिंदगी के कई रंग हैं, जो कभी धूप सी ऊर्जा देती है तो कभी छांव सा सुकून।

0: भी था।
1: जीवन के सफर में एक सच्चा हम सफर भी बिल्कुल घने पेड़ की छांव जैसा होता है, जो हर मुश्किल में साथ निभाता है।

0: भी छा।
1: जीवन के सफर में एक सच्चा हमसफर भी बिल्कुल घने पेड़ की छांव जैसा होता है, जो हर मुश्किल में साथ निभाता है।

0: किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी में धूप तो आएगी ही, बस आपके पास सुकून की थोड़ी सी छांव होनी चाहिए। और अब आज का इंद्रधनुष कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: इंद्रधनुष।

आकाशवाणी का यशरी विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की 247वीं कड़ी।

अगस्त्य मुनि के एक परम ज्ञानी शिष्य थे सुतीक्ष्ण। उन्हें ये विश्वास नहीं होता था कि उन्हें भक्ति, वैराग्य अथवा ज्ञान कुछ भी प्राप्त है। चित्रकूट से पंचवटी जाते हुए श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण के दर्शन जब मुनि सुतीक्ष्ण को प्राप्त हुए तो अपने आश्रम में ले आकर उन्होंने अनेक प्रकार से अपने आराध्य की पूजा अर्चना की। फिर भी उन्हें संतोष नहीं होता था कि वे किस प्रकार प्रभु की विनती करें। नील कमल के समान श्री राम का शरीर है, जिस पर मुनियों जैसा वेश और सिर पर जटाओं का मुकुट सुशोभित है। सुतीक्ष्ण की कामना है कि मोह रूपी वन को भस्म करने वाली आग तथा संत रूपी कमलों के वन को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य के समान प्रभु सदा मुनिगण की रक्षा करें। संशय रूपी सूर्य को ग्रसने के लिए प्रभु गरुड़ हैं। अत्यंत कठोर तर्क से उपजने वाले विषाद का वो परिष्कार करते हैं। यद्यपि उनका निर्मल, व्यापक तथा अविनाशी रूप भक्तों के हृदय में सदा निवास करता है, फिर भी मुनि सुतीक्ष्ण प्रभु के वनवासी रूप को ही अपने हृदय में बसाना चाहते हैं।

श्रोताओं, अभी आप रामचरित मानस गान की 247वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर व संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:40 हुए हैं। पेश है वतन के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत देश गान।

श्रोताओं, अभी आप वतन के गीत कार्यक्रम के तहत देश गान सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं।

मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं को मौसम के बारे में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में कहा जाता है कि खराब मौसम के चलते अंडमान सागर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेंगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जिसके कारण मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे समुद्र में ना जाएं। कल सुबह तक के मौसम के बारे में अनुमान है कि द्वीपों के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। आइए अब एक नजर डालते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से कुछ देर बाद यानी सवेरे 7 बजे आप सुनेंगे जन सूचनाएं। 7:05 पर होगा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। देशभक्ति फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागनी का आप आनंद ले पाएंगे सवेरे 7:15 पर, और साथ ही विविध भारती मुंबई से होगा प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर आप सुन पाएंगे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। विषय रहेगा जबड़ों के जोड़ का दर्द, कारण बचाव और उपचार। विशेषज्ञ होंगी ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर प्रतीक्षा मल्होत्रा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 8:30 पर फनकार होंगे कविता पौडवाल, जसवंत सिंह, मोहम्मद अजीज, मनहर उदास और मेहदी हसन। 9 बजे आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। पॉडकास्ट श्रृंखला आप सुन सकेंगे 9:10 पर, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 9:35 पर जयालक्ष्मी संतानम का कर्नाटक शैली में गायन होगा। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम कशिश का समय रहेगा सवेरे 10 बजे। दिन के 11 बजे आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। गीत अतीत कार्यक्रम का समय रहेगा दिन के 11:30। दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम में फिल्मी गीत आप सुनेंगे। मलयालम में भी 12:30 पर फिल्मी गीत आप सुन सकेंगे। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में फनकार होंगे नीना मेहता और राजेंद्र मेहता। व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के पश्चात प्राइमरी चैनल पर पहली सभा का समापन होगा, लेकिन 100.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम पर हमारा स्थानीय प्रसारण जारी रहेगा, जिसमें फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा नॉन स्टॉप म्यूजिक, और दोपहर बाद 3:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम से, जिसमें लोकप्रिय गीत आप सुनेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे का समय रहेगा 4:30। 4:40 पर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा। बहारों की शाम कार्यक्रम का आप लुत्फ उठा पाएंगे शाम 4:45। 6:30 पर आप सुनेंगे आमने सामने कार्यक्रम। श्री दिलीप सिंह की लिखी झलकी चोर के घर मोर आप सुनेंगे संध्या 6:45 पर। युवाणी के अंतर्गत कार्यक्रम होगा ऐसा भी होता है। रात 8 बजे आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत, और रात 10 बजे विविध भारती मुंबई से होगा प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:15

मिनट पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम के तहत विज्ञान भारती और रात 10 बजे संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत चंगना शेरी सीपी माधवन नंबूथिरी का कर्नाटक शैली में गायन होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्येषश्च आतंकवादं निवारणाय बहुपक्षीय प्रयासानां सुदृढीकरणाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघस्य संरचनान्तर्गतं अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादस्य विषये समग्र सम्मेलनं शीघ्रमेव अन्तमीकृत्य स्वीकर्तुम् आहूतवन्तौ। ह्यः नवदिल्ल्याम् उभयोः नेत्रोः मध्ये वार्तायाः अनन्तरं प्रदत्ते संयुक्त वक्तव्ये उभौ पक्षौ संयुक्त राष्ट्रसंघे तथा यूरोपीय संघे च निर्दिष्टानाम् आतंकवादिनाम् आतंकिसंघटनानां च विरुद्धम् अपि च संयुक्त राष्ट्रसंघस्य सुरक्षा परिषद् प्रतिबन्ध समित्याः अन्तर्गतं सूचीबद्धानां 67,200+ यावत् आतंकिसंघटनानां विरुद्धं प्रबलं समन्वितं च कार्याचरणाय आग्रहं कृतवन्तौ।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: उभौ पक्षौ साइबर सुरक्षायाम् अपि च उदयोन्मुख प्रौद्योगिक्यां विशेषावधानेन सह रक्षा उद्योगयोः मध्ये सहयोगेन सह रक्षा सुरक्षा सहकारं सुदृढीकरणेऽपि सहमतौ अभवताम्। अस्मिन् सन्दर्भे साइप्रस डिफेंस एंड स्पेस इंडस्ट्रीज क्लस्टर तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इत्येतयोः मध्ये संधिपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य 21वें रोजगार मेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000+ नियुक्तिपत्राणां वितरणं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति आभासीय माध्यमेन करिष्यति। अमेरिकादेशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो इत्येषः अद्य भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां कोलकातानगरं आगमिष्यति। इदं तस्य प्रथमं भारत पर्यटनं भविष्यति। कोलकातानगरे प्रवासावधौ श्रीरूबियो वर्येण मदर टेरेसा वर्यायाः समाधिस्थले श्रद्धाञ्जलिः अर्पणस्य अपेक्षा अस्ति। सः विक्टोरिया स्मारकमपि द्रष्टुं शक्नोति। पश्चात् अमेरिकादेशस्य विदेश सचिवः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मेलनं विधास्यति। श्वः श्रीरूबियो राष्ट्रिय राजधान्यां विदेश मन्त्रिणा एस जयशंकरेण सह वार्तालापं करिष्यति। सः अमेरिकादेशस्य दूतावासस्य स्वातन्त्र्यदिवसोपलक्ष्ये आयोजिते कार्यक्रमेऽपि भागं ग्रहीष्यति। सोमवासरे श्रीरूबियो वर्यः आगरा जयपुर नगरयोः भ्रमणं करिष्यति। तत्पश्चात् मंगलवासरे भारते आयोजिते क्वाड विदेशमन्त्रिणां सभायां भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां प्रत्यागमिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य पूर्वीय मध्यप्रदेशे पूर्वीय उत्तरप्रदेशे विदर्भे च तीव्रतर उष्णतरंगस्य स्थित्यै रक्तवर्णीय

0: सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। अद्य दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरंगस्य स्थित्याम् आईएमडी विभागेन नारंगवर्णीया संचेतना प्रदत्ता अस्ति। तटीये आन्ध्रप्रदेशे, तेलंगानायां, पश्चिम मध्यप्रदेशे, पश्चिम उत्तरप्रदेशे च अद्य दिने तथैव स्थितिः भविष्यति। अद्य दिल्ल्याम् अधिकतमं तापमानं 45 डिग्री सेल्सियस यावत्, न्यूनतम तापमानं 27 डिग्री सेल्सियस यावत् भवितुं शक्नोति। अन्त्यक्रीडावार्तायाम् आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलेन हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुदलं 55 धावनांकैः पराजितम्। अद्य सायं सार्ध सप्तवादने लखनऊ नगरे पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स दलयोः मध्ये क्रीडा भविष्यति। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और एफएम 100.9 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं, लीजिए सुनिए जन सूचना।

आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 16.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 95% और न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 31.5 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय 4:54 पर हुआ व सूर्यास्त का समय रहेगा 5:38। अब जायजा लेते हैं उड़ान संबंधी जानकारी का। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान उड़ान संख्या 2937 दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और यात्री विमान उड़ान संख्या 2936 श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए अपनी उड़ान भरेगा दिन के 11:40 पर। श्रोताओं, ये थी एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। श्रोताओं, आपको फिर से बता दें, देशभक्ति फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागनी का आप आनंद ले पाएंगे सवेरे 7:15 पर व साथ ही विविध भारती मुंबई से होगा प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सात बजकर 7:30 पर आप सुन पाएंगे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। विषय रहेगा जबड़ों के जोड़ का दर्द, कारण, बचाव और उपचार। विशेषज्ञ होंगी ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर प्रतीक्षा मल्होत्रा। श्रोताओं, अगर आप भी इस कार्यक्रम के जरिए अपने प्रश्नों के जवाब चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 2325582325585।

9 बजे आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। पॉडकास्ट श्रृंखला आप सुन सकेंगे सवेरे 9:10 पर, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कशिश का समय रहेगा सवेरे 10 बजे। दिन के 11 बजे आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। गीत अतीत कार्यक्रम का समय रहेगा 11:30।

0: जन सूचनाएं समाप्त हुई। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। सूचना प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा चलचित्र अंडमान निकोबार फिल्म फेस्टिवल का कल उद्घाटन किया गया। कला एवं संस्कृति निदेशालय द्वारा अंडमान निकोबार संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। मत्स्य निदेशालय एक्सप्रेस पास आवेदन शिविर का आयोजन कर रहा है और जहाज एमवी स्वराज द्वीप वाइजैक के लिए 26 मई को सुबह 10 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। सूचना प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से आयोजित पहला चलचित्र अंडमान निकोबार फिल्म फेस्टिवल कल भारतीय मानव सर्वेक्षण सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव डॉ. चंद्रभूषण कुमार मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर निदेशालय की आयुक्त सह सचिव चंचल यादव, दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त पूर्वा गर्ग, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, फिल्म निर्माता शिवांगी सिंह और राहुल काले उपस्थित थे। मुख्य सचिव ने अपने संबोधन में कहा कि वीकेंड फिल्म फेस्टिवल की ये पहल सिनेमा प्रेमियों के लिए एक जीवंत माहौल बनाने में मदद करेगी और दर्शकों के बीच सार्थक फिल्मों तथा कहानी कहने की कला की सराहना को प्रोत्साहित करेगी। मुख्य सचिव ने बताया कि इस वीकेंड फिल्म फेस्टिवल के दौरान विभिन्न भाषाओं की फिल्में दिखाई जाएंगी। ये फेस्टिवल 21 जून तक हर शुक्रवार और शनिवार को आयोजित किया जाएगा। उन्होंने फिल्म प्रेमियों से आग्रह किया कि वे न केवल फिल्मों की स्क्रीनिंग का आनंद लें बल्कि फिल्म निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर आयोजित होने वाली कार्यशालाओं में भी भाग लें। इस फेस्टिवल में प्रशंसित फिल्मों की स्क्रीनिंग के साथ साथ इंटरैक्टिव सत्र और कार्यशालाएं भी शामिल हैं जिनका उद्देश्य स्थानीय दर्शकों और युवाओं के बीच सिनेमा और फिल्म निर्माण में रुचि जगाना है। आज दिन में 11 बजे सलाम बॉम्बे फिल्म का पहला शो और शाम 5 बजे RRR फिल्म के दूसरे शो की स्क्रीनिंग की जाएगी। फिल्म महोत्सव के एक हिस्से के रूप में फिल्मों की स्क्रीनिंग से पहले विभाग द्वारा एक विशेष शॉर्ट फिल्म निर्माण कार्यशाला आयोजित की जाएगी जो पूरी तरह निःशुल्क होगी। कला एवं संस्कृति निदेशालय द्वारा पुराने राज्य पुस्तकालय भवन में अंडमान निकोबार संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। संग्रहालय में द्वीपों की सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित और प्रदर्शित किया जाएगा। विभाग ने आम जनता से प्राचीन वस्तुएं, पुराने दस्तावेज, पांडुलिपियां, कलाकृतियां और अन्य ऐतिहासिक स्मृति चिन्ह उपलब्ध कराने की अपील की है। वस्तुओं की प्रमाणिकता की जांच कर चयनित वस्तुओं को संग्रहालय में रखकर प्रदर्शित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कला एवं संस्कृति विभाग से संपर्क किया जा सकता है। वाइस एडमिरल अजय कोचर अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद और वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के तौर पर अपनी नई जिम्मेदारी संभालने से पहले कल लोक निवास में उपराज्यपाल से मुलाकात की। उपराज्यपाल ने उनके कार्यकाल के दौरान प्रशासन को दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से ग्राम पंचायतों में विशेष आधार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 25 और 26 मई को शोलबे में आधार शिविर लगेगा। आम जनता से इन विशेष आधार शिविरों का लाभ उठाने को कहा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है मत्स्य और जहाज। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रतिघंटा न्यूज़ हेडलाइंस FM रेडियो

पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मत्स्य निदेशालय सभी हितधारकों के लिए एक्सेस पास आवेदन शिविर का आयोजन कर रहा है। इस शिविर में विशेष आर्थिक क्षेत्र में मत्स्य नौकाओं के संचालन के लिए मौजूदा प्रावधानों के अनुसार 24 मीटर और उससे अधिक की कुल लंबाई वाली सभी मोटरयुक्त मत्स्य नौकाओं और सभी मशीनीकृत मत्स्य नौकाओं को EEZ के मत्स्यन कार्य के लिए एक्सेस पास प्रदान किया जाएगा। फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया के समन्वय से आज सुबह 10 बजे फिश लैंडिंग सेंटर जंगली घाट में आयोजित इस शिविर में विभाग नौका मालिकों और मछुआरों को रियल क्राफ्ट पोर्टल के माध्यम से एक्सेस पास के आवेदन जमा करने में मौके पर ही प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करेगा। सभी पात्र मशीनीकृत मत्स्य नौकाओं के मालिकों और संचालकों जिन्होंने अभी तक एक्सेस पास प्राप्त नहीं किया है वे इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए फिश लैंडिंग सेंटर से संपर्क किया जा सकता है। जहाज MV स्वराजद्वीप वाइजैक के लिए 26 मई को सुबह 10 बजे श्रीविजयपुरम से रवाना होगा। अतिरिक्त सामान की जांच व लोडिंग 25 मई को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक की जाएगी। यात्रियों को जहाज पर चढ़ाने का कार्य जहाज रवानगी के दिन सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच होगा। दक्षिण अंडमान जिले में सिविल डिफेंस वॉलंटियर के तौर पर भर्ती के लिए सीधे साक्षात्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 18 से 40 वर्ष के 10वीं कक्षा पास उम्मीदवार जो दक्षिण अंडमान जिले का निवासी हो वे इसके लिए पात्र हैं। उन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने नेशनल वॉलंटियर फोर्स, होमगार्ड या केंद्र सरकार के सशस्त्र बलों में सेवा दी हो। आवेदन जिला नियंत्रण कक्ष में जमा किए जा सकते हैं। साक्षात्कार की तारीख, समय और जगह की घोषणा बाद में की जाएगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की ओर से वनस्पति उद्यान में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय प्रमुख डॉक्टर लालजीत सिंह द्वारा औषधीय वृक्ष लगाए गए। इस कार्यक्रम में स्कूली छात्रों के लिए एक चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें 10 से अधिक स्कूली छात्रों, क्षेत्रीय केंद्र के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों तथा स्थानीय लोगों ने भाग लिया। बच्चों की देखभाल और सुरक्षा अधिनियम 2015 के तहत संस्थागत देखभाल को मजबूत करने पर एक 2 दिवसीय कार्यशाला हाल ही में आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य बच्चों की देखभाल और सुरक्षा अधिनियम 2015 के कार्यान्वयन को मजबूत करना और द्वीप समूह में बाल संरक्षण सेवाओं में लगे हितधारकों की क्षमता को बढ़ाना था। कार्यशाला के दौरान संस्थागत देखभाल, बाल संरक्षण तंत्र, पुनर्वास सेवाओं, वैधानिक प्रक्रियाओं और जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम के तहत सर्वोत्तम प्रथाओं से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कम्युनिटी मेडिसिन विभाग एनिम्स की ओर से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर के सहयोग से हाल ही में 2 प्रमुख समुदाय आधारित रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। कार्यक्रम में एनिम्स के निदेशक डॉक्टर मुकेश त्रिपाठी मुख्य अतिथि थे। परियोजना का उद्देश्य एक जीवन रक्षक कौशल को सीधे महिलाओं के अपने घरों में ही उनके हाथों तक पहुंचाना है। इस प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व मुख्य अन्वेषक डॉक्टर अजय राज एस और डॉक्टर समर हुसैन कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट संकलित किए जाने के बाद द्वीप समूह में भविष्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों के लिए एक संदर्भ बिंदु का काम करेंगे। अंडमान निकोबार राज्य ओलंपिक संघ की ओर से मई जून माह में जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। श्री विजयपुरम में आयोजित होने वाले जिला जूनियर रग्बी 7 फुटबॉल चैंपियनशिप 30 मई को खेली जाएगी जिसके पंजीकरण की अंतिम तिथि 29 मई है। इसके अलावा जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए 29 मई, ओपन सीनियर स्टेट रग्बी 7 चैंपियनशिप के लिए 5 जून और जिला योग चैंपियनशिप के लिए 12 जून तक पंजीकरण किया जा सकता है। इच्छुक प्रतिभागी संघ से संपर्क कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा चलचित्र अंडमान निकोबार फिल्म फेस्टिवल का कल उद्घाटन किया गया। कला एवं संस्कृति निदेशालय द्वारा अंडमान निकोबार संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। मत्स्य निदेशालय एक्सेस पास आवेदन शिविर का आयोजन कर रहा है और जहाज MV स्वराजद्वीप वाइजैक के लिए 26 मई को सुबह 10 बजे श्री विजयपुरम से रवाना

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है देशभक्ति फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी।

इस कार्यक्रम में मैं शवान आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमें अपने देश के वीर शहीदों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपनी जान देकर हमें आज़ादी दिलाई। इसलिए कहते हैं कि खून से लिखी है कहानी वतन की, वीरों ने दी है निशानी वतन की, आज भी गूंजती है उनकी आवाज़, जान से बढ़कर है शान वतन की।

दोस्तों, ऐसा देश है हमारा जहाँ प्यार बसता है, हर दिल में एक नया सपना सजता है, रंगों से भरा एक त्योहार, यहाँ हर रिश्ता लगता है प्यार। मिट्टी की महक है सबसे खास, इस देश पे है हमें पूरा विश्वास।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय सुबह के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।

0: हेलो डॉक्टर के इस कार्यक्रम में मैं शबाना आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम ऐसी स्वास्थ्य समस्या पर चर्चा करने जा रहे हैं जो देखने में छोटी लगती है, लेकिन समय पर ध्यान ना देने पर खाने, बोलने और यहां तक कि सोने तक में परेशानी पैदा कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा विषय है जबड़ों के जोड़ का दर्द, कारण, बचाव और उपचार, जिसे मेडिकल भाषा में TMJ कहा जाता है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर प्रतीक्षा मल्होत्रा। मैम, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: दोस्तों, जबड़ों के जोड़ का दर्द, कारण, बचाव और उपचार, इस विषय से संबंधित अगर आपकी कोई भी समस्याएं, परेशानी या प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम। हमारा फोन नंबर है 2325582528, जो कि खुले रहेंगी अब से लेकर सुबह 8 बजे तक, और हमारा STD कोड है 03192। तो मैम, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि ये जबड़ों के जोड़ का दर्द या TMJ जॉइंट पेन क्या होता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं?
1: TMJ जैसे हमारे शरीर में बाकी जोड़ होते हैं, वैसे ही TMJ जो टेम्परोमैंडिबुलर जॉइंट जिसे हम बोलते हैं, ये हमारे जबड़ों के जॉइंट होते हैं।
0: जी,
1: हमारे शरीर में हर जॉइंट अलग अलग होते हैं, जैसे आपके दाएं हाथ का जॉइंट अलग है और बाएं हाथ का जॉइंट अलग है, बट हमारे जबड़े में ही एक ऐसा जॉइंट है तो जो दो जॉइंट्स एक साथ काम करते हैं।
0: जी।
1: तो अब जिस जो और वो ऐसा जॉइंट है जो पूरे दिन काम करता है, जब आप बात करते हैं, जब आप खाते हैं या निगलते हैं या उबासी लेते हैं, तो वो 24 आवर्स ये जॉइंट एक्टिव रहता है। इवन जब हम सो रहे होते हैं तो ये जॉइंट सिर्फ सोते समय रिलैक्स होता है, बट कईयों को जो जैसे चबाने की आदत होती है तो उनका जॉइंट उस समय भी एक्टिव रहता है। तो इसलिए ये जॉइंट हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण जॉइंट है, बट इसमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये लोगों को जल्दी समझ में नहीं आते।
0: जी,
1: क्योंकि ये हमारे फेस में है, हमारी कंप्लीट हमारे सर से जुड़ा हुआ है, तो अगर किसी पेशेंट को या किसी मरीज को इस जॉइंट में तकलीफ होती है तो यदि वो कान दिखाने जाते हैं, वो दांत दिखाने जाते हैं, वो सर के लिए भी जाते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता कि ये जबड़े का प्रॉब्लम है।
0: जी, तो exactly, इसलिए नहीं चलता है।
1: और इसके कई सारे कारण होते हैं इनके प्रॉब्लम्स के, जो मैं आपको आगे बताती जाऊंगी।
0: जी मैम, मेरा अगला सवाल है कि जबड़ों के दर्द में मतलब कौन कौन से संकेत है और लक्षण दिखाई पड़ते हैं जिससे कि मरीज इसे समझ सके कि वे जबड़ों के बीमारी से ग्रस्त हैं?
1: देखिए, सबसे पहले तो अगर किसी पेशेंट को पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है,
0: जी,
1: अगर उबासी लेते समय दर्द होता है या चबाते समय दर्द होता है कानों में,
0: जी,
1: तो ये एक संकेत है कि आपको जबड़े के दर्द, जबड़ों का प्रॉब्लम शुरू हो रहा है।
0: जी।
1: दूसरी चीज़ है कि कानों में इचिंग होना। मोस्टली ऐसे में क्या होता है, ये सारे सिम्टम्स लेके जो पेशेंट है वो एक कान के डॉक्टर के पास ही जाते हैं दिखाने, बट आज के टाइम में हमारी फैसिलिटीज इतनी बढ़ गई है एंड डॉक्टर्स के बीच में कम्युनिकेशन इतना बढ़िया हो चुका है कि जो ENT सर्जन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनको ये पता होता है कि ये जॉइंट प्रॉब्लम है, तो इसीलिए वो एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन को रेफर कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, अगर किसी पेशेंट को ये समझ आ रहा है कि मेरे कानों में भी दर्द है बट जब मैं चबाती हूँ तो तब मुझे ये दर्द शुरू होता है, और साथ ही साथ में चबाने के बाद में मेरी सारे फेस की मांसपेशियों में जकड़न होने लगता है, एंड दूसरे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक क्लिक साउंड, जिसे हम टक टक जैसे मुंह खोलते समय या बंद करते समय एक साउंड को हम फील करते हैं, तो ऐसे जो सिम्टम्स होते हैं ना, ये आपके जबड़ों के प्रॉब्लम्स के इनिशियल सिम्टम्स हैं।
0: जी,
1: अब आते हैं एडवांस में। कई पेशेंट्स क्या होते हैं, जब इनिशियल सिम्टम्स को पार कर जाते हैं, वो समझ नहीं पाते कि मुझे ये तकलीफ था, उन्हें लगता था अरे वो फंस गया, अरे हम सो नहीं पाए या कुछ ऐसी तकलीफ हो गई थी इसलिए टक हो रहा था, तो वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते कि जो एक क्लिक साउंड है ये बेसिकली एक सिम्टम है आपका TMJ प्रॉब्लम का। तो जब वो उस स्टेज को पार कर जाते हैं एंड सेकेंड स्टेज में आते हैं, तब शुरू होती है आगे की प्रॉब्लम्स, जैसे लॉकिंग, मुंह खुला है,

0: सडनली उबासीली मुंह बंद नहीं हो रहा है. ऐसे हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो मॉर्निंग में उठते हैं उनका लॉक हो गया है एंड देन जबड़ा अटक गया है. तो उन जॉइंट्स को फिर क्या करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने आप से अपने जगह पे पोजीशन में जाते नहीं है और अंदर का जो डिस्क होता है वो भी घिसा हुआ होता है क्योंकि ये एडवांस स्टेज में पहुंच गया है. तो जब एडवांस स्टेज में डिस्क घिस जाता है तो वो अपने आप से जो जबड़ा है वो डिस्क से बाहर आ जाता है. तो उस समय पेशेंट खुद से अपने जबड़े को मैनिपुलेट करके अंदर नहीं कर पाता है, तो उस समय हमें उसे मैनिपुलेट करके जबड़े को जगह पे लेके आना पड़ता है. तो दीज आर वेरी एडवांस स्टेजेस. और लास्ट स्टेज होता है कि एनकाइलोसिस हो, मतलब ये आपका जबड़े का प्रॉब्लम स्टार्ट होते होते होते जब डिस्क पूरी तरह से घिस चुका होता है, कम्प्लीटली उसमें कुछ भी नहीं बचता है दोनों जॉइंट्स के बीच में, तब क्या होता है, हम एनकाइलोसिस होता है, यानी दोनों जबड़े जुड़ भी जाते हैं. तो कईयों में क्या होता है कि मुँह बंद, अगर मुँह खुलता है तो बंद नहीं होता है, कईयों में ऐसे होता है कि मुँह खुलता ही नहीं है. सो दीज आर सम साइंस एंड सिम्टम्स जो हमको देखना है कि अगर किसी पेशेंट को ये तकलीफ है तो उन्हें ये समझना है कि मैं कौन सी स्टेज में हूँ, कहाँ से मेरी कौन से स्टेज में मैं पहुँचाऊँ, या मुझे ये तकलीफ हो रही है तो मैं कहाँ जाऊँ, किसे दिखाऊँ. तो ये सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है.
1: जी, हम यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे, एक कॉल ले लेते हैं. हेलो.
2: हेलो, नमस्कार.
1: नमस्कार, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: मैं शिमला से राकेश बात कर रहा हूँ.
1: जी राकेश जी, हमारी मैम बैठी हुई है, आपकी क्या प्रश्न है उनसे पूछिए.
2: जी, तो मेरा मैम साहब से प्रश्न है कि जैसे कि जबड़े की जो मुंह के समय अगर स्पेलिंग आती है और कई बार लोग कहते हैं गर्म सेक देते हैं ताकि थोड़ा हमें राहत मिल जाए, ऐसे में जो जरा स्पेलिंग आती है तो क्या करना चाहिए?
1: स्वेलिंग आती है तो क्या करना है करके पूछ रहे हैं.
0: राकेश जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको. जी देखिए, जब स्वेलिंग आपके फेस में आती है तो पहले ये देखना होता है कि वो किस रीज़न से आ रही है. अगर आपको जबड़े के दर्द की वजह से स्वेलिंग है और आपको पहले इस चीज़ का डायग्नोसिस करवाना है कि ये जबड़े का ही दर्द है या ये दांत का दर्द है, तो लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. अगर हमारे दांतों में कुछ इन्फेक्शन है या हमारे जो जबड़े में कोई भी दांत में कीड़े लगे हुए हैं जिसके वजह से पस हो गया है या इन्फेक्शन हो गया है, तो ऐसी कंडीशंस में हम कभी भी गर्म से नहीं सेकते, क्योंकि वो क्या करता है, हमारे मुंह के अंदर के पस को बढ़ाता है. बट हाँ, जैसे आपने कहा, अगर जब जोड़ों में दर्द है, जोड़ों की तकलीफ है, कानों के पास में दर्द है, आपको पर्टिकुलरली पता है या आपका डायग्नोसिस हो चुका है कि हाँ आपको जॉइंट में ही पेन हो रहा है, तो गर्म से सेकना सही है, वो सही ट्रीटमेंट है. बट जब आप उसी चीज़ को दांतों के उसमें यूज़ करते हैं तो वो उल्टा काम करता है, वो पस को बढ़ाता है.
2: धन्यवाद जानकारी देने के लिए.
0: थैंक यू
1: राकेश जी. उम्मीद करते हैं आपको अपने प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे. मैम, जैसे कि अभी राकेश जी ने बताया है कि सेक लेते हैं, अगर उनको जो है किसी भी पेशेंट है उनको जो है अचानक से दर्द हो गया घर पे, तो ऐसे क्या आसान उपाय अपनाकर, मतलब शुरुआत में जो है थोड़ी राहत, कम से कम डॉक्टर के पास जाने से पहले थोड़ा राहत मिल जाए, वैसे घर पे क्या उपाय अपनाएं?
0: मैडम, इसमें तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपके पास में कोई पहले डॉक्टर है तो आप सबसे पहले डॉक्टर के पास ही जाइए. बट अगर ऐसे वर्स्ट कंडीशन में ऐसा है कि आप काफ़ी दूर है आप, या रात के टाइम में ऐसी तकलीफ हो रही है, तो अभी के लिए सिर्फ एक रात के लिए या कुछ टाइम के लिए एक दर्द की दवा लेते हैं तो वो उन राहत देता है, दे सकता है. बट क्या होता है कि जब पेशेंट को एक एक्टिव सिम्टम में पेशेंट होता है, जब वो उनको दर्द होता है या क्लिक होता है या सूजन ज़्यादा रहती है या मांसपेशियों में जकड़न रहता है, तो वो सही टाइम होता है कि हम उनको डायग्नोस कर पाते हैं. जब एक पेशेंट पूरी तरह से राहत में ही आता है और कह रहा होता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम हुई थी, कल ऐसे क्लिक हुआ था, तो उस समय डायग्नोसिस हमारे लिए मुश्किल पड़ जाता है. क्योंकि सिर्फ जैसे आपको लगा होगा कि जबड़ों के जॉइंट, जबड़ों का जो प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ एक या दो नहीं है, इसमें कई तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं. जैसे मैंने कहा, इंटरनल डीरेंजमेंट, डिस्क डिस्प्लेसमेंट होता है, टीएमजे एनकाइलोसिस होता है, मोबिलिटी होती है. दिस इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, ठीक है, लेकिन देखने में ये बहुत ही छोटा सा लगता है कि अरे तो जबड़े ही है, जॉइंट्स ही तो है. बट इट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, क्योंकि ये डेली यूज होने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट जॉइंट है. जैसे मैं बार बार कहती हूँ, सारे पेशेंट्स को कहती हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसके बारे में जानना, इसका सही इस्तेमाल करना, इसका इसके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. एंड इनिशियली जैसे आपने पूछा, अगर कोई दर्द है तो पैरास्टामोल ले लिया या दर्द की दवा ले ली, एंड नेक्स्ट डे आके डॉक्टर को दिखा दिया अपने एक्टिव सिम्टम में, ये बहुत ज़रूरी है.

0: जी, क्या जबड़ों के दर्द जो है शरीर के दूसरे अंगों को भी प्रभावित कर सकते हैं? अगर है तो वो कौन कौन से अंगों में दिखाई पड़ता है?
1: डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि जैसे अगर आपको जॉइंट में पेन है, तो अगर हम अपना अपने शरीर के एनाटॉमी को देखें, फेस के एनाटॉमी को देखें, तो हमारा जो जॉइंट है वो हमारे सर से कनेक्टेड है
0: जी,
1: हमारे गर्दन के पास से कनेक्टेड है, हमारे कानों से कनेक्टेड है. तो अगर एक जॉइंट इतने एरिया से कनेक्टेड है तो वो उतने एरियाज को इफेक्ट करता है.
0: जी,
1: कई बार पेशेंट को सिवियरली पेन, सर का दर्द होता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, नस में प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, झंझनाहट होती रहती है कानों में, पेशेंट सो नहीं पाते हैं, फिर कानों से भी बस पानी निकलती है. कानों से कई बार ऐसे होता है कि पानी कंटिन्यूसली डिस्चार्ज होता रहता है, उनको कानों में पेन होता है. ऐसे भी सिम्टम्स हमने देखे कि पेशेंट को बहुत सिवियर केसेस में कंटिन्यूसली अगर उस पर घिसते घिसते हेयर लॉस भी मैंने देखा है. साथ ही साथ में आप समझिए, ये फेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है.
0: जी,
1: तो यदि अगर आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम होता है, आपका जॉइंट ठीक से खुलता नहीं है, आपकी मांसपेशियों में जकड़न रहता है, तो आपका फेस कैसा दिखेगा? करेक्ट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पेशेंट्स के लुक्स भी में भी फर्क पड़ता है, पेशेंट के अपियरेंस में फर्क पड़ता है, वो उनका फेस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. साथ ही साथ में बच्चों में हमने जैसे देखा है, अगर छोटे बच्चे हैं, कई एजेस में हर एक एज में प्रॉब्लम्स होते हैं, तो जैसे छोटे बच्चों में हमने देखा है कि एयरवे, उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि उनका जॉ छोटा होता जाता है, मुंह खुलता नहीं है. अगर मुंह खुलता नहीं है तो खाने पीने में दिक्कत होती है, तो साथ ही साथ आपका शरीर भी गिरता है, क्योंकि मुंह तो हमारा पूरे घर का दरवाजा है, तो उसको दरवाजे को तो अच्छा खासा रखना ही है. तो इसलिए इस एक सिर्फ एक जॉइंट के वजह से कंप्लीट बॉडी में इफेक्ट होता है. जो स्पाइन का पोस्चर है, पेशेंट जो है अगर जॉइंट का पेन होता है, उसे कंटिन्यूसली चक्कर आते रहते हैं, स्पाइन का पोजीशन चेंज हो जाता है, वो दर्द को कॉम्पनसेट करने के लिए टेढ़े मेढ़े पोजीशंस में बैठते हैं, तो सिर्फ एक जॉइंट के पेन के वजह से स्पाइनल पोजीशंस में भी चेंजेस होते हैं. तो ये कई सारे डीप डिटेल्स है जो एक पेशेंट्स में हमने देखे हैं, एंड इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको इसके बारे में समझा जाए, इसके बारे में जाना जाए, जागरूकता हो कि ये जॉइंट प्रॉब्लम्स इतने डेंजरस क्यों हैं.
0: जी, मतलब कौन से आयु वर्ग में लोगों में जो है जबड़ों के दर्द की होने की संभावना रहती है? किन वर्ग में लोगों को ज़्यादा देखी जाती है?
1: वैसे तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सच बताओ तो पहले एक डेटा होता था कि 18 से 40 साल के लोगों में देखा जाता है, बट अब ऐसा है अंडमान में, जब से मैंने ये जॉइंट पेशेंट्स को प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है, सो एज अ फेलो ऑफ टीएमजे मैं ये देख रही हूँ कि पेशेंट्स में, बच्चों में 10 साल से भी शुरू होते, 10 साल से, जबकि ऑन पेपर हमारे इसमें दिखा हुआ है कि 18 साल से लेके 44 इयर्स तक में इनका है, लेकिन हमने 10 साल से लेके 80 साल तक के पेशेंट में भी देखा है. अब मैं आपको बताती हूँ कैसे. जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो कभी गिर जाते हैं, जो चिन के बल गिरते हैं, तो क्या होता है उस समय, चिन के बल हम गिरते हैं तो हमारे दोनों जबड़ों में एक इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन वो क्या होता है, अरे छोटा बच्चा है, गिर गया, आपकी चिन में ही तो लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जैसे ही वो बच्चा 10 या 12 साल के पास आता है, तब उसके जॉइंट्स में सिम्टम दिखना स्टार्ट हो जाता है. तो इसलिए जब कोई बच्चा गिरता है तो उसे हॉस्पिटल लेके आना जरूरी है, ताकि उसे प्रॉपरली उस समय एंटी इन्फ्लेमेटरी और दवाइयाँ दी जाए, ताकि उन जॉइंट्स में जो प्रेशर पड़ा है या चोट पड़ा है, वो चोट का असर कम हो जाए और आगे जाके वो ना दिखे. फिर कई बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि बच्चों के दूध के दांत आते हैं, लेकिन क्या उनका ग्रोइंग एज होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती. दूध के दांत आके फिर जो परमानेंट दांत आते हैं, तो परमानेंट दांतों में भी कीड़े लग जाते हैं, तो जब तक ये बच्चा 18 साल तक आता है, कई परमानेंट दांत उनके निकालने पड़ते हैं. तो अब क्या हो गया, दांतों के बीच का बैलेंस आउट हो गया. ऊपर में हमें 32 दांतों की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 28 दांत है और वो अच्छे हैं, तो वही हमारे लिए काफी, हमारे फेस के स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए. लेकिन अगर 28 दांत नहीं है, तो आप इमेजिन करिए आपके चबाने वाले पीछे के दांत नहीं है, तो क्या होता है, वहां पे खिड़की जैसे खुल जाती है. करेक्ट, मैं सिंपल टर्म्स में बता रही हूँ. तो खिड़की जैसे खुलती, तो क्या होता है, खाना हम टेढ़े मेढ़े तरीके से खाते हैं, जहां पे भी हम चबा पाते हैं वहां से हम चबाते हैं. पीछे के दांतों को चबाने के लिए यूज करना चाहिए, बट हम सामने के दांतों से चबाते हैं. ऐसे में सबसे ज्यादा असर कहाँ होगा, जॉइंट्स में.
0: जी
1: करेक्ट, जॉइंट्स में असर होता है. जो जॉइंट्स एक साथ मूव होने के लिए बने हैं, वो टेढ़े मेढ़े मूव हो रहे हैं, एक जॉइंट अपना मूव हो रहा है, दूसरा अपनी साइड हो रहा है, इसके वजह से वहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट. जब तक कि ये पेशेंट या ये बच्चा आ जाता है आपका 30-32 साल तक, तब तक ये ऑलरेडी सीवियर केसेस में पहुंच चुका होता है. क्लिकिंग, जैसे मैंने आपको

0: सिम्टम बताए, क्लिकिंग होना, अटकना, सारी चीज़ें उनकी स्टार्ट हो गई होती है. एंड देन कमिंग टू लेटर एजेस, जैसे 40 से लेकर 80 साल तक मैंने बोला, सेम पेशेंट जिनके दांत नहीं हैं, जो एज में आ चुके होते हैं, जिनके एक एक दांत एजेस में झड़ गए होते हैं, और एज पेशेंट में तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो बुढ़ापे की वजह से मांसपेशियों में भी लूज़ हो जाती है. तो वो सारे प्रॉब्लम्स की वजह से भी जो हमारे बुजुर्ग पेशेंट्स हैं उसमें टीएमजी प्रॉब्लम्स बहुत दिखते हैं. इनके उसमें क्या होता है कि वो अटकने वाला प्रॉब्लम कम दिखता है, बट लूज़ वाला प्रॉब्लम ज़्यादा दिखता है. जैसे कुछ खाने जाते हैं तो जबड़ा नीचे की ओर आ जाना, उनको हाथों से सपोर्ट करना पड़ता है, ऐसे केसेस हमने बहुत देखे. एंड एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंटली बोलना चाहूँगी, हमारे अंडमान में पान चुइंग हैबिट बहुत ज़्यादा है.
1: वो तो
0: ये तो सभी को पता है, कैंसर केसेस बहुत ज़्यादा है. तो सिर्फ पान चुइंग से, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस से लेके कैंसर, एक जो स्टेज है इससे बढ़ के एक और भी चीज़ होती है टीएमजी प्रॉब्लम. क्योंकि जब हमारा जॉ कंटिन्यूसली एक प्रेशर में होता है, कंटिन्यूसली जब पान चपता है तो चबाते, क्योंकि हमारा मुंह 3 या 4 टाइम खाने के लिए बना है. हम पूरे दिन बात कर सकते हैं
1: जी.
0: जब हम बात करते हैं तो हमारा एक लिमिटेड माउथ ओपनिंग होता है, ठीक है, वो दैट इज टॉलरेबल. लेकिन क्या है, अगर उससे ज्यादा हम यूज करते हैं, कंटिन्यूसली चबाने के लिए यूज करते हैं, तो उस पर प्रेशर बनता है. तो वो प्रेशर की वजह से पेशेंट के जो जॉइंट्स है वो कम्प्लीटली घिस जाते हैं. इसीलिए मैंने आपको कहा कि अंडमान में मैंने ज़्यादा केसेस देखे, क्योंकि हमारे यहाँ पे पान च्युइंग हैबिट की वजह से जॉइंट में प्रॉब्लम आना, घिसना, ये बहुत ही कॉमन है. एंड साथ ही साथ जैसे कि जैसे आजकल स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं, एंड एक जो दो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स मैं आपको बताती हूँ जो बहुत कॉमन है, जिसका सोल्यूशन बहुत ईजी है
1: जी.
0: हमारे, मैंने बताया आपको, हम अपने शरीर में हम अपने मुंह में अकल के दांत जो हमारे होते हैं, हमें 32 दांतों की ज़रूरत नहीं है
1: जी.
0: 28 दांतों से हम काम चला सकते हैं. हमारे दांत जो है 18 साल के बाद ही आते हैं, अकल के दांत
1: जी.
0: तो जब वो आते हैं तब तक हमारे 28 दांत आ चुके होते, वो स्टेबल हो गए होते. तो जब अकल के दांत आ रहे होते तब जगह नहीं होने के कारण में तब भी जॉइंट के प्रॉब्लम शुरू होते. बट ये एक इसका सॉल्यूशन है हमारे पास
1: जी.
0: जैसे ही अगर वो अकल के दांत आ रहे हैं और हमें पता है कि इसके लिए स्पेस नहीं है, हम अगर उसे निकाल देते तो जॉइंट के प्रॉब्लम्स वहीं स्टॉप हो जाते
1: जी.
0: तो जो कमिंग मतलब यंगर एज जनरेशन है, 18 साल से लेकर 30 ईयर्स तक के, उनके उनमें क्या होता है, ये जैसे ही अकल के दांत निकलते हैं तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. तो अगर आप इस एज ग्रुप में हैं, आपके दांत आ रहे हैं एंड आपको कानों में पेन है, तो आप समझ जाइए कि आपको जॉइंट पेन आपके दांतों की वजह से हो रहा है, एंड यू नीड टू शो अ डेंटिस्ट. आपको उसको निकलवाना है. आप एक सिवियर, जरूरी नहीं कि एक सिवियर केस की वजह से ही आपको जॉइंट प्रॉब्लम हो रहा हो. जैसे मैंने पहले सारे इंपॉर्टेंट चीजें बताई, बट दिस इज लाइक ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें एक छोटे प्रॉब्लम की वजह से भी जॉइंट प्रॉब्लम होता है, बट दिस इज लाइक दिस हैज मेजर सॉल्यूशन
1: जी.
0: तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको अगर हम ध्यान में रखें तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में टीएमजी प्रॉब्लम जो है आगे के स्टेज में नहीं बढ़ेगा
1: जी. मैम आगे अगला प्रश्न जो है हम ब्रेक के बाद आपसे पूछेंगे. तो अब समय हो चला है ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद.

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दी, ये देख कैसे।
4: हैप्पी बर्थडे भाई।
3: दिखा, हाँ मेरा फेवरेट कलर
4: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
6: RBI कहता है,
7: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारत

वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: ब्रेक के बाद हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है। श्रोताओं, आपको बता दें, आज का हमारा विषय है जबड़ों के जोड़ का दर्द, कारण, बचाव और उपचार। इस विषय से संबंधित जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर प्रतीक्षा मल्होत्रा। मैम, मेरा सवाल है कि इस बीमारी का उपचार किस प्रकार होता है, क्या इसका इलाज पूरी तरह संभव है?
1: हाँ जी, इसका इलाज संभव है। एंड बहुत से सीवियर केसेस में क्या करते हैं, हम इसको कम्प्लीटली क्योर नहीं कर पाते, लेकिन अंदर कंट्रोल कर सकते हैं
0: जी।
1: तो सिर्फ जॉइंट की जो तकलीफ़ है उसमें सिर्फ जॉइंट सर्जरी ही करना, उसको करना, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। लेकिन आज हम कौन से स्टेज में हैं, उस स्टेज के हिसाब से हम उसे क्योर कर सकते हैं। जैसे कि पहले हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, सीटी, एमआरआई, टीएमजी, आर्थ्रोस्कोपी, ये सारी चीज़ें हैं जिसे हम देख सकते हैं कि जॉइंट का प्रॉब्लम जो है कौन से स्टेज में है
0: जी।
1: तो अकॉर्डिंग टू दैट देन हम अपना ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं
0: जी। आजकल हम देखते हैं कि आज सभी वर्गों में जो है तनाव जो है बहुत ही भर चुका है, तो ऐसे में क्या तनाव भी इसका कारण हो सकती है या फिर हमारे लाइफस्टाइल का इस पर कितना असर पड़ता है?
1: डेफिनेटली पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इम्पॉर्टेंट चीज़, एक तो हमारा जो एज ग्रुप है
0: जी,
1: उस एज ग्रुप में स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल है, जैसे आपने एक छोटी चीज़ देखी होगी, कॉलेज के स्कूल के जो फाइनल 10th 12th के बच्चे होते हैं
0: जी
1: उनमें टीएमजे का पेन बहुत दिखता है,
0: जी
1: क्योंकि हमारी बॉडी भी होती है वो हर एक ऑर्गन्स में स्ट्रेस लेती है। जैसे कमर हो गया, पेट हो गया, घुटने हो गए,
0: जी
1: उसी तरह टीएमजे भी जो है एक स्ट्रेस टेकिंग ऑर्गन है,
0: जी
1: ठीक है। तो जब इन बच्चों में मैंने कॉमनली देखा एग्जाम के पहले, इनको दांत में दर्द होना, अक्कल के दांतों में सूजन आ जाना, जबड़ों में पेन होना, तो ये इसका मतलब ये समझ आता है कि स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट कॉजेस जिसके वजह से टीएमजे प्रॉब्लम्स होते हैं।
0: जी
1: दूसरी चीज़ ये है कि हम जैसे लाइफस्टाइल का आपने बोला, तो ये पांचोइंग हैबिट्स,
0: जी
1: ठीक है, पांचोइंग हैबिट्स एक है। दूसरे बच्चों में भी देखा जाता है बबल गम चूइंग हैबिट्स,
0: जी
1: बच्चे जो है कंटिन्यूसली बबल गम ट्यूशंस में जाते हैं तो चबाते हैं चबाते हैं, उसके वजह से भी उनको प्रॉब्लम होती है। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर हमारे शरीर में, हमारे मुंह में कोई दांत नहीं है, या आप तो चलो सड़ गया था, या आपने तकलीफ आपको पता नहीं चला, आपने नस का इलाज नहीं करवाया, या आपको निकालना ही पड़ा, चलिए निकल तो गया, लेकिन निकलने के बाद में उस जगह को भरना बहुत ज़रूरी है।
0: जी
1: लोग ये सोचते हैं कि 32 दांत है, एक चले गया तो क्या हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। एक भी गया तो उसके आसपास के जितने दांत हैं उस जगह को कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं।
0: जी
1: वो कॉम्पनसेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जबड़े पे हैम्पर होता है। तो अगर हमारे शरीर में से मुंह में दांत नहीं है
0: जी
1: तो फिर उसको रिप्लेसमेंट इज़ वन ऑफ अनादर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। दूसरा होता है हमारा डाइट कैसा है।
0: जी
1: हम अच्छा रिच कैल्शियम डाइट लेते हैं नहीं लेते, रिच प्रोटीन डाइट लेते हैं नहीं लेते, खाने पीने पे हम क्या करते हैं, हम हमारी कोई दूसरी हैबिट्स तो नहीं है, जैसे नाखून चबाना, कंटिन्यूसली पेन चबाना, छोटे बच्चों में ये भी देखा जाता है,
0: अक्सर देखते हैं
1: जी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, रात को अगर आपको नाइट ग्राइंडिंग हैबिट हो, जिसे हम ब्रक्सिज्म बोलते हैं, ये बहुत देखा जाता है, ये भी स्ट्रेस रिलेटेड ही है। ब्रक्सिज्म का रीजन होता है कि अगर आपको स्ट्रेस है तो पूरा स्ट्रेस आपकी नींद में निकलता है।
0: बच्चे जो अक्सर जो है अंगूठा भी, मतलब
1: हाँ जी,
0: बचपन में जी,
1: बच्चों
0: हाँ,
1: में थम सकिंग, जैसे मैंने बोला हैबिट,
0: जी,
1: थम सकिंग हैबिट हो गया, जैसे पेन चबाना हो गया, नाखून काटना हो गया, ये सारे बच्चों में देखते हैं। अडल्ट्स में हम कैसे देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पांचोइंग हैबिट या ब्रक्सिज्म, जो स्ट्रेस है तो वो रात को निकल रहा है, उन चबा रहे रात में निकल रहा है, तो वो उसके वजह से कंटिन्यूसली पेशेंट चबाता है
0: जी।
1: तो वो ये सारी चीज़ें जॉइंट्स को धीरे धीरे धीरे धीरे हैम्पर करती है। लोग क्या करते हैं, कुछ बॉटल खोलना है, चलो दांतों से खोल देते हैं, वेरी कॉमन चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा कुछ चीज़ है, अच्छा ठीक है, पन्नी फाड़नी है, चलो जो उसे दांतों से पन्नी, आप दांत को खाली यूज़ नहीं कर रहे हो, आप अपने जॉइंट को प्रेशर दे रहे हो। आप अगर 20 kg एक हाथ से उठाओगे तो फिर कैसे वो लोड पड़ेगा, करेक्ट? तो ये दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स।

0: बस मैंने जैसे बताया, अगर अक्ल का दांत आ रहा है तो एक बार जाके दिखा दीजिए कि मेरा ये अक्ल का दांत जो अभी आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसे मेरे मुंह में इसके लिए जगह है या नहीं है, क्योंकि ये अक्ल का दांत आता तो है एंड लोग सिर्फ दांत दर्द, अच्छा दांत ही तो आ रहा है, दांत दर्द है, ये सोच के छोड़ देते हैं, बट ये धीरे धीरे धीरे, क्योंकि इन दांतों के लिए जगह नहीं होती है तो ये जॉइंट्स में असर करते हैं, कई बार मुंह खुलना कम हो जाता है, हम देखते हैं कि दांत जो है टेढ़े आ रहे हैं, जॉइंट्स की ओर ग्रो करके आ रहे हैं और वो शार्प भी है, उस पर कट भी रहा है उसके वजह से, तो इसलिए इन जॉइंट्स में जो है फंक्शन कम हो रहा है
1: जी।
0: तो ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये बहुत ही कॉमन है डे टू डे लाइफ में, अगर इन चीज़ों पर ध्यान रखा जाए तो जॉइंट की प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं
1: जी। स्वस्थ जबड़े और दांतों के लिए रोज़मर्रा में मतलब कौन कौन सी आदतें अपनानी चाहिए, डेली लाइफ में कौन सी आदतें जैसे अपनाएं हम?
0: डेली लाइफ में जैसे मैंने आपको बताया, अपने आपको रेगुलर चेकअप आप सबसे पहले तो कराते रहिए, अगर आपको अपना माउथ ओरल हाइजीन मेंटेन करना वो बहुत ही ज़रूरी है, जबड़ों को फेस को जबड़े को एक बार एनालाइज करिए कि अरे मुझे कहीं पेन तो नहीं हो रहा है, कानों में तकलीफ तो नहीं हो रही है, अक्ल के दांत तो नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई ये छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखा जाए, ओरल हाइजीन मेंटेन रखिए, अगर दांत निकाल चुके हैं तो दांतों को लगाइए, अगर दूसरे कोई आपके हैबिट्स है तो उस पर फॉलो करिए, एंड एज यूजल दो टाइम ब्रशिंग करना ये तो मैंडेटरी है, एंड स्पेशली मैं लोगों को ये बोलूँगी कि बच्चों में नोटिस करिए, क्योंकि जब हम इतने पेशेंट्स देखते हैं, आजकल बच्चे सुनते भी नहीं हैं, पेशेंट्स आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे नहीं सुन रहे, बट क्या पेरेंट्स को बच्चों को देखना है मेरा बच्चा ठीक से चबा पा रहा है या नहीं चबा पा रहा है, वो टंग थ्रस्टिंग करता
1: मतलब
0: है
1: रेगुलर जो है पेशेंट बच्चों को जो है जो भी है उनको जो है
0: मॉनिटर करना उनके दांत कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे, कौन से परमानेंट दांत आए हैं, कौन से दूध के दांत गिरे हैं, लोग कभी के बार परमानेंट दांत को दूध का दांत समझ के छोड़ देते हैं, तो इसलिए ऐसे चीज़ों को पे ध्यान रखा जाए, खास करके हमारे बच्चों में, क्योंकि वही हमारा कमिंग फ्यूचर जनरेशन है, तो वी डोंट वांट कि हमारे बच्चों में ये TMJ प्रॉब्लम ज़्यादा दिखे, तो उन पे अगर नोट किया जाए तो आई थिंक ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगी।
1: मैम सवाल तो बहुत है लेकिन वक्त की कमी है, तो ऐसे में आप हमारे श्रोताओं को अंत में क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी चीज़ हम अवेयरनेस के लिए बोलते हैं, मैं स्पेसिफिकली हम एक TMJ के प्रॉब्लम्स को सामने लेके आते हैं लोगों में, क्योंकि दांतों के प्रॉब्लम्स के बारे में पेशेंट्स फिर भी थोड़ा समझते हैं, हमारे श्रोताओं समझते हैं, लेकिन ये जॉइंट प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों होते हैं, कईयों को समझ नहीं आती है, तो इस एयर इंडिया के माध्यम से मैं ये चाहती हूँ कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जागरूकता पहुँचे, उनको ये चीज़ समझ आए, और अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ सामने आए और अपना इलाज करवाए।
1: जी मैम, आज इस कार्यक्रम में आप आई, अपने इस महत्वपूर्ण विषय के लिए अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम आपको बहुत सी जानकारियां मिल चुकी होंगी, इसी उम्मीद के साथ आप दीजिए इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो दोस्त शबाना को इजाजत, होगी फिर मुलाकात, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। विषय था जबड़ों के जोड़ों का दर्द, इलाज, उपचार और कारण। विशेषज्ञ थी ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर प्रतीक्षा मल्होत्रा। तकनीकी सहयोग दिया अनिमेश रॉय और वी श्रीनिवासाचारी ने। व इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी जयशीला। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव चयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
4: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
5: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो

0: ये भी ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
2: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारे जांजीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्यों, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में यह तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
6: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले

0: मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: भारत तिब्बत सीमा पुलिस की महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
2: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है। जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट UG की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे शत प्रतिशत त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम न करें WFI। लोकसत्य की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। NCERT की 8वीं किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम

0: Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak honoured with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, host Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:31 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं कविता पौडवाल के गाए इस गजल से, जिसे लिखा है पयाम सईदी ने।

श्रोताओं, अभी आप सुगम संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे। आज के हमारे फनकार थे कविता पौडवाल, जसवंत सिंह, मोहम्मद अजीज और मनहर उदास।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने।

0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में ये था शराबी फिल्म का गाना, जिसे लिखा था अनजान ने व संगीत से सजाया था बप्पी लहरी ने।
1: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6-स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं। और माइलेज भी बढ़िया है, 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर KG CNG में। बाय ऑफर्स अप टू 30,000।
2: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है, शर्तें लागू।
3: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विस कल कैंसर की जांच के लिए आई।
4: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
3: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
5: मैं 14 साल की हूँ।
3: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
4: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
3: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
4: धन्यवाद दीदी।
3: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
6: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uwin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
8: Nexa.
9: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit Samriddh Bharat.
0: श्रोताओं, अभी आप तराने सुहाने कार्यक्रम सुन रहे थे।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:10 होने वाले हैं। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: पल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजम के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे हैं जयंत पाथरीकर।
2: आज ये कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी प्रयोग धर्मिता की ओर बढ़ रही है। समय के साथ जिस तरह के बदलाव प्रसारण की तकनीक में आए हैं, उन सबको आत्मसात करते हुए, उसके साथ अपने आप को परिवर्तित करते हुए आकाशवाणी आगे बढ़ती रही है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन हर वर्ष आयोजित होता है, उनमें आपने महान कलाकारों का गायन वादन देखा होगा, उसका आनंद उठाया होगा। जब जब उसका प्रसारण हुआ है उसे भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मगर ये पहली बार हो रहा है कि मंच पर एक मूर्धन्य कलाकार को प्रत्यक्ष रूप से आप बात करते हुए देखेंगे। ये सजीव साक्षात्कार यहाँ आयोजित किया गया है। और पद्म विभूषण डॉक्टर एन राजम जी, मैं आपको अम्मा जी कहूंगा, अम्मा जी आपको पाकर हम अभिभूत हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि पद्म पुरस्कारों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पद्म विभूषण, इससे आपको सम्मानित किया गया है और इसके लिए बारंबार अभिनंदन आपका। निसंदेह ये आपकी तपस्या का प्रतिफल है। इसका श्रेय आप किसे देंगी? ग्रेटिट्यूड जिसे कहते हैं, वो आप किसके प्रति व्यक्त करना चाहेंगे?
3: ये सम्मान घोषित हुआ, बड़ा आनंद हुआ, खुशी हुई। सबसे पहले मेरे मन में जिनकी याद आई, जिनकी छवि मेरे सामने आई, वो थी मेरे गुरुजनों का, मेरे माता पिता का। हमारा परिवार जो है एक संगीतकारों का परिवार है, कई पीढ़ियों से संगीत चला आ रहा है। और मुझे सबसे पहले श्री गणेश मेरे पिताजी ने किया, व्हेन आई वाज केवल 3 साल की थी, तो तब से मैं बजाती हूँ, सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी रियाज करती हूँ, सिलसिला जारी है।
2: आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आकाशवाणी से आपका रिश्ता कैसा रहा है?
3: उन दिनों जब मैं छोटी थी, मेरी आयु रही होगी 9 साल की, उन दिनों ये नियम नहीं था कि ऑडिशन के लिए 15 साल की जरूरत है, तो मैंने ऑडिशन दिया। उसके बाद उसका रिजल्ट आया कुछ समय बाद, तो मेरे घर में मेरे पिताजी और बड़े भाई लोगों की एक आदत रही कि बच्चों को चिढ़ाना है और उससे वो आनंदित होते हैं। तो कहने लगे मेरे एक भाई, और कोई बात नहीं, इस साल इस बार नहीं हुआ, आगे हो जाएगा, कोई बात। जैसे उन्होंने कहा, उसको मैंने सही समझा, तो लगी रोने। 9 साल की उम्र में और क्या हो सकता है, तो काफी देर चिढ़ाने के बाद पिताजी भी उसमें शामिल थे, तो अब फिर कहा, चने रो मत, तुमको मिल गया है। और इस तरह रेडियो से मेरा संबंध जो है उस समय से है, जबकि मैं 9 साल की थी। और चिट्ठी भी जो है कि ऑडिशन में मैं पास हो गई करके जो पत्र आया था वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था। उस समय अंग्रेजी विशेष नहीं आती थी, बिल्कुल ही नहीं आती थी, विशेष क्या, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी स्वयं, तो उसके पहले ये ड्रामा हुआ घर में, उसके बाद।
2: वाह, इतनी नाजुक उम्र में आपने शुरुआत की, और आप बहुत छोटी थी जब आपका पहला प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेज पर, तो उस वक्त सुर डर पे हावी थे या डर सुर पे हावी था?
3: डर।
2: हाँ, मन में डर जो होता है,
3: डर ऐसे कोई चीज होती है वो पता ही नहीं चला।
2: क्या बात है।
3: वायलिन हाथ में ले लेते हैं और रियाज करते हैं, तो अगर कहीं बजाने की, हाँ हमारे घर में ये भी लोग बाग आते रहे, क्योंकि संगीतकार का परिवार है, तो कई लोग आते जाते रहे, तो कोई भी आते हैं तो पिताजी मुझसे तुरंत कहते हैं कि आ जाओ अंकल के लिए एक गाना बजा दो, तो आकर के भाग जाते ही रही, तो इस तरह का एटमॉस्फेयर था, तो डर की कोई बात नहीं थी,
2: वो आपके स्वभाव में आ गया था बड़े सहज रूप से।
3: बिल्कुल सहज रूप।
2: क्या बात। बहुत जल्दी आपने अम्मा जी कर्नाटक शैली से हिंदुस्तानी शैली की ओर जो है यात्रा शुरू कर दी, ये कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि आपके पिताजी का तो कहना था कि कर्नाटक शैली में ही वायलिन बज सकता है, हिंदुस्तान में तो बजेगा ही नहीं शायद।
3: हाँ, शुरुआत तो मेरा कर्नाटक म्यूजिक से था।

0: 3 साल की उम्र में पिताजी ने शुरू किया था, फिर जैसे ही 9 साल की हुई रेडियो का ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हो गया वगैरह वगैरह। तो जब मैंने SSLC पास किया, 10th कहिए 11th कहिए, तो पास हो गई थी, पर आगे की पढ़ाई के लिए यानी कॉलेज एडमिशन के लिए वो संभव नहीं था, क्योंकि उस समय मैं 14 साल और 3 महीने की थी, जबकि कॉलेज एडमिशन के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो था 14 साल और 6 महीने। तो मेरे पिताजी बड़े ही वॉज ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, तो उन्होंने कहा कि 1 साल तक घर पे बच्चों को रखना नहीं ठीक है, आलसी बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा तुम प्राइवेटली कहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे दो, और उन्होंने पता भी लगाया कि कहाँ इस तरह की सुविधा मिलती है। तो पता चला उनको कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और ये सुविधा है कि प्राइवेट गर्ल, वो भी केवल लड़कियों के लिए ये सुविधा दी जाती थी।
1: अच्छा।
0: तो पिताजी ने कहा तुम 8 सब्जेक्ट सोच लो और परीक्षा देख के हो। तो उन्होंने कहा संगीत एक सब्जेक्ट ले लो, संगीत भी एक सब्जेक्ट था
1: जी।
0: तो तब तक मेरा 12 साल के समय का कर्नाटिक म्यूजिक का प्रैक्टिस रहा, 12 साल मैं बजा चुका, और रेडियो में तो 9 साल के बाद बराबर बजाती भी थी, और रेडियो के साथ उतना पुराना संबंध था मेरा। तो पिताजी ने कह तो दिया कि हिंदुस्तानी संगीत ले लो, और उम्र कम थी ना, तो इसीलिए मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये सब चिंता इन्हें पिताजी ने कह दिया, तो फादर्स वर्ड वॉज लास्ट। तो ले लिया मैंने, और उसके बाद बातें ऐसी होती गई तो मुझे उसमें रुचि भी आ गई और मैं सीख पाई, और पंडित ओमकारनाथ जी जैसे महान गुरु का शिष्य होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
1: बस मैं उन्हीं के बारे में भी आपसे पूछने वाला था कि गायकी अंग से वादन जो है आपका है, जो आपके वादन की विशेषता है, ये सोच कहाँ से आई, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
0: जितने भी वाद्य थे, वीणा कहिए या वायलिन कहिए या फ्लूट कहिए, सभी में वोकल म्यूजिक जिस तरह गाया जाता है उसी तरह बजाने की प्रथा वहाँ थी।
1: अच्छा।
0: सेपरेट स्टाइल नहीं था इंस्ट्रूमेंट्स के लिए
1: जी।
0: तो ये बात मेरे मन में आई कि यहाँ भी, जबकि उत्तर भारत में वाद्यों के लिए खास शैली थी गतकारी।
1: हाँ।
0: तो मेरे मन में आया ये विचार, मेरे पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा आहत रहा, हिंदुस्तानी संगीत को गायकी स्टाइल से यानी जिस तरह कंठ से आवाज आती है उस तरह एक अनोखा काम हो भी जाएगा, उन्होंने कहा तो उस तरह। और चूंकि मुझे 10-12 साल का अभ्यास था कर्नाटक म्यूजिक में, और उसके कारण मुझ में ये एबिलिटी थी ये कि कोई भी कुछ भी फ्रेज गाए तो उसको मैं तुरंत रिप्रोड्यूस करने की शक्ति थी मुझे।
1: वाह,
0: वाह। इस तरह शुरू हो गया।
1: और पंडित ओमकारनाथ जी के बारे में कुछ?
0: और मेरा परम सौभाग्य रहा कि उन इतने महान कलाकार से
1: जी,
0: संगीत साधक से संगीत सीखने के, हिंदुस्तानी संगीत सीखने का अवसर मिला। मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए कि कितनी खुशी हुई, कितना आनंद हुआ, और उसके बाद सिलसिला चल पड़ी।
1: जी जी जी। आपके वादन के बारे में एक और प्रश्न है कि बनारस घराने की जो गायकी है उसे आपने वॉयलिन में कैसे उतारा, उसमें जो ठहराव होता है खासतौर से?
0: नहीं, बनारस घराने की बात नहीं उठती है
1: जी।
0: कैसे मैं गायकी स्टाइल मैंने आत्मसात किया?
1: हाँ जी।
0: मैंने गुरुजी एक राग, मान लीजिए कोई भी राग को लेते थे तो वो एक दो फ्रेज गाते हैं, मैं तुरंत बजा तो लेती थी, पर इससे ये नहीं कह सकती हूँ कि हिंदुस्तानी म्यूजिक आ गया हो गया। वो सिखाते थे, मैं बजाने लगी, और उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक की आत्मा जो है
1: जी जी,
0: उसकी बू जो है उसको कैसे ले आना है, तो मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, इसमें मेरे गुरुजी मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया, और एक एक करके हो गई बात।
1: निश्चित रूप से किसी भी कला के साधक को निरंतर अभ्यास और प्रैक्टिस, ये उसकी साधना की आत्मा होते हैं। तो रियाज अब भी आपका जारी है? कभी ऐसा होता होगा रियाज छूट गया, नहीं हो पाया?
0: नहीं, खाना छूट जाता है पर रियाज नहीं, किसी कारण से एक दिन नहीं, ऐसा होता नहीं था। हाँ। फिर भी अगर हुआ तो चैन नहीं होता था
1: जी, जी।
0: कि आज कुछ मिस किया मैंने, ऐसी भावना आती थी।
1: बिल्कुल।
0: और मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी

0: नहीं थी।
1: किसी भी साधक के जीवन में इससे बढ़कर और क्या होता होगा। एक आपका चूंकि संगीतकारों का कलाकारों का परिवार रहा है, तो आपके भाई साहब टीएन कृष्णन साहब भी बहुत बड़े कर्नाटक शैली के वायलिन वादक रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये सवाल
0: हम,
1: ऐसा
0: हम,
1: है,
0: हम सभी लोग बजाते हैं, यानी हम रहे 5 बच्चे।
1: अच्छा,
0: मेरे पेरेंट्स के।
1: हाँ, हाँ।
0: तो सभी को, बच्चा जिस दिन 3 साल का हो जाता है, चाहे लड़की हो या लड़का, पिताजी भेंट में दे देते हैं वो एक वायलिन, और वो तब से शुरू हो जाता है। तो आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक।
1: हाँ हाँ हाँ। जब कृष्ण साहब थे तो बचपन से लेके जब भी कभी पारिवारिक सम्मेलन होता होगा त्योहारों के मौके पे या राखी के समय, भाई दूज के समय, तो आपकी नोकझोंक, किसी तरह का हल्का फुल्का झगड़ा किस बात पे होता था? वो मिठाई को लेके होता था या वायलिन को लेके?
0: नहीं, मेरे बड़े भाई की जो बात है उनको हम सभी लोग, बाकी बच्चे बड़े रिस्पेक्ट से उनके साथ रहते हैं।
1: जी, जी।
0: तो इसीलिए उनका वो, हम सब लोगों को वो खुद मार्गदर्शन देते थे, उनका स्थान इतना था।
1: बहुत से कलाकारों को हम देखते हैं कि अपने साज में वो अपने मुताबिक बदलाव करते हैं। आपने वायलिन में कुछ चेंजेस किए हैं?
0: वायलिन में, इंस्ट्रूमेंट में,
1: इंस्ट्रूमेंट
0: जब मुझे इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज करने की सूझ नहीं आई और जरूरत भी नहीं थी, इट्स अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट।
1: अम्मा जी, वायलिन पर उपशास्त्रीय संगीत जब बजता है उसका अलग ही मजा है, उसका आनंद ही कुछ और है। तो उसके बारे में हमें बताइए, जैसे ठुमरी या टप्पा का जो नखरा होता है वो जिस तरह से प्रदर्शित होता है वायलिन पर, जिस तरह बजाया जाता है, उसका आनंद जो आता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
0: एक बार अच्छी टेक्निक हाथ में मिल जाता है
1: जी,
0: तो उसके बाद क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो या लाइट हो, सब कुछ आसानी से बजाया जा सकता है। इतना ही है कि आपके पास सही टेक्निक होना चाहिए।
1: कलाकारों को तारीफें भी मिलती है और ताने भी सुनने पड़ते हैं। आपने अपने परफॉर्मेंसेस शुरू किए 1950 में, और उस वक्त सिनेरियो कुछ ऐसा था कि बहुत से जो कलाकार थे, बड़े बड़े कॉन्सर्ट जिनके होते थे, उनमें मेल आर्टिस्ट ज्यादा थे, पुरुष कलाकार ज्यादा थे, महिलाएं उनके बनिस्बत कम थी। तो कैसा अनुभव था आपका? किसी बड़े कलाकार की तारीफ आपको अब तक याद हो, किसी ने कोई बात कही हो?
0: मुझे किसी से कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई। बड़े बड़े कलाकारों का स्नेह, वात्सल्य मुझे हमेशा प्राप्त हुआ। निसार हुसैन खान साहब, एक का नाम नहीं ले रही, बहुत से लोगों का, बड़े गुलाम अली खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, तो वो मेरा बजाना वगैरह सुन करके खुश होते थे।
1: अब मंच पर जब जब आपने जुगलबंदी का प्रस्तुतिकरण दिया है उसकी बात करते हैं मजी, आपकी शहनाई पर बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ जो जुगलबंदी है वो बहुत ही पॉपुलर हुई।
0: उनका बड़प्पन है मेरे साथ, उन्होंने बजाया और मुझे प्रोत्साहित किया, खूब उन्होंने प्रोत्साहन दिया।
1: और जो कौन कौन से कलाकार जिनके साथ आपने जुगलबंदी?
0: बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ, वो भी बनारस के थे।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: वो भी गायकी बजाते थे, जो भी बजाते हैं वो गायन शैली की। तो कहाँ शहनाई खत्म होता है और वायलिन कहाँ शुरू होता है, और कहाँ वायलिन खत्म होता है वो फिर शहनाई शुरू होती है, मुश्किल से समझ में आता।
1: बिल्कुल,
0: था
1: बिल्कुल सही कहा
0: लोगों को
1: जी।
0: तो बड़ा अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझसे काफी सीनियर थे। हाँ। तो ये जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, उनका बड़ापन पिता तुल्य थे मेरे लिए वो।
1: और किसी कलाकार को आप याद करना चाहें जिनके?
0: मेरे भाई के साथ भी कई जुगलबंदियां हुई है, तो वो कर्नाटक म्यूजिक बजाते थे, मैं हिंदुस्तानी बजाती थी। अब कई कॉमन रैग्स रहते हैं दोनों में, तो कॉमन जैसे कि यमन है, तोड़ी है, इस तरह बहुत सी, तो उसको लेकर के एक ही मंच से एट द सेम टाइम लोगों को दोनों का क्या फर्क है, हिंदुस्तानी की विशेषताएं क्या है, कर्नाटक की विशेषताएं क्या है, मींड गामक इत्यादि सब प्रस्तुत करने के लिए मौका मिलता था हम लोगों को, और एक ही मन से वो समझ पाते थे दोनों में क्या फर्क है, क्या समानता है।
1: सृजनात्मकता कलाकार की आत्मा होती है, कुछ नया क्रिएशन। तो आपका क्योंकि फंडामेंटल्स आपने कर्नाटक शैली में सीखे और बाद में आप हिंदुस्तानी शैली की ओर बढ़ी, तो इन दोनों शैलियों में जो संप्राकृतिक राग है, एक जैसे राग है, उनको लेकर के कुछ रागों का मिश्रण या कोई नया राग उत्पन्न हुआ हो मन में, ऐसा कुछ कभी हुआ?
0: नया राग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना भरा पड़ा है, इतना गहरा समुद्र है।
1: जी, जी।
0: फिर भी लोग बनाते हैं तो उससे मुझे संतोष ही मिलता है, आनंद ही मिलता है, पर मैंने कुछ ऐसा नया राग बनाने की चेष्टा नहीं की। जो है

0: ऑलरेडी हजारों की संख्या में, उनमें से थोड़े बहुत भी हम ले सकें और आत्मसात कर सकें, वही बड़ी बात है। तो नया कुछ मैंने नहीं बनाया।
1: वाह, आपने पहले ही बताया कि बहुत छोटी उम्र में बीएचयू से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपका संबंध रहा है, तो 40 साल आपने पढ़ाया है बीएचयू में, तो गुरु शिष्य परंपरा में सबसे खूबसूरत पल कौन सा था और सबसे कठिन हिस्सा कौन सा था?
0: गुरु के सानिध्य में सीखने का जो मौका मिलता है उसका बहुत फायदे हैं। हाँ, एक घटना बता दिए इस संबंध में।
1: जी बिल्कुल।
0: बनारस में मेरे गुरुजी रहते थे, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर।
1: हाँ जी।
0: एक बार मुझे हमारे कॉलेज में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती मनाते थे हफ्ते भर के लिए, तो मेरा कार्यक्रम, टीचर्स के भी कार्यक्रम होते थे और जो सीनियर स्टूडेंट्स है जो गा बजाते हैं ठीक से उनके भी कार्यक्रम होते थे। तो मेरा कार्यक्रम था, यानी आज, यानी कार्यक्रम के एक दिन पहले गुरुजी से मुलाकात हुई थी और मैंने कहा कि मैं देश बजाना चाहती हूँ, मेरे पास कोई ठीक से कॉम्पोजिशन नहीं।

0: वो मेरा कार्य, हम टीचर्स के भी कार्यक्रम होते थे और जो सीनियर स्टूडेंट्स है जो गा बजाते हैं ठीक से उनके भी कार्यक्रम होते थे।
1: जी
0: तो मेरा कार्यक्रम था, यानी आज यानी कार्यक्रम के एक दिन पहले गुरुजी से मुलाकात हुई थी और मैंने कहा कि मैं देश बजाना चाहती हूँ, मेरे पास कोई ठीक से कॉम्पोजिशन नहीं है, ख्याल नहीं है, मुझे बता दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कब बजाना है, मैंने कहा कल शाम को। तो वो पूछा इतने में करोगी, तो मैं कोशिश करूंगी। उसके बाद उन्होंने बड़ा ख्याल का दो सिखा दिया, बड़ा ख्याल स्थाई अंतरा। उसके बाद मैं उसके बाद कल वहां से चली गई और दूसरे दिन शाम को कार्यक्रम था, हॉल खचाखच भरा हुआ था। मैं शुरू कर ही रही थी, शुरू पहला फ्रेज शुरू किया तो एंट्रेंस में, जैसे एंट्रेंस है ना, तो वहां हलचल हुई, थोड़ा कंफ्यूजन जैसे हो रहा था, आवाजें हो रही थी लोग बाहर। तो उसके बाद मैंने सिर उठा के देखा तो, अरे उसके पहले मैंने उस दिन पहले दिन ही उनसे जब सीखने के बाद कहा आप तो नहीं आएंगे ना प्रोग्राम में, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा। तो जो जो हलचल जो हो रहा था तो मैंने कहा वो देख रही हूँ कि वो छड़ी लिए हुए आ रहे हैं धीरे धीरे, तो मेरा सप्त नाड़ी जो है समाप्त हो गए थे। और मैंने उनको कहा अब मैं निश्चिंत थी यही कहाँ आने वाले हैं प्रोग्राम में बच्चों का प्रोग्राम, तो आए छड़ी ले करके वहां वो उनको लोग बाग जो है जगह दे रहे थे आगे जाने के लिए, तो आके बैठ गए फ्रंट रो में। हाँ चल, उनको देख करके मैं रोक दिया था मैंने, और उसके बाद वो आके बैठे, जब आए तो हाँ चल बजा। तो मैंने सोचा आज मुझे डांट पड़ेगी जरूर। तो उसके बाद मैंने 45 मिनट दराग देश बजाया, तो उन्होंने क्या किया उठ के खड़े हुए और पूरा एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, बहुत सुंदर बोलते थे, चाहे हिंदी हो गुजराती हो मराठी हो सब अच्छी तरह बोलते थे। तो उन्होंने कहा आप लोग एकलव्य जानते हैं, नाम सुना है उनका एकलव्य का, तो लोग कहाँ कर, तो ये वैसा ही एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। ये लड़की कल आई थी मुझसे और मुझसे सीख करके आज बजा दिया
1: वाह
0: है? तो उसके बाद खूब तारीफ की मेरे बारे में और मैंने सोचा कि बच गई किसी तरह।
1: अम्मा जी, 90 के दशक में संगीत का एक नया रूप हमारे सामने आया जिसे हम सब फ्यूजन म्यूजिक के नाम से जानते हैं। तो आप ये जो स्टाइल है फ्यूजन म्यूजिक का, इसमें क्लासिकल को और सेमी क्लासिकल को और लाइट म्यूजिक को मिला करके कुछ नया बनाने की कोशिश होती है, कई बार फोक म्यूजिक भी इसमें मिलाया जाता है, इसे किस तरह से देखती है, ये कैसा एक्सपेरिमेंट लगता
0: हाँ,
1: है आपको?
0: मेरा दृष्टिकोण ये है कि लोग करते हैं उसके मैं खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी,
1: जी
0: पर मैं यही सोचती हूँ हमें ये इतना बड़ा समुद्र है इसमें एक डुबकी भी अब तक नहीं हो पाया है,
1: जी
0: तो हम कहाँ चले गए कि उसको इसको मिलाओ और एक नई बात बनाओ,
1: क्या
0: उसमें
1: बात,
0: मुझे रुचि नहीं है। और जो लोग करते हैं उनके प्रति मेरा कोई विरोध भी नहीं है, अलग अलग पर्सनैलिटी है।
1: आज के इस सब कुछ इंस्टेंट और फास्ट फटाफट वाला जमाना है, तो इस दौर में आप अपने शिष्यों को ठहराव का जो महत्व है वो कैसे समझाती हैं?
0: अन्य क्षेत्रों में हो सकता है कि जल्दी का जमाना है तो जल्दी फटाफट कर लो, पर जहां तक शास्त्रीय संगीत है, वेदर वो कर्नाटक शैली का संगीत हो या हिंदुस्तानी हो, बिल्कुल पूरा अपने को अर्पित करना है और खूब रियाज करना है, उससे बच नहीं सकते हैं।
1: बहुत छोटी उम्र में आपने पहला प्रेजेंटेशन दिया था, वो 9 साल की नन्ही राजम अभी आपके सामने आ जाए तो आप उसे कैसे आशीर्वाद देंगी?
0: यही है, अच्छा किया, इसी तरह हर जन्म में करते रहो।
1: थैंक यू सो मच अम्मा जी, आपसे बात करके आपके अनुभव सुनकर के हम बहुत अभिभूत हुए हैं। आकाशवाणी मुंबई की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी प्रेक्षकों की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, मुझे भी आपके साथ बातचीत करते हुए बड़ा आनंद आया और श्रोताओं के सामने कुछ बातें कहने का अवसर मिला, वो भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद। डॉक्टर एन राजम जी अब प्रस्तुत कर रही हैं एक धुन।

0: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजम के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे थे जयंत पाथरीकर। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 9:36 हुए हैं। श्रोताओं, सवेरे 10 बजे आप आनंद ले पाएंगे फिल्मी गीतों के कार्यक्रम कशिश का। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत।

0: इस कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जयालक्ष्मी संतानम का कर्नाटक शैली में गायन। इनके साथ वायलिन पर द्वारा मंगा थयारू और मृदंगम पर नागो टीएस अंबी अय्यर ने संगीति की है। तो लीजिए जयालक्ष्मी संतानम का गाया, पहले सुनिए राग गमाका क्रिया जो रूपक ताल में निबद्ध है, कृति दीक्षितर की है।
1: चरण

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अंडमान रोड हो या सिटी राइड, नाउ ड्राइव इन स्टाइल विद अवर बोल्ड एंड पावरफुल टोयोटा हाई राइडर। स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, स्टनिंग लुक्स, प्रीमियम कंफर्ट एंड द हाईएस्ट माइलेज इन इट्स सेगमेंट ऑफ अप टू 27.97 किलोमीटर पर लीटर। All in one SUV. Exciting offer up to 1,80,000 and EMI start at just 7,777 per month. Visit Prince Toyota and win a short gifts on every test drive. And call us at 0806-2358-621 today for exciting offers, exchange benefit and easy finance options. Toyota Hyryder, your stylish SUV for every journey. Prince Toyota, Gyarachanma and Diglipur. Let's move ahead with Toyota.
4: श्रोताओं, अभी आप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत जया लक्ष्मी संतानम का गायन सुन रहे हैं। अब सुनिए राग नट्टई, जो आदिताल में निबद्ध है कृति स्वाथी थिरुनल की है।

श्रोताओं, अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में जयलक्ष्मी संतानम का कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है आपके मनोरंजन के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कशिश।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने क्रूक फिल्म से लिया था। स्वर दिया था निखिल डिसूजा ने, बोल कुमार के थे व धुन तैयार की थी प्रीतम ने। अब आपको सुनवाते हैं वेक अप सिद फिल्म का गाना शंकर महादेवन की आवाज़ में। गीतकार जावेद अख्तर व संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।

जेम्स की आवाज में आइए सुनते हैं लाइव इन आ मेट्रो फिल्म का गाना। गीत रचना सईद कादरी की व धुन बनाई है प्रीतम ने।

AR रहमान के संगीत निर्देशन में तैयार ये था हाईवे फिल्म का गाना। शब्दकार इरशाद कामिल व स्वर दिया था AR रहमान ने। अब आपको सुनवाते हैं सईद कादरी का लिखा एवं प्रीतम का संगीत बत किया हुआ जन्नत फिल्म का गाना। स्वर दिया है KK ने।

सोनू निगम, श्रेया घोषाल, सलीम मर्चेंट और श्रद्धा पंडित की आवाज़ों में आइए अब सुनते हैं लव ब्रेकअप्स जिंदगी फिल्म का ये गीत। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है सलीम सुलेमान ने।

रब्बी शेरगिल के संगीत निर्देशन में तैयार, अब लीजिए सुनिए डेली हाइलाइट्स फिल्म का ये गीत। गीत रचना रब्बी शेरगिल की।

कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए रब्बी शेरगिल का लिखा एवं संगीतबद्ध किया हुआ गीत रब्बी शेरगिल और अमित सना की आवाज़ में। फिल्म का नाम दिल्ली हाइलाइट्स।

लफंगे परिंदे। आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत मोहित चौहान के स्वर में। शब्द रचना स्वानंद किरकिरे की तथा संगीत में पिरोया है आर आनंद ने।

जावेद अख्तर की रचना में अब सुनिए राहत फतेह अली खां और कृष्णा को। नमस्ते लंदन फिल्म से संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम कशिश अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं दोस्ती फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है सोनू निगम और अलका याग्निक। धुन तैयार किया है नदीम श्रवण और गीत को लिखा है समीर ने।

अदनान सामी की आवाज़ में आइए अब सुनते हैं गरम मसाला फिल्म का ये गीत। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में तैयार, अब लीजिए सुनिए शादी से पहले फिल्म का ये गीत। गीत रचना समीर की तथा स्वर दिया है सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक ने।

कार्यक्रम में अब सुनिए प्रसून जोशी का लिखा एवं AR रहमान का संगीतबद्ध किया हुआ गीत मधुश्री और नरेश अय्यर की आवाज़ में। फिल्म का नाम रंग दे बसंती।

0: हॉलिडे, आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत श्रेया घोषाल और कुणाल गंजावाला के स्वर में, शब्द रचना नीलेश मिश्रा और महबूब की तथा संगीत में पिरोया है रंजित बरोत ने।
1: M'apaiser

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत अतीत। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं बावर्ची फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है लता मंगेशकर, धुन तैयार किया है मदन मोहन और गीत को लिखा है कैफी आजमी ने।

समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमें यहां पहुंचाने के लिए। हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुंचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुंचते, इस विशाल देश के 140 करोड़ नागरिकों के योगदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसलिए हमारा दायित्व खुद के प्रति, खुद के परिवार प्रति, वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है। और मुझे विश्वास है कि इन सभी कामों के लिए आप अपने आप को और अधिक योग्य बनाएंगे। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको पता है अभी दो दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर्स से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई, और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है, दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है।

आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। इस यात्रा के दौरान अब जैसे नीदरलैंड की मैं बात करूं तो नीदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर्स, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डिजिटल इनोवेशन, उस पर सहयोग की बहुत सारी बातें हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। UAE के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए। इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा लाभ भारत के युवाओं को मिलने वाला है। और आपने देखा होगा कि सारे विषय एक उज्जवल समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं, क्योंकि हर नया निवेश, हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भारत के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है, लेकिन अनगिनत नए अवसर तैयार करता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें याद रखना है ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाला इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप आने वाले 3-4 दशक की ग्लोबल ग्रोथ को ये शेप करने वाली इंडस्ट्री तैयार करेगी। और निश्चित तौर पर भारत के युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, भारत किस तरह दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर कंपनी, आप में से बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे, ASML, ASML के साथ भारत की टाटा कंपनी का एग्रीमेंट है। भारत दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है जिसके साथ इस कंपनी ने समझौता किया है। ASML, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ये अकेला समझौता ही भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनाएगा और भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश द्वार खोल देगा। ऐसे ही स्वीडन के साथ टेक्नोलॉजी और AI पार्टनरशिप्स, UAE का साथ सुपर कंप्यूटिंग कोऑपरेशन भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को बहुत मजबूत करने वाले हैं। इन एग्रीमेंट से युवाओं के

लिए नए अवसर तो होंगे ही होंगे। साथियों, आज क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रही है। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत ने पोर्ट्स, शिपिंग और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया है। यूएई और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। और आप तो जानते हैं, शिप बिल्डिंग यानी स्किल्ड मैन पावर की बहुत जरूर पड़ती है, यानी भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल्ड वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितने अवसर तैयार होंगे। साथियों, हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते हैं। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं। साथियों, आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है। आने वाले समय में भारत की 10 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स दुनिया में अपना परचम लहराएगी। इनमें बड़ी संख्या में भारत के नौजवानों का सामर्थ्य होगा, भारत के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा होगी, भारत के नौजवानों का कमिटमेंट होगा। और स्वाभाविक है, रोजगार तो है ही है। भारत आज शिप बिल्डिंग से लेकर शिप रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग का भी इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। इसके लिए करीब

75,000 करोड़ रुपए 75,000 करोड़ रुपीज का निवेश किया जा रहा है। इसी तरह भारत में ही हम पूरा एमआरओ इकोसिस्टम यानी मेंटेनेंस, ओवरहॉल और रिपेयर फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं। इससे देश के एविएशन सेक्टर को बहुत मदद मिलने वाली है और भारत के युवाओं के लिए रोजगार का नया सेक्टर तो खुलना ही खुलना है। साथियों, भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंप्लीट वैल्यू चेन भारत में ही बना रहे हैं। इसके लिए जो पीएलआई स्कीम चल रही है उससे देश में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है और युवाओं को लाखों की संख्या में जॉब्स भी मिल रही है। साथियों, ऐसे अनेकों अभियानों पर भारत का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। ये निवेश देश के युवाओं को देश में ही जॉब्स दे रहा है, उनके सपने पूरे कर रहा है। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, जो कि आज नियुक्ति पत्र के भरने के बाद आपकी पहचान बनने वाली कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस नाते आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें ये मानी हुई बात है, आप भी जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब गांव, छोटे शहर और दूर दराज के इलाके विकास से जुड़ते हैं तभी देश की प्रगति का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। पिछले 12 वर्षों में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कल्पना भर का तेज गति से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, हर स्तर पर काम हुआ है। आज आप अपने क्षेत्र में किसी की भी दिशा में 100 किलोमीटर अगर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा कोई न कोई काम चलता हुआ नजर आएगा आपको। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज करोड़ों परिवारों को पक्का घर मिला है, यानी दुनिया के कई देश हैं जिनके पास टोटल घर होते हैं उससे अनेक गुना घर हम नए बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो मेरा स्वच्छता का अभियान है उसको तो मैं कभी भी भूलने नहीं देता हूं लोगों को, और न ही मैं भी भूलता हूं। उसमें शौचालय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। करोड़ों घरों तक आज बिजली पहुंची है, रूफटॉप सोलर एनर्जी, कितने नए नए वेंडर्स मैदान में आए हैं। अब देखिए, जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाना, मैं अभी देख रहा था कि मैं चाहता था कि शहरों में

पीएनजी के कनेक्शन बढ़े तो मुझे प्लम्बर नहीं मिल रहे थे, कमी पड़ रही थी, क्योंकि जल जीवन के मिशन में कई सारी बड़ी संख्या में प्लम्बर वहां लगे हुए थे। अब इस दिन मुझे एनर्जी के लिए बड़े शहरों में पीएनजी के कनेक्शन तेजी से बढ़ाने थे, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी कभी तो लोगों की जरूरत पड़े तो लोग कम पड़ जाते हैं। साथियों, इन बदलावों का असर सिर्फ सामान्य नागरिकों की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता। गांव तक सड़क पहुंची तो मार्केट तक आना जाना आसान हुआ, बिजली की सुविधा बेहतर हुई तो छोटे उद्योग धंधे आगे बढ़ने लगे, गांव में भी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन होने लगा। पहले अगर वो लाल मिर्ची बेचते थे, अब बिजली आई तो लाल मिर्ची का पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना करके पैकेज बनाते हैं, पैकेज बना करके बेचते हैं, तो गांव में भी छोटे छोटे छोटे छोटे उद्योग इसके कारण बढ़ते जाते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी तो गांव के लोग भी पूरे विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, आधुनिकता से जुड़ रहे हैं। शहर और गांव का फर्क मिटता चला जा रहा है और इससे अर्थव्यवस्था की गति तेज हुई है, और इन सब का पॉजिटिव प्रभाव देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाता है। रोजगार तो निर्माण होते ही होते हैं, लेकिन राष्ट्र भी एक नए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाता है, लाखों लोगों को नए मौके भी मिल जाते हैं। साथियों, आज भारत के युवा के पास जिस तरह से आगे बढ़ने के, अपने सपने पूरा करने के मौके हैं, ऐसा अवसर पहले नहीं मिला है। मैं किसी का दोष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है कि आज बहुत तेज गति से सब हो रहा है, विशाल फलक पे हो रहा है, विविधताओं से भरा हो रहा है। आज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल सर्विसेज, रेलवे, डिफेंस, इतना ही नहीं स्पेस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नए अवसरों का लाभ उठा सके और देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले। इसलिए स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लिंक एजुकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दिया जा रहा है। आईआईटी को मॉडर्न बनाया जा रहा है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मजबूत किया जा रहा है, पीएम सेतु जैसे अभियान इसी दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 2,30,000 से ज्यादा, ये आंकड़ा याद रखिए, 2,30,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं, और उसमें भी दो चार नौजवान भी जुड़े हुए होते हैं। अहम बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, और मुझे इसका सबसे ज्यादा आनंद है। आजकल तो टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के युवा भी बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप और इनोवेशन की दुनिया में अपना ताकत दिखा रहे हैं, उनके सामर्थ्य की नोट लेनी पड़ रही है। ये परिवर्तन अब देश की अर्थव्यवस्था का महत्व

महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बदलाव में हमारी नारी शक्ति की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। आज बड़ी संख्या में विमेन लेड स्टार्टअप्स, ये जब सुनते हैं ना मन गर्व से भर जाता है। मैं जब दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही है, मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने भी लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। आज गांवों में, छोटे शहरों में पहले से ज्यादा महिलाएं अपने दम पर नए काम शुरू कर रही हैं। साथियों, नीतियां और निर्णयों के इस अभियान के बीच आपको एक और बात याद रखनी है, किसी भी व्यवस्था की असली ताकत उसके लोग होते हैं, जनता जनार्दन की शक्ति होती है, जनशक्ति होती है, और जनशक्ति ही तो राष्ट्र शक्ति बनती है। आप सभी जिस व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध करोड़ों करोड़ों देशवासियों के जीवन से है, करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आशा आकांक्षाओं से है। सरकारी नौकरी लोगों के जीवन को आसान बनाने का माध्यम ही होती है। आप जिस भी विभाग में काम करेंगे वहां आपके व्यवहार, संवेदनशीलता और काम करने के तरीके का बहुत महत्व होगा। देश ने आप पर भरोसा किया है, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने काम से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उस भरोसे को और मजबूती देंगे। देशवासियों के हृदय में एक नया विश्वास भर जाएगा, आपको मिलते ही वो नई आशा के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए हर युवा कर्मयोगी अपने काम को जिम्मेदारी की तरह देखें, और मेरे लिए तो आप बहुत कुछ हैं। पहले जमाने में हम सुनते थे ना, सहस्त्रबाहु वाले फलाने, सहस्त्रबाहु वाले ढींकने, आज सरकार के बाहु आप ही हैं, सरकार का सामर्थ्य आप ही हैं। जो पहले से सरकार में है वो भी है, जो नए आ रहे हैं वो भी है। आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ रही हैं और मैं इसे विकास की पॉजिटिव साइन मानता हूं। हमें अपने देश के लोगों के एस्पिरेशंस को समझना भी है और उसके हिसाब से उतनी ही तेज गति से काम भी करना है। ऐसे में पब्लिक सर्विस में आने वाले युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आपको लगातार सीखते रहना होगा, खुद को नई टेक्नोलॉजी, नई सिस्टम और नई जरूरतों के हिसाब से तैयार करना होगा। इसमें आपको आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिलेगी। कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान

0: बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे तो यहां तो कहा, जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे। आपके काम, आपके फैसलों से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी। और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है, हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव, नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए, देश सेवा के इस अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: देखतुल, अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देशभर के 47 स्थानों पर आयोजित 19 रोजगार मेले के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार पत्र वितरित करने के अवसर पर आयोजित समारोह और माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे थे।
2: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं, लीजिए सुनिए तेलुगु कार्यक्रम।
3: మీడియం వేవ్ 438.6 మీటర్లు అనగా 684 కిలోహర్ట్స్. ఇది ఆకాశవాణి శ్రీ విజయపురం కేంద్రం. నేటి అమృతవర్షిని తెలుగు ప్రసారం ప్రారంభం. ప్రియమైన శ్రోతలకు నమస్కారం.

श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के एक बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला साझेदार बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती

प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बेंच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों में मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देशभर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रूपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रूपये हो गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुगम संगीत के कार्यक्रम में नीना मेहता और राजेंद्र मेहता के गाए गजलों का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। 1:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। कार्यक्रम का पहला पैगाम हमें आया है महाराष्ट्र के बीड शहर से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महेंद्र, अंजलि कारवा, बाला साहेब कारवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टबूड, पीबी कुलथेने। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म हमसाया का ये गीत।

दोस्तों, प्रियंका ने हमें पैगाम भेजा है बर्मा नाला श्री विजयपुरम से। ये सुनना चाहती है काला पानी फिल्म का गीत। प्रियंका, आनंद लीजिए आपके इस गीत का।

0: छोड़ो,
1: देखा दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: चल साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के।

गांव न थाना पंजाब से, हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता से हमें पैगाम आया है। ये सुनना चाहते हैं कामचोर फिल्म का ये गीत।

फरारगंज श्री विजयपुरम से रोहित, मोहित और अश्विन ने हमें पैगाम भेजा है। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं ड्रीम गर्ल फिल्म का ये गीत, तो आइए सुनते हैं आप।

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

श्रोताओं, जोश फिल्म के इस गीत के लिए हमें पैगाम भेजा है असम से हितेंद्र दास ने। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

ब्लड मनी फिल्म के इस गीत के लिए हमें पैगाम आया है वंडुर से राजेश राजेंद्र ने, तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: no overall shortage of petrol and diesel in the country. In a statement, the oil marketing company said that the current situation being witnessed at certain retail outlets is highly localized and temporary in nature, arising due to local demand-supply imbalances and redistribution of sales patterns in select areas. Indraprastha Gas Limited, IGL, increased the price of compressed natural gas, CNG, by 1 rupee today. After the price hike, the new rate for 1 kilogram CNG in the national capital is 81 rupees and 9 paise. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Punjab Kings in Lucknow this evening. The match will start at 7:30 p.m. Last night, Sunrisers Hyderabad defeated Royal Challengers Bengaluru by 55 runs in Hyderabad. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red warning for heatwave to severe heatwave conditions over East Uttar Pradesh, East Madhya Pradesh and Vidarbha till tomorrow. According to the IMD, heatwave conditions are expected to persist over large parts of northwest, central and eastern India over the next 6 to 7 days. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi distributes over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments, says India is partnering with various countries across the world to provide opportunities, employment and global exposure to youth. Bihar government to recruit 1 lakh teachers in the state over the next 5 years. CBSE extends last date for obtaining scanned copies, photocopies of answer books for Class 12 board examinations until tomorrow. U.S. Secretary of State Marco Rubio to call on Prime Minister Modi in New Delhi today. WHO raises public health risk of Bundibugyo strain of Ebola in Congo from high to very high. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants to take on Punjab Kings in Lucknow this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे कहा भारत युवाओं को अवसर रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले रोजगार मिले उनका सामर्थ्य खिल उठे साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है

0: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित आईसीएफ में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉ सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
2: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
0: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरला में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री आरसीएफ कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। सीबीएसई ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। सीबीएसई ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़

0: रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देशभर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रूपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रूपये हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। यह गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुगियो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान,

0: मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए

0: बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनसेवाओं को मौसम के बारे में बताया जाता है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ने, बिजली चमकने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि खराब मौसम के चलते अंडमान सागर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जिसके कारण मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे समुद्र में ना जाएं। कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीपों के अधिकांश स्थानों पर हल्की सी मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। इस समय दोपहर के 2:35 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती
1: FM 3 विजयपुरम 100.9 आपका हम सफर।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से, और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सबके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक।
1: नॉनस्टॉप म्यूजिक।

कानूनी सहायता टेलीलॉके ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।

ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा

0: तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।

और सिंगम फिल्म के गीत सुन रहे थे। हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से। 3:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं परमवीर चक्र फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है कुमार सानू, सुरेश वाडकर और मोहम्मद रफ़ी। धुन तैयार किया है और गीत को लिखा है रविंद्र जैन ने।

अनुराधा पौड़वाल और सोनू निगम की आवाज़ में आइए अब सुनते हैं मुकाबला फिल्म का ये गीत। माया गोविंद के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है दिलीप सेन और समीर।

हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में तैयार, अब लीजिए सुनिए जमीन फिल्म का ये गीत। गीत रचना समीर की तथा स्वर दिया है के और शान ने।

कार्यक्रम में अब सुनिए सायद कदरी का लिखा एवं मिथुन का संगीतबद्ध किया हुआ गीत केके और जुबिन की आवाज़ों में। फिल्म का नाम द ट्रेन।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे हैं। अपनी दूसरी सभा में हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिल्लामनेंजी रोखर हमांग इंगिरे तगा लामक तेलंगी मीडियम वेव तो 438.6 मीटर हेक्स।

0: kegnya Daniel Wilkinson a urekan tahingam mana a ang yitin keka. Hoye, hangatil nga ang in nga cinta mo hik in hurij, hangrong ita kasata ita fan kanyo tala harap ngayon.
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 14वीं कड़ी।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। वर्कप्लेस के टॉक्सिक माहौल को ऐसे करें दूर, मेंटल हेल्थ रहेगी बेहतर। खराब माहौल से कर्मचारियों के काम पर भी बहुत असर पड़ता है। वर्कप्लेस में बढ़ते टॉक्सिक माहौल का मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। खराब माहौल से तनाव को दूर रखने के लिए ऑफिस में फन एक्टिविटीज में भाग ले। मन को शांत रखने के लिए ध्यान का सहारा भी ले सकते हैं।

सकता है। खराब माहौल से तनाव को दूर रखने के लिए ऑफिस में फन एक्टिविटीज में भाग ले। मन को शांत रखने के लिए ध्यान का सहारा भी ले सकते हैं। इस भागम भागी वाली जिंदगी में हर कोई कभी न कभी तनाव के दौर से जरूर गुजरता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कॉम्पिटिटिव स्तर पर तनाव लेना अच्छा होता है, लेकिन यदि तनाव ज्यादा दिनों तक रहे तो यह आपके लाइफस्टाइल को बुरी तरह से प्रभावित करता है। बदलते दौर में कई बार ऑफिस के काम के चलते भी लोगों में तनाव आ जाता है और वर्कलोड का स्ट्रेस मेंटल हेल्थ पर असर डालने लगता है। अगर आप मानसिक तौर पर मजबूत नहीं रहते तो इससे आपके ऑफिस वर्क पर भी सीधा असर पड़ता है। पिछले कुछ समय में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां तेजी से बढ़ी है। मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिस पर खुलकर बात करना जरूरी है। अगर वर्कप्लेस में मानसिक स्वास्थ्य की बात की जाए तब ये और भी अधिक जरूरी हो जाता है। सभी कार्यस्थल पर एक ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है जो मानसिक तौर पर कर्मचारियों को रिलैक्स फील करे। अगर वर्कप्लेस का माहौल बेहतर है तो काम का प्रेशर भी आसानी से फेस किया जा सकता है। वर्कप्लेस का खराब माहौल मेंटल हेल्थ पर असर डालता है और इससे आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी और चिंता का शिकार होने लगते हैं। हालांकि कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे वर्कप्लेस पर मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा जा सकता है। हेल्थी बाउंड्रीज क्रिएट किए जा सकते हैं, जैसे आपको हर काम या फिर हर बात पर हाँ कहने की जरूरत नहीं है। आपको ये सीखना होगा कि आप कैसे शांत स्वभाव से दूसरों को कब और कैसे एक प्रोफेशनल की तरह न बोल सकते हैं। That means you have to learn to say no, न बोलना सीखे। ये एक बेहद जरूरी स्किल है। काम के बीच ब्रेक जरूर ले दोस्तों। कई लोग ऑफिस में काम के प्रेशर में लगातार घंटों बैठकर काम करते हैं। इसका मेंटल हेल्थ पर सीधा असर पड़ता है। इसीलिए जरूरी है कि काम के बीच में माइक्रो ब्रेक जरूर ले और इस दौरान कुछ शारीरिक गतिविधि करे। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ जिम्मेदारी मिलते ही लेकिन वह उस काम को ठीक से नहीं जानते हैं और इस वजह से वह इसे लेकर तनाव में रहते हैं। ऐसी स्थिति में आप किसी से मदद मांग सकते हैं। मदद मांगने से आप कमजोर साबित नहीं होंगे, हालांकि इससे आपके लोगों के बीच में मेलजोल जरूर बढ़ेगा जो आपको भविष्य में मदद करेगा। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। बीइंग कॉन्फिडेंट, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भरता, ये बेहद जरूरी है कि इस भागम भागी और जिम्मेदारी भरी जिंदगी में अपने लिए समय जरूर निकाले। कई लोग काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। हर दिन कुछ घंटे खुद के लिए निकाले। फन एक्टिविटीज में भाग ले। पार्टिसिपेट इन सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशनल वर्क। कई लोग वर्कप्लेस में काफी रिजर्व होते हैं। ऐसी आदत कई बार कर्मचारियों को अकेला बना देता है। तनाव को दूर रखने के लिए ऑफिस में फन एक्टिविटीज में हिस्सा ले। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दे। मानसिक तौर पर मजबूत रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे। आप खुद में ऐसी आदतों को डालें जो आपको आत्मनिर्भर बनाए। अच्छी फिटनेस के लिए जरूरी है कि हर दिन एक्सरसाइज या फिर योगा, मेडिटेशन, ये सब कर सकते हैं। एरोबिक एक्टिविटीज है, स्विमिंग है, डांस है, म्यूजिक थेरेपी है, ये सब आप अपनाएं। मन को शांत रखने के लिए ध्यान का सहारा भी ले सकते हैं। मेंटल हेल्थ को लेकर इन दिनों लोग जागरूक होने लगे हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी बेहद जरूरी है। अच्छी सेहत के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। खान पान में परहेज से लेकर जिम में घंटे एक्सरसाइज करने तक आप सब कुछ करते हैं। आप अपने शरीर पर कितना भी मेहनत कर ले, अगर आप मेंटल हेल्थ पर ध्यान नहीं देते तो आप सेहतमंद नहीं हो सकते। मेंटल हेल्थ से अक्सर लोगों को दिमाग के डिप्रेशन जैसी चीजें सामने आती है। रोजमर्रा के छोटे छोटे तनाव के बारे में हम सोचते ही नहीं है। आपको बता दे कि ऑफिस में होने वाले रोज के टेंशन भी आपके सेहत के लिए बुरी साबित हो सकती है। ऑफिस के तनाव का आपके काम पर तो असर पड़ता ही है। आपकी

सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। आपको कोशिश करना चाहिए कि ऑफिस में मिलने वाले प्रेशर का आप पर ज्यादा असर न पड़े और आपके आसपास का माहौल खुशनुमा रहे। आइए आज के लम्हे प्रोग्राम में आरजे चेतन आपको बताते हैं कि कैसे आप ऑफिस में भी अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

ऑफिस में अगर योगा, मेडिटेशन, डांस या कोई फन एक्टिविटीज हो रही है तो समय बचाने के चक्कर में न पड़े और बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लें। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें पूरे ऑफिस को बुलाया गया हो उसमें ज़रूर शामिल हो। अगर आपको कोई भी बात मानसिक रूप से परेशान कर रही है तो इस बारे में अपने सीनियर से बात करें। आपके बॉस को पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या दिक्कत है। बॉस के जवाब से आप भी समझ जाएंगे कि आगे आपको क्या कदम उठाने हैं। वर्क लाइफ बैलेंस ये बेहद जरूरी है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाए बिना आपके दोनों ही गाड़ियां पटरी से उतर सकती है। ध्यान रहे कि घर में तनाव का असर आपके काम पर न पड़े। इसी तरह ऑफिस की टेंशन ऑफिस के एग्जिट तक ही आपके साथ रहनी चाहिए। इसके बाहर की दुनिया आपकी अपनी है। वर्क स्टेशन की सजावट, हाउ यू डेकोरेट योर वर्क प्लेस, ये छोटा सा लेकिन बेहद कारगर तरीका है। अपने वर्क स्टेशन पर अपने पसंदी के चीज सजाए, अपने परिवार वालों के तस्वीर सजा सकते हैं और कोई मोटिवेशनल कोट सामने लगा सकते हैं या आपको चीयर करने में मदद करेंगे। सो ऑल चीयर्स टू लाइफ। विद दिस वी कंक्लूड टुडेस प्रोग्राम। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ लम्हे। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम माय डियर फ्रेंड्स, बाय। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 4:40 हुए हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम, अब से कुछ देर बाद यानी शाम 4:45 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5 बजे। 5:30 पर बांग्ला में आप सुनेंगे कार्यक्रम बुजुर्ग नागरिकों के लिए। किसानवाणी कार्यक्रम में शाम 6 बजे न्यू वंडूर की महिला पशुपालक चंपा रानी दास से भेंट की जाएगी। आमने सामने कार्यक्रम का समय रहेगा 6:30। दिलीप सिंह द्वारा लिखित और कमल दत्त द्वारा निर्देशित झलकी चोर के घर मोर आप सुन पाएंगे 6:45 पर। मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम एवं जनसूचनाएं दी जाएंगी 7:15 पर। दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 7:20 पर।

7:30 पर युवाणी में होगा कार्यक्रम ऐसा भी होता है। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का लुत्फ लीजिए रात 8 बजे। 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार, तत्पश्चात होगा कार्यक्रम गौरव गान। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती और रात 10 बजे संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सुनेंगे चंगना शेरी, सीपी माधवन निम्बुथिरी से कर्नाटक शैली में गायन, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। जबकि रात्रि 10 बजे FM 100.9 MHz पर आप सुन पाएंगे विद भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल हमारी पहली सभा आरंभ होगी प्रातः 5:23 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात होगा भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। 5:55 पर एग्री टिप्स कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा मुर्गियों में सफ़ेद व खूनी दस्त। जलयानों की यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत कराएंगे सवेरे 6:10 पर। 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम हवा शीर्षक पर केंद्रित होगा। रामचरित मानस गान की 248वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी 6:30 पर। वतन के गीत कार्यक्रम का समय रहेगा 6:40। 6:50 पर बताया जाएगा कार्यक्रमों का विवरण। सवेरे 7 बजे सुनिए जन सूचनाएं। प्राइमरी चैनल पर 7:15 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर आप सुन पाएंगे विद भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर फनकार होंगे उदित नारायण और इकबाल बानो। बाल जगत कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 9 बजे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 पर जतिन भट्टाचार्य का सरोद वादन प्रसारित किया जाएगा। लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश का लुत्फ लीजिए सुबह 10 बजे। दिन के 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम जनता जंक्शन। गजल कार्यक्रम में 11:30 पर कलाकार होंगे रूना लैला, पीनाज मसानी और चंदन दास। पुराने गीतों का लुत्फ लीजिए दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम में। मलयालम कार्यक्रम में 12:30 पर सुनिए पुराने फिल्मी गीत। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में मेहंदी हसन और अनुराधा पौडवाल को आप सुन पाएंगे। घर संसार कार्यक्रम का समय रहेगा 1:30। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा संपन्न होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारी स्थानीय सभा रहेगी गीत लहरी कार्यक्रम के साथ। 3 बजे सुनिए कार्यक्रम एल्बम टाइम, तत्पश्चात 3:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात 10 बजे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य का सितार वादन हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। जबकि रात्रि 10 बजे FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे विद भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4:45 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम बहारों की शाम।

कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं नितिन मुकेश और साधना मुकेश के गायक खुदगर्ज फिल्म के इस गीत से। बोल इंदिवर के धुन बनाई राजेश रोशन ने।

बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में तैयार, अब लीजिए सुनिए खोज फिल्म का गीत। स्वर दिया नितिन मुकेश ने, गीत रचना अनजान की।

0: नितिन मुकेश और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में ये गीत था यारा दिलदार है फिल्म से। इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम बहारों की शाम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है, शाम के 5 बजे है। अब लीजिए सुनिए तमिल कार्यक्रम।
1: ஆகாஷ்வாணி ஸ்ரீ விஜயபுரம் வானொலி வழங்கும் தமிழ் அமுதம். வணக்கம் நேயர்களே.

श्रोताओं, अभी आप तमिल कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। अब पेश है बांग्ला कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना बांग्ला कार्यक्रम। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं। अब किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे, किसान वाणी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों एवं बहनों को आंचल का
1: और शांता का
0: नमस्कार। किसान साथियों, सफलता सिर्फ एक ही है, अपनी जिंदगी को अपने शर्तों पर जीना। और ये विचार है क्रिस्टोफर मॉर्ली के, और इसका अर्थ है कि सच्ची सफलता वही है जब हम अपनी इच्छाओं और मूल्यों के अनुसार जीवन जी सकें।
1: बिल्कुल सही आंचल, जब तक हम अपने अनुसार अपने जीवन को जिएंगे तभी हम सफल भी होंगे। इसी खूबसूरत विचार को लिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने किसान साथियों से पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, गेंदा की खेती में पिंचिंग के क्या फायदे हैं, ये हमारे किसान साथियों को बताना है। आंचल प्रश्न एक बार फिर दोहरा दो।
0: किसान साथियों, प्रश्न है गेंदा की खेती

0: में पिंचिंग के क्या फायदे हैं। तो ये रहा आज का प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर हम आपको इस कार्यक्रम के अंत में जरूर बताएंगे।
1: साथियों, आप हमारे साथ बने रहें।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान साथियों, आइए आपको मिलवाते हैं न्यू वंडूर की रहने वाली चंपा रानी दास जी से, जो कि महिला पशुपालक हैं। तो चलिए मिलते हैं इनसे और सुनते हैं इनसे की गई बातचीत।
4: किसान साथियों, आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं न्यू वंडूर गांव की एक महिला पशुपालक चंपा रानी दास। चंपा रानी दास जी, कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं।
5: नमस्ते मैम।
4: बताइए चंपा रानी दास, आप एक महिला पशुपालक है तो आपके पास कौन कौन से पशु है?
5: मेरे पास गाय है और मुर्गी है और बतख है।
4: अच्छा, तो कितनी गाय होंगी?
5: मेरे पास अभी टोटल 32 गाय है।
4: 32 गाय?
5: 32 गाय है।
4: तो जो गाय आप पालती है वो कहाँ से, आप कैसे 32 गाय को कैसे इम्प्रूव, मतलब जैसे छोटे से लाई होंगी, एक एक आधा गाय से ही अपनी शुरुआत की होंगी ना?
5: मैं पहले एक दूध के लिए, अपने घर के दूध के लिए गाय खरीदी थी जब मैं सुरामी शेल्टर में थी।
4: अच्छा।
5: और 5 साल पहले तब एक गाय खरीदने के बाद जैसे दूध देने लगी तो मेरा अगल बगल वाले बहुत सारा दूध पूछने लगे, मुझे भी दे दो। उस तरह कर करके फिर हम और दो गाय खरीदी। दो गाय खरीदने के बाद मेरा और 4 बच्चा हो गया। एक बच्चा, छोटा वाला बच्चा खरीद के लाई थी
4: जी।
5: 4 बच्चा हो गया, 3 गाय हो गया। फिर वहाँ में रहने का बहुत मुश्किल है, शेल्टर है
4: जी,
5: जगह छोटा है। फिर मेरा घर वंडूर में है तो शेल्टर में ऐसी टेम्पररी के लिए रहती थी
4: जी जी।
5: फिर वहाँ से हम हस्बैंड को बोले चलो हम लोग घर चलते हैं, वहाँ में जाके जमीन वमीन सब है, वहाँ में जाके हम लोग गाय भी पालते हैं। एक्चुअली मैम हम नर्सिंग ट्रेनिंग करी हो, जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग करी हो।
4: अच्छा।
5: फिर मुझे जैसे जॉब नहीं मिला तो कोरोना का टाइम हम प्राइवेट हॉस्पिटल में करती थी तो मुझे थोड़ा तकलीफ तो बोल के हम छोड़ दी, तब जॉब छोड़ दी। तो उसके बाद हम सुनामी शेल्टर में चले गए। जाने के बाद वो एक गाय खरीदने के बाद 3 गाय हो गए, एक एक करके ज़्यादा हो गया। फिर हम वहाँ में रहने का खिलाने का बहुत मुश्किल हो गया, हस्बैंड भी जॉब में है। तो हम लोग बोले चलो हम लोग घर चलते हैं, वहाँ में जाके हम लोग अपना से बिजनेस वहाँ पे शुरू करते हैं। और मुझे जॉब का कोई टेंशन नहीं है, मुझे जॉब करने का कोई होप ही नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। और एक्चुअली मेरा हस्बैंड भी पुलिस में है तो वो बाहर में जॉब अप करना बोलने से मेरे को, और लीव वैकेंसी मिलना बाहर में करना बोलने से मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बच्चे एक है, बच्चे भी स्कूल जाते हैं। फिर मैं अपना घर में आके वहाँ में अपना घर बना के, काउ शेल्टर बना के अपना घर बना के वहाँ में रहना शुरू करी।
4: अच्छा, यानी कि आप पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी आप नौकरी की तरफ नहीं गई, अपने गांव में ही, जैसे आपने कहा कि आपके गांव में दूध की मांग थी, लोग जो है दूध की मांग करने लगे तो आपका ध्यान उस ओर चला गया और आप गाय पालने में अपना इंटरेस्ट दिखाई,
5: अपने गांव में चले गए।
4: बिल्कुल। तो देखिए 32 गाय कोई कम नहीं होता है, तो इनका पालन पोषण, इनका जो खिलाना पिलाना वो आप कैसे करती है? आपके साथ और कोई भी होगा?
5: जी, मेरा दो दादा लोग हैं, मेलेंस का दादा लोग हैं
4: जी, जी।
5: उन लोग मेरा बहुत सारे मदद करते हैं,
4: पूरे परिवार के लोग मिलकर के आप अपने घर को
5: जी संभाल के रखिए,
4: संभाल के रखिए।
5: मेरा हस्बैंड भी, वो भी बहुत मदद करते हैं, जितना हो सकता मदद करते हैं। और मेरा दादा लोग तो दिन रात मेरे साथ ही रहते हैं। और अपना मैं मुर्गी है, मुर्गी पालन करती हूँ, बतख पालन करती हूँ
4: जी।
5: उसी से मेरा दिन भर, सुबह 4 बजे से लेकर रात का 11 बजे, दिन भर इसी तरह मेरा कट जाता है। कोई थकावट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे भी हो मेरा दिन का काम ऐसे करना ही है।
4: यानी कि बड़े आराम से आप कर लेती?
5: बड़े आराम से कर लेती हम।
4: लेकिन बहुत लोग बोलते हैं ना कि घर के काम से फुर्सत ही नहीं।

0: मिलता है, तो कैसे हम गांव में कृषि की ओर ध्यान दें, पशुपालन की ओर ध्यान दें।
1: नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम।
0: अगर हम करना चाहें
1: हम
0: तो
1: करना चाहते तो सब कुछ कर सकते,
0: कर
1: घर भी
0: सकते
1: संभाल
0: हैं।
1: सकते, हस्बैंड भी संभाल सकते, बच्चे भी संभाल सकते, गाय भी पाल सकते, मुर्गी भी पाल सकते, बाहर का काम भी कर सकते हैं, घर का काम भी कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं।
0: बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही बड़ी बात आपने कही, क्योंकि महिलाओं की जो जिम्मेदारी होती है वो बहुत ज़्यादा होती
1: जी
0: है,
1: मैम,
0: और हम महिलाएं जो है उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते भी हैं।
1: जी मैम,
0: चलिए अब हम आते हैं आपके दोबारा पशुपालन की ओर। जैसे गाय आपने पाला, उसके जो रहने खाने का वो आप कैसे करती, क्या खिलाती है गायों को ताकि उसे जो अच्छे दूध उत्पादन आपको मिल सके।
1: गाय को हम सुबह चराने लेके जाते, मेरे दादा लोग सुबह चराने लेके 8 बजे जाते, 11 बजे लेके आ जाते, धूप में बाहर उतना ज़्यादा नहीं
0: नहीं
1: रहते,
0: जी
1: 11 बजे तक लेके आ जाते। 11 बजे लेके आने के बाद मेरा जो क्या गेहूं का व्हीट स्ट्रॉ जो होते हैं वो हम मंगा के रखे हैं। व्हीट स्ट्रॉ को अपना गा मेरा गाय का सबका अलग अलग जगह है खिलाने का,
0: अच्छा
1: बड़ा शेल्टर है, सबका अलग अलग रहने का खाने का सबका अलग अलग जगह है। तो फिर उन लोगों को जो व्हीट स्ट्रॉ उनको मेले से मंगा के वो हम क्या करते हैं, भिगा के रखते हैं, सुबह भिगा के जैसे घर धोते वही टाइम भिगा देते,
0: जी
1: भिगा देने से अच्छे से फूल जाते, एकदम सॉफ्ट हो जाता, एकदम फूल जाता। फिर जैसा गाय 11 बजे लेके आ जाते घर में, लेके आने के बाद उनमें दाना पानी सब मिक्स करके उस स्ट्रॉ का साथ मिक्स करके अपना अपना जगह में, उन लोग चले जाने से उन लोग अपना अपना अपना अपना नाम बुला के चले जाने से अपना अपना जगह में जाके खड़े हो जाते। तो बांध के उन लोग को बस 11 बजे से लेके 3 बजे उन लोग खाना पीना रेस्ट वही घर में ही है।
0: अच्छा, ये तो खिलाने
1: फिर
0: पिलाने की बात हुई, उनके रहने का की क्या व्यवस्था है।
1: उनका शेल्टर है
0: अच्छा शेल्टर बनाया है।
1: जी,
0: साफ सफाई का कितना ध्यान रखती हैं आप।
1: साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं मैम। हम सुबह एक बार धोते हैं, 5 बजे से लेके एक बार धोते हैं, फिर शाम को एक बार धोते हैं। जैसे सुबह छोड़ देते हैं गाय, छोड़ के सब
0: जी
1: हम लोग दूध दूध निकालते, दूध निकालने में जो दादा एक दादा सारा घर सफाई करके गोबर वोबर फेंक के सारा घर को पूरा धो देते हैं। धोने के बाद फिर हम लोग दूध दूध निकालना हो जाते हैं, उन लोग एक जन घास काटने चले जाते हैं, एक जन घर का बाकी सब जो काम है बच्चे बच्चे का संभालना वो सब कर लेते हैं। करके फिर उन लोग नाश्ता पानी करके 8 बजे उन लोग निकल जाते हैं गाय को चढ़ाने के लिए, चढ़ा के फिर 11 बजे लेके आ जाते हैं। 11 बजे लेके आके फिर उन लोग घर में जो दाना पानी जो व्हीट स्ट्रॉ जब दिए हैं उन लोग खाते, क्योंकि
0: जी
1: इतना धूप में जो बाहर में उतना ज़्यादा घास नहीं है ना, घर में भी खिलाना होता है। फिर 3 बजे तो उस लोग घर में रेस्ट करते हैं, फिर 3 बजे शाम का दूध निकालते हैं, 3 से 5 बजे शाम का दूध निकालते हैं, फिर और आधा घंटा रेस्ट है, फिर 5:30-6 बजे उन लोग फिर से चढ़ाने लेके जाते हैं शाम को,
0: अच्छा,
1: फिर 8 बजे घर में लेके आ जाते हैं।
0: तो कुल कितना दूध उत्पादन होता होगा।
1: मेरा अभी 45 to 50 लीटर पर डे होता है,
0: अच्छा पर डे 45 से 50 लीटर।
1: जी।
0: क्या लीटर भाव दूध बेचते हैं आप वंडूर
1: हम
0: से।
1: तो होलसेल में देते हैं मैम, तो इसलिए 70 करके पर लीटर देते हैं।
0: अच्छा, तो लोग घरों से आकर ले जाते हैं जो
1: जी
0: होलसेल में
1: जी
0: लेते
1: जी
0: हैं,
1: घरों से आके लेके
0: तो
1: जाते हैं,
0: पूरे 45 और 50 लीटर्स आप वही होलसेल में दे
1: हाँ
0: देती
1: होलसेल
0: हैं।
1: में रेट में देते हैं,
0: आपके गांव में भी तो ज़रूरत
1: हाँ
0: पड़ती
1: गांव
0: होगी।
1: में जिसका ज़रूरत है उन लोग घर से आके लेके जाते हैं।
0: तो यानी कि आप मेहनत करती है उसका मुनाफा आपको मिल रहा है
1: जी मैम,
0: और आप इस काम से बेहद खुश भी
1: बहुत
0: हैं।
1: खुश है।
0: बहुत खुश है। चलिए चंपा रानी दास जी, अब हम मुर्गी पालन पर आते हैं। कितनी मुर्गियां हैं।
1: मुर्गियाँ अभी 150-200 तक मुर्गी है,
0: अच्छा
1: अभी बीच में बीमारी लगा तो मेरा मुर्गी बहुत सारा चले गए।
0: अच्छा तो किस तरह की बीमारियां मुर्गियों पर लगती है और उसका जो जो उपचार है वो आप कैसे करती हैं।
1: वो हम जैसी मुर्गी को जैसा बीमारी लगना शुरू होता है मुर्गी के, एक जैसे कि हम लोग मुर्गी ठीक से दाना पानी नहीं खाते,
0: जी
1: एक रेड रेड वाला और सफ़ेद वाला उन लोग लैट्रिन करते हैं, तभी पता चलता है कि मुर्गी बीमार
0: बीमार
1: लगा।
0: है।
1: जी फिर हम लोग जाके वो वेटनरी वाले से हम लोग से दवाई लेके आ जाते, जितना होता उन लोग उस लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, फिर जो बचता है बचता है, जिन्हें बचता है क्या कर सकते हैं। और
0: बिल्कुल, तो उसे एक अंडा
1: अंडा
0: आपको
1: उत्पादन के लिए जी,
0: कितना अंडा आपको मिल जाता होगा।
1: अंडा भी पर डे मेरे को 40-45 तक हो जाता है।
0: अच्छा, तो अंडा जो है, अंडे का क्या भाव है आपके वंडूर में।
1: अंडे अभी 18 करके पर डे, एक
0: अठारह
1: एक
0: के
1: अंडा 18 करके होता है।
0: अच्छा, तो वो भी आप बेच देती हैं।
1: जी
0: मुर्गियों में जो टीकाकरण की बात आती है तो टीकाकरण आप समय समय पर करती
1: जी
0: हैं।
1: जी जब बच्चा रहता है, जब बच्चा लेके आते हैं नया बच्चा जब खरीद के लेके आते हैं, तो उन लोग 3 डोज रहते हैं टीकाकरण का, फर्स्ट
0: अच्छा
1: डे 7 डे और 21 डेज में 3 टीकाकरण रहते
0: इन
1: हैं,
0: बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ना,
1: बहुत
0: क्योंकि
1: जरूरी
0: जब तक
1: है,
0: हम टीकाकरण नहीं
1: नहीं
0: करेंगे,
1: होते
0: समय
1: हैं।
0: पर मुर्गियों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम कैसे उनसे उत्पादन लेंगे।
1: हाँ जी,
0: ये तो रही मुर्गी पालन की बात, अब आते हैं बकरी पालन पर,
1: बतख बकरी नहीं है मैम,
0: बत्तख पालन पर।
1: बतख पालन,
0: बत्तख कितने कितने
1: बतख।

0: मेरा 40 तक होगा।
1: अच्छा, तो बत्तख का भी जैसे मुर्गियों का देखभाल होता है उसी तरह बत्तख का
0: उसी
1: भी,
0: तरह एक ही साथ ही में
1: एक ही
0: रहते हैं,
1: साथ ही
0: एक ही साथ
1: रखते
0: ही
1: हैं
0: रहते हैं
1: जी।
0: बत्तख का भी एक ही
1: बत्तख को
0: साथ।
1: भी वही दाना दिया जाता है?
0: हाँ गेहूँ और दाना चावल और जो वही दाना देते हैं। बत्तख भी हम अंडा के लिए रखे हैं, सेल के लिए नहीं रखी है, अंडा
1: सेल
0: के
1: के लिए।
0: लिए।
1: अच्छा,
0: अंडा
1: बत्तख का अंडा क्या भाव होता होगा?
0: बत्तख का 15 रुपीज़ पर।
1: ₹15 पर, वो भी आराम से आपके वहाँ
0: हाँ
1: बिक
0: जी
1: जाता है।
0: आराम से सेल हो जाता है।
1: यानी कुल मिलाकर के आप अब अच्छी तरह से अपने काम कर रही हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रही हैं। चंपारानी दास जी, देखिए पशुपालन करना छोटी बात नहीं होती और आपके पास काफ़ी मात्रा में मुर्गियां हैं, बत्तख है और गाय भी आप पालती हैं। तो इन सबको जो कभी कोई बीमार हो जाता है या कभी कोई जैसे गांव में कोई रोग फैल जाता है, तो आपके जो पंचायत है उनसे आपको सुविधाएं मिलती हैं?
0: जी
1: वेटनरी से
0: जी
1: लोग आपके पास आते
0: जी
1: हैं?
0: जी बहुत सारा मदद मिलता है उन लोगों को। जैसे हम खबर देते हैं जी बहुत सर इस तरह हुआ है, उन लोग बोलते हैं, हम लोग आते हैं देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं फिर दवाई साथ में लेके आ जाते हैं।
1: अच्छा,
0: उसमें कौन सा
1: दवा
0: दवाई है,
1: इत्यादि आपको वहाँ से मिल जाता है
0: हाँ
1: आराम
0: आसानी
1: से?
0: से मिल जाता है। हम लोग डॉक्टर सर तो बहुत ही अच्छे हैं, कुछ भी
1: अच्छा।
0: खबर होने से उन लोग घर में आके ट्रीटमेंट करके जाते हैं। जैसे गाय का कोई प्रॉब्लम हो तो उन लोग समय समय में आके उन लोग टीकाकरण, वैक्सीनेशन, फिर
1: सब
0: अब
1: करते हैं।
0: हाँ डीवॉर्मिंग सब कुछ घर में आके करके करके जाते हैं। 6 महीने में एक बार टैगिंग, फिर डीवॉर्मिंग और टीकाकरण सब 6 महीने में एक बार करके जाते हैं।
1: अच्छा, तो यानी आपको उनसे कोई शिकायत नहीं है,
0: जी जी
1: यानी कि आपकी पूरी मदद
0: जी
1: वेटनरी
0: बहुत सारे मदद
1: डिपार्टमेंट
0: करते
1: से
0: हैं।
1: मिल
0: हाँ
1: रहा
0: जी
1: है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप तमाम बहनों को, काफ़ी महिलाएं हैं जो आज भी घर पर ही बैठी हैं, कोई कार्य नहीं कर रही है, उनको क्या कहना चाहेंगी?
0: उनसे मेरा यही कहना है कि उन लोग भी मेहनत करना सीखें,
1: जी
0: मेहनत का फल एक दिन न दिन मिलेगा ही। हम भी
1: बिल्कुल।
0: बहुत मेहनत करी, मेहनत करने के बाद ही आज हम यही मुकाम में पहुंची है। मैं पहले पहले मतलब 10-12 गाय को हम अकेला चढ़ाने लेके जाती थी शाम को,
1: अच्छा।
0: अकेला चढ़ा, मेरा कोई लेबर नहीं था, सारा देखभाल हम अकेले करती थी। आज जाके मेरे पास 2 लेबर है, उन लोग का रहने का खाने का सारा इंतजाम हम करके रखी है। आज मेरा जाके मैं जब 10-12 गाय से मेरा आज मेरा 32 गाय है, तो ये मेरा मेहनत के फल है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत करने से ही तो हम आगे बढ़ेंगे
0: जी
1: और मेहनत का फल मीठा होता है, आज आपको पता चल रहा होगा ना।
0: जी मैम
1: और आपने कहा कि आपके परिवार का पूरा सहयोग आपको है,
0: जी मैम
1: तो इसी तरह से अगर हमारी महिलाएं अपने घर पर ही छोटे मोटे कार्य,
0: छोटे मोटे
1: जैसे
0: काम करते,
1: चार पांच मुर्गियां रख ले या पांच चार
0: उन
1: पांच
0: लोग
1: बत्तख
0: को तो
1: पाले,
0: अंडे खरीदने का बाहर से जरूरत ही नहीं
1: जरूरत
0: होता
1: नहीं, अपने
0: ना।
1: घर के
0: घर के
1: जो
0: अंडे जो
1: जी।
0: देसी मुर्गे के अंडे घर घर में ही आप खा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बच्चे को दे सकते हैं, बाहर जाने का
1: अब
0: जरूरत ही
1: जाने की
0: नहीं।
1: जरूरत नहीं, खरीदना नहीं पड़ेगा,
0: जी
1: अपने घर के खर्च को बड़े आराम से निकाल सकती है। बहुत ही अच्छी बात आपने कही तमाम महिलाओं से। चलते चलते आप कुछ कहना चाहेंगी?
0: जी अभी तो मेरा एक ही प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा गाय अभी चढ़ाने का जगह थोड़ा कम हो गया,
1: अच्छा।
0: क्योंकि बहुत सारा जगह बुक हो, क्योंकि सब्जी उब्जी करते हैं बहुत जन, और जो बहुत जन को पूरा बाउंड्री करके रखे वो सब जगह गाय चढ़ाने नहीं देते हैं। तो हम यही कोशिश करते हैं जो जिसका जो ज़मीन वमीन जिन लोग सब्जी उब्जी करते हैं उनका अपना ज़मीन हम लीज में लेके वहाँ में घास उगाने का कोशिश करते हैं।
1: अच्छा।
0: गांव वाले में जब बहुत मदद करते, बहुत सारा मदद करते, कोई कभी कुछ कोई भी मतलब घर वाले बाहर वाले कोई भी मुझे कोई कभी मेरे को मतलब उसे बुरी नज़र से नहीं देखते और बुरी बुरी बात भी नहीं करते गाय के बारे में। गांव में कोई भी किसी के भी दूध का ज़रूरत हो, गोबर का ज़रूरत हो, कुछ चीज़ का भी ज़रूरत हो, मेरे घर से हमेशा मिलता है मेरे से
1: यानी कि आप अभी घास, किसी जमीन को लेकर के घास उगाने
0: घास
1: के
0: उगाने
1: बारे
0: की
1: में
0: कुछ
1: सोच रही
0: चीज़
1: हैं,
0: सोच
1: तो
0: रही
1: अपने
0: है।
1: पंचायत से आपने कभी पूछा?
0: नहीं पंचायत से भी पूछे नहीं, क्योंकि पंचायत के अंडर में ज़मीन नहीं हो कि पर्सनल ज़मीन है
1: सबका
0: ना।
1: अपना
0: हाँ अपना
1: जमीन
0: अपना
1: है,
0: ज़मीन है,
1: बिल्कुल।
0: तो उनका अभी वही एक
1: यानी कि
0: ज़मीन
1: चराने की जो जगह है वो कम पड़ रही
0: कम
1: है।
0: पड़ रही है अभी।
1: अच्छा,
0: गाय दिन दिन मेरा गाय
1: ज़्यादा हो
0: ज़्यादा
1: रहा
0: होते
1: है,
0: हैं ना, चढ़ाने का जगह कम पड़ रहा है।
1: कम पड़ रहा है। चलिए, आपकी जो बातें हैं हम समझते हैं कि आपके गांववासी सुन रहे होंगे और किसी तरह से आपकी मदद ज़रूर करेंगे। चंपारानी दास जी, आज आप कार्यक्रम में आई, इतनी सारी बातें हमसे साझा किए, अपनी तमाम बहनों को अपने बारे में आपने बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: किसान साथियों, अभी आपने न्यू वंडूर की रहने वाली चंपा रानी दास से की गई बातचीत सुनी और आपने जाना कि कैसे वे पशुपालन कर अपना गुजर बसर करती हैं।
1: बिल्कुल आंचल, ऐसी बहुत सारी जो महिला कृषक बहनें हैं वो पशुपालन कर, कृषि कार्यों से जुड़कर अपने घर का गुजारा करती हैं। हम समझते हैं हमारी तमाम

बहनें जो आज इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, वो जरूर इनसे लाभान्वित होंगी, उन्हें ये विचार जरूर पसंद आए होंगे कि किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। चलिए कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं और अपने किसान साथियों को सुनवा देते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: साथियों, गीत का आनंद तो आपने ले लिया। आचल अब अपने किसान साथियों को दे देते हैं एक जानकारी कि बकरी पालन करते समय किस तरह से शेड बनाना चाहिए।
1: किसान साथियों, चलिए आपको बता दें कि बकरी पालन के लिए शेड को साफ रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बकरियों के शेड के लिए

ऐसी जगह चुने जहां बकरियों को चरने के लिए हरा भरा इलाका मिले, और बकरियों के शेड में बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही उनको स्वस्थ वातावरण में रखें, उनका नियमित टीकाकरण करते रहें। हर 3 महीने में बकरियों को कृमिहरण या डीवॉर्मिंग गोलियां दें। बकरी पालन से जुड़ी कुछ और बातें हम आपको बता दें। बकरी पालन के लिए अच्छी नस्ल के प्रजनन बकरे लाकर स्थानीय बकरियों से गर्भाधान कराकर नस्ल सुधार किया जा सकता है। बकरियों को प्रोटीन युक्त आहार दें। सूखा चारा हर दिन खिलाएं। बकरियों को बबूल की सूखी पत्तियां, अरहर, चना, मटर का भूसा, मूंग और उड़द की सूखी पत्तियां, बरसीम या रिज़का का सूखा चारा खिलाएं। चलिए अब आपको बता दें कि बकरी पालन के लिए शेड बनाने का सही तरीका क्या है। यदि आप बकरी पालन कर रहे हैं या इसे शुरू करने की सोच रहे हैं, तो सबसे प्रथम आपको बकरियों के लिए एक अच्छा और सुरक्षित शेड या घर बनाना है। एक अच्छा शेड न केवल बकरियों को मौसम की मार से बचाता है, बल्कि उनकी सेहत और उत्पादन पर भी सकारात्मक असर डालता है। पहले हम आपको बता दें कि शेड क्या होता है। शेड यानी बकरियों के लिए घर। जैसे हम खुद को धूप, गर्मी, बरसात से बचाने के लिए घर बनाते हैं, वैसे ही बकरियों के लिए भी हमें एक ऐसे घर की व्यवस्था करनी चाहिए जो उसे धूप, गर्मी, बरसात से सुरक्षित रखें। शेड भी कई तरीके के बनाए जा सकते हैं, जैसे कंक्रीट के शेड, लकड़ी के शेड, मिश्रित सामग्री के शेड, बकरियों के लिए मिट्टी का शेड, ऊंचे फर्श वाला शेड, खुला शेड और बंद शेड। वैसे कंक्रीट शेड पूरी तरह कंक्रीट का बना होता है, वैसे ही लकड़ी का शेड पूरी तरह लकड़ी से बना होता है, परंतु मिश्रित सामग्री का शेड कंक्रीट और लकड़ी दोनों का उपयोग करके बनाया जाता है। इनका निचला हिस्सा कंक्रीट का होता है जो शेड को मजबूती प्रदान करता है, जबकि इसका ऊपरी हिस्सा आमतौर पर लकड़ी या धातु का बनाया जाता है जो अच्छे वेंटिलेशन और गर्मी से सुरक्षा के लिए अनुकूल होता है। कंक्रीट और लकड़ी का बना ये शेड मजबूत और टिकाऊ होता है। बकरियों के लिए मिट्टी का शेड पारंपरिक तरीके से मिट्टी या कच्ची ईंटों से बनाया जाता है। वहीं ऊंचे फर्श वाला शेड जमीन से कुछ ऊंचाई पर बनाया जाता है, जिससे बकरियों को नमी और गंदगी से बचाया जा सके। बकरियों के लिए खुला शेड उसे कहा जाता है जो पूरी तरह से खुला होता है, जिसमें केवल छत और स्तंभ होते हैं और दीवारें नहीं होती। इसका फर्श जमीन पर हो सकता है या ऊंचा किया जा सकता है। वहीं बंद शेड पूरी तरह बंद होता है, जिसमें ठोस दीवारें होती हैं। इसका फर्श कंक्रीट, लकड़ी या मिट्टी का हो सकता है और छत धातु या लकड़ी की होती है। बकरी पालन के लिए जब हम शेड बनाते हैं, कुछ बातों का ध्यान हमें रखना पड़ता है, जैसे स्थान का चुनाव। जहाँ भी आप शेड बना रहे हों, जगह का चुनाव करते समय इस बात पर ध्यान दें कि वह जगह सूखी हो और वहाँ पानी का जमाव न हो। इसके अलावा शेड ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ सूरज की रोशनी अच्छी तरह से पहुँच सके, ताकि बकरियों को प्राकृतिक रोशनी मिले और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। साथ ही शेड का आकार और डिज़ाइन पर भी हमें ध्यान देना है। शेड का आकार आपकी बकरियों की संख्या पर निर्भर करता है। एक बकरी के लिए लगभग 10 से 15 वर्ग फुट जगह की ज़रूरत होती है। इसलिए अगर आपके पास 20 बकरियां हैं, तो शेड का आकार कम से कम 200 से 300 वर्ग फुट होना चाहिए। इसके अलावा आपको सही डिज़ाइन पर भी ध्यान देना चाहिए। शेड का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि हवा और रोशनी दोनों को अच्छी तरह आने दें। इसके लिए शेड के चारों ओर खिड़कियां और जालीदार दरवाजे लगाएं। शेड की ऊंचाई कम से कम 7 से 8 फुट रखें, ताकि वेंटिलेशन अच्छा हो। अगली जो बात है जिस पर आपको ध्यान देनी है, वो है विभाजन। शेड के अंदर अलग अलग सेक्शन बना सकते हैं, जैसे कि गर्भवती बकरियों के लिए, बीमार बकरियों के लिए और बच्चों के लिए। इससे सभी बकरियां आराम से रह सकेंगी और उनकी देखभाल भी आसानी से होगी। चलिए अब बात करते हैं वेंटिलेशन और रोशनी की। शेड में वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां या जालीदार छद्र जरूर रखें, ताकि ताज़ा हवा और रोशनी का प्रकाश हो सके। यह बकरियों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर शेड में प्राकृतिक रोशनी का अभाव हो, तो कृत्रिम रोशनी का इंतज़ाम करें, ताकि बकरियों को दिन और रात के समय सही रोशनी मिले। शेड की साफ़ सफाई भी नियमित तौर पर करनी चाहिए। शेड को साफ और सूखा रखना बहुत ज़रूरी है। नियमित रूप से

0: शेड की सफाई करें और फर्श पर ताज़ा सूखी घास या भूसा या भूसे का बिस्तर डालें। बकरियों के मल और पेशाब को रोज़ाना साफ करें ताकि संक्रमण और बीमारियों से बचा जा सके। इसके अलावा शेड के अंदर और आसपास मच्छर और मक्खियों को दूर रखने के लिए स्प्रे का इस्तेमाल करें। नियमित सफाई से शेड को साफ और सूखा रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही पीने का पानी और चारा का इंतज़ाम सही तरीके से करें। पानी की बाल्टी या टंकी ऐसी जगह रखें जहां बकरियां आसानी से पानी पी सकें। चारे के लिए अलग से जगह बनाएं जहां पर सूखा चारा और हरा चारा रखा जा सके। यह व्यवस्था करें कि चारा और पानी दोनों साफ रहें और बकरियों तक आसानी से पहुंचे। इसके अतिरिक्त आपको कई बातों पर सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप ठंडे इलाके में रहते हैं तो शेड को ठंड से बचाने के लिए उसमें हीटर या आग जलाने की व्यवस्था करें। गर्मियों में शेड को ठंडा रखने के लिए उसके ऊपर छांव देने वाले पेड़ या छप्पर लगाएं। इसके अलावा बारिश के मौसम में पानी के जमाव को रोकने के लिए शेड के चारों तरफ नालियों का निर्माण करें।
1: किसान भाइयों, अभी आपने जानकारी हासिल की बकरियों के लिए किस तरह से शेड तैयार करना चाहिए।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: और अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर बताने का। हमने अपने किसान भाइयों से पूछा था कि गेंदा की खेती में पिंचिंग के क्या फायदे हैं। आंचल, इस प्रश्न का सही उत्तर बता दो।
2: बिल्कुल शांता और किसान साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है, गेंदा में पहले फूल की कली आने के बाद मुख्य तने को ऊपर से पिंच या नोच लेने से पौधा झाड़ी का रूप धारण कर लेता है। बगल से ज्यादा शाखाएं निकलती हैं और फूल अधिक लगते हैं।
1: उम्मीद करते हैं किसान भाइयों ने अपने उत्तर की जांच कर ली होगी। साथियों, इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। आंचल, अगले कार्यक्रम तक के लिए हम अपने किसान भाइयों से ले लेते हैं अनुमति। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
1: श्रोताओं, अभी आप किसानवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम देशगान।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6:45 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है दिलीप सिंह द्वारा लिखित एवं कमल दत्त द्वारा निर्देशित झलकी, चोर के घर मोर।

0: राही
1: भाई नहीं राही यार, ये पुराना गाना जो मैं अक्सर गुनगुनाता रहता हूँ।
2: पर तू ये बता कि तू बेलापुर को भूल गया?
1: बेलापुर
2: जहाँ तू पैदा हुआ था।
1: अरे बेलापुर को कैसे भूल सकता हूँ।
2: हाँ, वहाँ बेलापुर में तेरा एक चाचा है राम भरोसे, है कि नहीं?
1: है।
2: उसका एक बेटा है पोला, है कि नहीं?
1: है।
2: वो पोला तेरा भाई हुआ, है कि नहीं
1: हुआ?
2: तो फिर मैं ही तो पोला हूँ।
3: क्या कर रहा?
4: मैं पहले तो नौकरी ढूंढता रहा, जब नौकरी नहीं मिली तो तुझे ढूंढना शुरू कर दिया। वैसे तू क्या करता?
1: मैं नौकरी करता हूँ।
4: तो मेरी भी लगवा दी।
1: नहीं, नहीं, नहीं, तेरे लिए नौकरी करना बड़ा मुश्किल काम है।
4: मेरे लिए नौकरी बहुत मुश्किल काम।
1: हाँ।
4: तो फिर तू कैसे करता है? तुझे तो ना दूध धोना आता है, ना हल चलाना आता है, ना बकरियां चलाना आता है।
1: नहीं, मैं दूध धोने का काम नहीं करता।
4: अच्छा, तो फिर तू क्या करता है भाई?
1: मैं तुझे क्या बताऊँ, क्या समझाऊँ?
4: चल छोड़, क्या समझाने की जरूरत ही नहीं। ऐसा कर, तू मुझे अपने घर ले जा, वहां जाके पहले तो पेट भर के मेरे को रोटी खिला।
1: बाप रे।
4: उसके बाद डिसाइड कर लेंगे, तूने मुझे नौकरी लगवाना तो नौकरी लगवा देना, नहीं तो तू नौकरी करना,
1: मैं तेरे घर बैठ के रोटियां तोड़ा करूंगा। लेकिन देख, तू मुझे बहुत महंगा पड़ेगा।
4: अच्छा,
1: खैर मैं कोशिश करता हूँ कि शायद तेरी नौकरी लग जाए।
4: हाँ,
1: मैं तुझे अपने बॉस के पास ले जाता हूँ।
4: हाँ, हाँ, ले जा।
1: मेरी हाँ में हाँ मिलाना,
4: बिल्कुल
1: बीच में नहीं बोलना।
4: ना जी ना।
1: अगर हमारे बॉस खुश हो गए तो तुझे नौकरी मिल जाएगी।
4: चल फिर,
1: आजा फिर।
5: मंगल सिंह।
1: यस सर।
5: ये तेरे साथ जानवर कौन सा है?
1: नहीं सर, ये मेरा भाई है, और भाई ये मेरे बॉस है, मैं इन्हीं का नमक खाता।

0: अच्छा तो इनका नमक खाता है?
1: हाँ।
0: तो इसका मतलब है कि चीनी के लिए, दाल के लिए, आटे के लिए सब अलग अलग बॉस रखे हुए।
1: बॉस आप इसे भी नौकरी पे रख लीजिए।
2: देखो मंगल सिंह, हमारे धंधे में आदमी एक बार अंदर तो आ सकता है लेकिन बाहर नहीं जा सकता।
0: अंदर से कुंडी लगी है।
2: सुनो, ये लड़का भरोसे का है?
0: तूने मेरे बाप का नाम नहीं, मैं राम भरोसे का लड़का हूँ जी।
2: गेम तो खुश हुआ।
1: खुश होगी, होता रहता है।
2: जबान तो खूब चलती है।
0: ओ, अंकल मेरा तो सब कुछ चलता है जी, हाथ पैर नाक कान मुंह सब कुछ चलता है। कभी कभी थोड़ा बहुत दिमाग भी चल लेता पैदल। आंटी, आंटी जी आप क्यों बार बार दांत निकाल रही
3: हैं? खबरदार जो मुझे आंटी कहा तो।
4: यार अब मैं इसे दीदी तो कह नहीं सकता क्या? अच्छा नीना जी देखें, आप मेरी तरफ बार बार देख के हंस रही हैं। मेरा कोई कुर्ता फटा हुआ है या मैंने कोई गलत बात कर दी है?
3: गलत तो तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम शायद जानते नहीं हो हमारे बॉस गाय और भैंस का धंधा नहीं करते।
4: वो तो इसकी शक्ल से ही लग रहा है, इतनी डरावनी शक्ल देख के गाय दूध तो क्या पानी भी नहीं देगी।
5: वैसे वैसे आपके ये बॉस करते क्या है जी?
3: हम लोग स्मगलिंग करते हैं।
5: हाँ तो कोई बात नहीं, हम भी स्मगलिंग कर लेंगे। ये कौन सा 10वीं का इम्तिहान है जो हमें देना नहीं आता? आप सिर्फ इतना बता दें मेरे को, स्मगलिंग होती क्या?
2: मंगल सिंह
6: ये सर
2: तो कुछ भी नहीं जानता, ये हमारे किस काम आएगा?
1: बॉस सीख जाएगा, मैं सिखा दूंगा।
2: सुनो तुम चोरी करना जानते हो?
5: लो सर जी, अपने गांव में पेट कैसे भरते थे चोरियां कर करके, तो आज तक पेट पालते रहे।
2: क्या नाम है तुम्हारा?
0: मेरा नाम है जी भोला।
2: भोला
0: जी, भोला।
2: गेंबो खुश हुआ।
4: ये खुश हो गई।
2: अरे डाकुओं में किसी का नाम भोला तो मैंने सुना नहीं। डाकुओं के नाम होते हैं मंगल सिंह, शेर सिंह, बब्बर सिंह, गप्पल सिंह, भोला।
5: देखे देखे सर, आप ज्यादा हंसे मत, आप मेरी माँ की मजबूरी समझने की कोशिश करें।
2: क्या है तुम्हारी माँ की मजबूरी?
5: भाई उसे बचपन में तो नहीं पता था ना कि मैं बड़ा होकर इतने बड़े डाकू के रुतबे को हासिल करूंगा। नहीं तो वो भी को मेरा नाम शेर चीता सिंह। वैसे यार तुम लोग मुझे डाकू बना रहे हो।
2: हाँ।
5: तो कोई बात नहीं, मैं भी अपना नाम बदल कर मगर सिंह रख लेता हूँ जी।
2: डाकू मगर सिंह अंडर ट्रेनिंग। वो दूर लाल कोठी देख रहे हो?
5: दूर अब इतनी भी दूर नहीं है जी, पर देख रहा हूँ वैसे।
2: वहाँ जाओ।
5: हाँ जी।
2: और डाकुओं की तरह उनका कलर टीवी विद रिमोट उठा लाओ।
5: अच्छा।
2: अगर तुम बगैर पकड़े जाने के ये काम कर दो तो समझ लो तुम कामयाब हो गए और तुम्हें हमारे पास नौकरी मिल गई।
5: क्या बात कर रहे हैं सर जी, मैं तो अपने गांव में मुर्गियां चराता रहा हूँ जी, जो कुड़ करके कभी भी आदमी को पकड़वा सकती है। ये बेचारा बेजान टेलीविजन क्या बोलेगा?
2: ठीक है निकल लो पतली गली से।
5: अभी गया जी।
7: बॉस आपने भोले को भेज तो दिया है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं अनाड़ी पकड़ा ना जाए।
2: मुझे अंबु खुश हुआ। अरे पकड़ा गया तो तेरी जान छूट जाएगी एक जबरदस्ती के बने हुए मेहमान से।
7: लेकिन बॉस मुझे डर है कि कहीं हमारे बारे में कुछ बता ना दे।
2: उसे हमारे बारे में पता ही क्या है जो बता देगा। सुनो मंगल।
1: यस बॉस।
2: तूने उसके रहने का बंदोबस्त तो कर दिया?
7: मेरे साथ ही रह रहा साहब, क्योंकि मेरे विलेज का आदमी है।
8: वो आ रहा है
2: पैदल।
8: हाँ जी पैदल।
2: सुनो क्या टीवी उसने सर पे उठाया हुआ?
8: वो टीवी नहीं जी।
2: तो क्या बगल में है?
8: नहीं।
2: तो फिर वो चोरी नहीं कर सका। मेरी पिस्तौल
7: ये लीजिए, ये लीजिए।
1: नहीं नहीं नहीं बॉस नहीं, जान से मत मारिएगा। पहली बार तो बड़े बड़े डाकू भी नाकाम हो जाते हैं।
2: हर किस नहीं।
5: गुड मॉर्निंग सर।
1: आ गया।
5: गुड मॉर्निंग जी।
2: गुड मॉर्निंग।
5: हाँ जी सर।
2: टीवी कहाँ है?
5: टीवी वो दूर लाल कोठी में जी।
2: लाया क्यों नहीं?
5: लाया क्यों नहीं?
2: कोठी के अंदर कितने आदमी थे?
5: आदमी तो एक भी नहीं था जी।
2: तो फिर क्या औरतें थी?
5: औरतें होती तो मैंने वापस आना था जी। एक बच्चा था जी वहाँ पर।
2: सिर्फ एक बच्चा, फिर भी तुम खाली हाथ लौट आए?
5: मैं खाली हाथ कर आया हूँ सर जी, मैं तो पूरा का पूरा बच्चा उठा लाया हूँ।
2: गेम तो खुश हुआ।
5: तो फिर खुश हो गई।
2: लेकिन मैं क्यों खुश हुआ?
5: ये तो मैं पूछ रहा हूँ।
2: बच्चे का मैं क्या करूंगा, मैंने उसका अचार डालना?
5: हाय हाय हाय हाय हाय हाय, इतना बड़ा जरायम का धंधा करते हैं आप, 1.5 रुपए का अखबार नहीं पढ़ते?
2: वो
5: अब मेरा मतलब है कि आजकल तो अखबारों में रोज निकलता है कि बच्चे उठाना तो बहुत फायदे का काम है सर जी।
2: हाँ, हाँ,
5: हमने

0: बच्चा उठा लिया। उन्होंने अखबार में इश्तहार दिया कि हमारा बच्चा गुम है।
1: गुम है।
0: हमने उनको खबर कर दी कि आपका बच्चा हमारे पास है।
1: हमारे पास है।
0: बच्चा चाहिए तो रात के 12 बजे पुल वाले कब्रिस्तान में 10 लाख रुपए लेके आ जाओ।
1: आ जाओ।
0: बच्चा ले जाएंगे।
1: ले जाएंगे।
0: 10 लाख दे जाएंगे।
1: दे जाएंगे।
0: आप 10 लाख का कलर टेलीविजन ले लेना, मैं नवी कमीज सवा लूंगा, मैंने लगन
1: उसे यहाँ ले आओ ताकि हम भी एक नजर देख लें।
0: तौबा तौबा, ये नहीं हो सकता।
1: क्यों
2: क्यों नहीं हो सकता
0: भाई? भगवान ने आप लोगों की शक्लें इतनी डरावनी बनाई है, बच्चा बेचारा देखेगा तो सहम जाएगा।
2: बच्चे को मारे में कि तुम उसे उठा के लाए हो?
0: ना जी ना, वो तो समझ रहा है कि अपने मामे के घर आया।
1: ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ कि अखबार के दफ्तर में कोई गुमशुदा बच्चे का इशहार देने आया है कि नहीं।
0: ओ ठहरिए साहब, ये अभी बहुत जल्दी है जी।
1: क्यों क्यों?
0: अब भाई मैं 4 दिन से घर से भागा हुआ हूँ, मेरा तो आज तक इश्तहार आया नहीं, और वो बच्चे को बेचारे को तो जुम्मा जुम्मा 4 मिनट हुए उठा के लाया।
2: हमारे बाप ने तो इसलिए इश्तहार नहीं दिया कि चलो गुम हुआ तो जान छूटी।
0: एक्सक्यूज मी मैडम, आप अपनी बातों का कीचड़ मेरे कुर्ते पर पड़े उछाल लें, पर अपने होने वाले ससुर के बारे में ऐसा मत बोले, माइंड कर
1: देगा। खुश हुआ,
0: फिर खुश हो गई।
1: सुनो, मैं जरा देख कर आता हूँ कि हमारा सोना लाने वाला जहाज पहुंच गया है या नहीं।
0: हम बॉस, मैं भी आपके साथ चलूंगा जी।
1: मेरे साथ?
0: हाँ जी।
1: क्यों भाई?
0: अरे मैंने आज तक कभी जहाज नहीं देखा सर।
1: कोई जरूरत नहीं, जब मौका आएगा तो दिखा देंगे तुम्हें जहाज।
0: अच्छा जी, चलो ठीक है, अब मैं भी फिर चलता हूँ जी।
2: ओके बॉस।
1: ठीक है, मैं 2-3 घंटे में लौट के आता हूँ।
2: बाय बाय।
0: अच्छा मंगल, मैं भी चलता हूँ। अभी क्या, अभी आया, हम दो और हमारा एक। हेलो, नमस्कार जी, मगर सिंह बोल रहा हूँ जी, मैं बहन जी। नहीं, आपने पहचाना नहीं जी मुझको? पहचानते कैसे, आपसे मेरी कभी टेलीफोन पर बात जो नहीं हुई। हाँ जी हाँ जी, ना जी फोन तो मैंने इसलिए किया जी कि मैंने सुना कि आपका बच्चा गुम गया, मुझे कैसे पता लगा? और मैं ही तो बच्चे को किडनैप करके ले आया सुनिए। हाँ, अब पड़ी ना बात खोपड़ी में, ध्यान से सुनो, अगर अपना बच्चा जिंदा चाहिए तो 10 लाख कह दूं।
2: हाँ ठीक है ठीक है।
0: 10 लाख रुपया लेकर पुल वाले कब्रिस्तान में रात के 12 बजे आ जाना। हाँ, एक एक नोट लेकर आना है जी। एक एक नोट मिलते रहे जी आजकल। चलो कोई बात नहीं, दोनों के ले आना है जी, हम एडजस्ट कर लेंगे है जी। पर बात सुनो ध्यान से, नोट नवे नकोर होने चाहिए, मैले नोट मत ले आना सुनिया। मैले नोट होंगे तो बच्चे को भी मैला कर दूंगा। और खबरदार, अगर पुलिस को बताया तो बच्चे को ऐसी जगह पहुंचा दूंगा कि ढूंढते रह जा। मैं जाके इसकी मां को उठा के लाता हूं जी, अभी आ रहा
1: हूं। क्यों भाई मंगल सिंह, क्या खबर है?
3: सर वो
2: बस बस सोना पहुंच गया।
1: हाँ पहुंच गया, और गोदाम में भी पहुंच गया।
2: वेरी गुड।
1: सुनो नीना डार्लिंग, भोला कहीं नजर नहीं आ रहा?
2: बॉस, भोला बच्चे की माँ को भी किडनैप करने गया है, बोल रहा था दोनों को ले आएगा तो रैंसम ज्यादा मिलेगा।
1: नहीं नीना, गड़बड़ हो जाएगी, तुम जरा फोन मिलाओ, मैं बात करता हूँ।
2: नहीं नहीं बॉस, फोन करने से क्या फायदा है, वहाँ तो कोई होगा ही नहीं, भोला उन्हें उठा के ले ही आ रहा होगा।
0: रास्ते में होगा बॉस।
1: मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, तुम उस औरत और बच्चे को मेरे सामने पेश करो, मैं उन्हें गोली से उड़ा दूंगा।
2: नहीं नहीं बॉस, बॉस बच्चा बहुत प्यारा है,
1: वो मेरे लिए फांसी का फंदा बन सकता है। वो मुझे शुरू से ही लग रहा था कि ये भोला हमारे लिए मुसीबत बनकर रहा है।
0: एक्सक्यूज मी सर, आप ये कैसे कह सकते हैं?
1: क्यों?
0: मैं तो आपके लिए 20 लाख का बॉन्ड लेकर आया हूँ।
1: वो बॉन्ड कहाँ है?
0: वो यहाँ है, मैं अभी पेश करता हूँ।
1: मेरी बंदूक।
0: भांजे भांजे, अपनी माँ के साथ आ जाओ।
4: पापा
0: पापा,
4: पापा तो तुम इन गुंडे का सरदार हो? मुझे तो कहते थे कि बिजनेस के चक्कर में आता जाता रहता हूँ, तो ये है तुम्हारा बिजनेस? चलाओ चलाओ हम पर गोली चलाओ।
1: लक्ष्मी, अबे ओ भोले के बच्चे, मैंने तुम्हें लाल कोठी में जाने को कहा था, तुम हमारे घर कैसे चला गया?
0: ओ सर, मैं यहाँ कलर ब्लाइंड हूँ जी, मुझे रंग की गलती लग गई होगी।
1: अच्छा तू कलर ब्लाइंड है, तेरी तो। अपने अपने हाथ ऊपर कर लो, कोई नहीं लेगा।
5: और बंदूक को नीचे फेंक दो, वरना मैं गोली से उड़ा दूंगा एक एक को। हम पुलिस के आदमी,
1: पुलिस के आदमी हम लोग।
0: माय गॉड,
1: मुझे बहुत खुश हुआ। अरे पुलिस तो पकड़ लीजिए इसे, इसने बच्चे को अगवा किया है। पकड़ लीजिए इस भोला को।

0: ये हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं।
1: क्या कहा? और सर एक और खुशखबरी है, हमने इनके गोदाम पे छापा मारा है और सारे गोदाम को सील कर दिया है।
2: वेरी गुड। और इनका सोना जब्त कर लिया?
1: जब्त कर लिया सर।
2: इनके आदमी पकड़ लिए?
1: सारे पकड़ लिए सर।
2: वेरी गुड। बैकअप।
3: अबे भोले, तू पुलिस इंस्पेक्टर है?
2: अदावर्ज है।
3: ऊपर से भोला, अंदर से बम का गोला।
2: अदावर्ज है।
4: कम से कम तुम्हारी तरह ऊपर से भोला और अंदर से बदमाश तो नहीं है।
2: She's right.
3: भोले, अगर मुझे पकड़ना था तो मेरे बीवी बच्चों को क्यों उठा लाए?
2: इसलिए क्योंकि आजकल बहुत से मुजरिम परिवार समेत मुल्क छोड़कर भाग जाते हैं। अब आप जल्दी से आइए बाहर, वैन आपका इंतजार कर रही है।
5: बॉस, गोली चला दूं?
3: चला दो।
5: लेकिन बॉस, बंदूक तो मेरे पास है नहीं।
2: बंदूक तो यहाँ है। थैंक यू नीना, थैंक यू।
3: नीना, तुम भी इनके साथ मिली हुई हो?
4: अब तक तो नहीं थी बॉस, लेकिन आज मैं भी नेकी और बदी के रास्ते में फर्क जान गई हूँ, इसलिए आज से आप मुझे इन्हीं के साथ समझिए।
3: ठीक है लक्ष्मी, मुझे डर है कि तुम्हारा और बच्चे का क्या होगा। तुम लोग कहाँ रहोगे?
4: हम कहीं भी रहें, कम से कम तुम्हारे साए से बहुत दूर रहेंगे।
3: लक्ष्मी, तुम भी?
4: मैं बदली नहीं हूँ, लेकिन मैं उस पति के साथ नहीं रहना चाहती जो चंद चांदी के टुकड़ों की खातिर अपने देश और अपने परिवार को बेचने को तैयार हो। हाँ, अगर आप जेल से सुधर कर आए तो मैं आपको इंतजार करती, जरूर मिलूंगी।
6: बस ये तो वो वाली बात हो गई, समगलर के घर बगलर।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। श्रोताओं, अब एक नज़र हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों पर। कल हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें आप सुनेंगे टेरेंस फिगरेशन सवाई चर्च के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत भक्ति गीत। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 15वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी 4:30 पर। तत्पश्चात 4:40 पर बताया जाएगा कार्यक्रमों का विवरण। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम बहारों की शाम का समय रहेगा 4:45। तत्पश्चात शाम 5 बजे तमिल में होगा कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे पुराने गीत। बांग्ला में 5:30 पर होगा बच्चों के लिए कार्यक्रम। तत्पश्चात संध्या 6 बजे संगीत संगिनी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। संध्या 6:30 पर धरती की गीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे गुजराती लोकगीत। तत्पश्चात 6:45 पर सुनिए कार्यक्रम देशगान।

फिल्मी गीतों के कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का समय रहेगा 7:20। शाम 7:30 पर युवाणी में होगा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो म्यूजिक लवर। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे रात 8 बजे। आठ बजकर 30 मिनट पर सुनिए रोजगार समाचार, तत्पश्चात होगा कार्यक्रम गौरव गान।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, शाम के 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन इस अंतराल के बाद।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उत्तर एवं मध्य अंडमान पुलिस टीम ने लूट का एक मामला सुलझाया है और कृषि विभाग ने नारियल, सब्जियों और फलों की फसलों में मिलीबग के प्रकोप से बचने के लिए परामर्श जारी किया है। सांध्य समाचारों के साथ मैं अनीता क्रिकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्म योगियों पर भरोसा जताया है और अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है। श्री मोदी ने नव नियुक्त कर्मचारियों को आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नौ नियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। यह रोजगार मेला पूरे देश में 47 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया था।

पूरे देश से चुने गए ये नए कर्मचारी रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे कई अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में अपनी सेवाएं देंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बड़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। श्री गोयल ने कहा कि 33,600 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन वाली भारत औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। नए अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करना है। मंत्रालय के अनुसार अधिनियम की धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के अनुसार मसौदा नियम तैयार किए गए हैं। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 को 11 मई को अधिसूचित किया गया था और या इस वर्ष 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है पुलिस और मिलीबग। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर एवं मध्य अंडमान पुलिस द्वारा 24 घंटे के भीतर लूट का एक मामला सुलझाया गया। स्वदेश नगर के एक निवासी ने मायाबंदर पुलिस थाने में लूट के एक मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि डॉक्टर आरपी अस्पताल मायाबंदर से लौटने के दौरान पोकाडेरा बीच के पास दो लोगों ने उस पर हमला कर मोबाइल फोन छीन लिया और जबरदस्ती पैसे और उसकी सोने की चेन लूट ली। शिकायत के आधार पर मायाबंदर पुलिस स्टेशन में तुरंत मामला दर्ज किया गया और तत्काल जांच व तलाशी अभियान शुरू किए गए। प्राप्त जानकारी पर त्वरित कार्रवाई करते हुए डिगलीपुर पुलिस स्टेशन ने उसी दिन दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद मायाबंदर पुलिस थाने की टीम डिगलीपुर गई और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद कल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लूटा गया सारा सामान भी उनके कब्जे से बरामद किया गया। आम जनता से अनुरोध है कि वे अपराध या अवैध गतिविधियों के संबंध में कोई भी जानकारी अपने निकटतम पुलिस स्टेशन के साथ या हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से साझा कर सकते हैं। सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी निरंतर प्रतिबद्धता के तहत अंडमान और निकोबार पुलिस ने सूचना मिलने के 48 घंटों के भीतर एक लापता नाबालिग लड़की को सफलतापूर्वक बरामद कर लिया। हाल ही में ग्यारहचरमा के निवासी पीड़ित लड़की के पिता ने पहाड़गांव पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस पर पहाड़गांव पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया और तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया गया। यह टीम पहाड़गांव पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर साहिल शमशुद्दीन की देखरेख में गठित की गई। प्राप्त जानकारी के आधार पर टीम ने बम्बूफ्लाट इलाके में एक संदिग्ध का पता लगाया। तलाशी के दौरान पीड़ित लड़की को बम्बूफ्लाट इलाके से सुरक्षित बचा लिया गया और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पीड़ित लड़की को उसके माता पिता को सौंप दिया गया। मामले का नेतृत्व दक्षिण अंडमान के SDPO दीपेंद्र कुमार सिंह और दक्षिण अंडमान जिले की पुलिस अधीक्षक श्वेता के सुगाथन की

समग्र देखरेख में सफलतापूर्वक सुलझाया गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नारियल, सब्जियों और फलों की फसलों में गर्म और शुष्क मौसम के दौरान मिलीबग का प्रकोप देखा जाता है। मिलीबग पौधों का रस चूसते हैं, पौधों की वृद्धि को कमजोर करते हैं और एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित करते हैं जो कालीमा के विकास को बढ़ावा देता है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी फसल की नियमित रूप से निगरानी करें और आर्थिक नुकसान से बचने के लिए शुरुआती चरण में ही एकीकृत प्रबंधन पद्धतियों को अपनाएं। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अत्यधिक संक्रमित पौधों के हिस्सों को अलग करके हटा दे। खेत से खरपतवार और वैकल्पिक मेजबान पौधों को हटा दे। नीम के तेल का छिड़काव करें। नीम के तेल का छिड़काव करने से पहले साबुन के घोल का छिड़काव करने से मिलीबग्स की मोम जैसी परत को हटाने में मदद मिल सकती है। कम कीटों के होने पर आइसोप्रोफाइल अल्कोहल में डूबी रुई से कीटों को पोछे या तेज पानी के छिड़काव से उन्हें हटा दे। किसानों को एकीकृत कीट प्रबंधन पद्धतियों का पालन करने और लाभकारी कीटों के संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग से बचने की सलाह दी गई है। अधिक जानकारी के लिए वे अपने निकटतम कृषि उप डिपो या क्षेत्रीय कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उत्तर एवं मध्य अंडमान पुलिस टीम ने लूट का एक मामला सुलझाया है और कृषि विभाग ने नारियल, सब्जियों और फलों की फसलों में मिलीबग के प्रकोप से बचने के लिए परामर्श जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 7:15 हुए हैं। मौसम मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधित चेतावनी में बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण समुद्र में वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से रहेगी, जो कि बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। अतः मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल शाम तक के मौसम संबंधित पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो भागों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेंगी तथा द्वीपों के अधिकांश भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये थी मौसम की जानकारी। और अब लीजिए सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एमवी स्वराजद्वीप विशाखापत्तनम की यात्रा पर मंगलवार 26 तारीख को सुबह 10 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा। अतिरिक्त सामान को जहाज पर चढ़ाने का कार्य सोमवार 25 तारीख को दोपहर बाद 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच किया जाएगा, जबकि यात्रियों को जहाज पर चढ़ाने का कार्य मंगलवार 26 तारीख को सवेरे 7 बजे से 9 बजे के बीच किया जाएगा। एमवी भारत सीमा मायाबंदर होते हुए डिकलीपुर की यात्रा पर आज रात 8 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान कल दोपहर बाद 2 बजे डिकलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। जलयान सिंधु लिटिल अंडमान के लिए कल सुबह 8 बजे के बजाय कल रात 10 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी सोमवार 25 तारीख को ही रात 10 बजे लिटिल अंडमान से। एमवी बारटान स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा

पर कल प्रातः 6 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा। ये जलयान कल ही दोपहर 12 बजे अरंग से छूटकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी रानीचंगा शहीद द्वीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप के लिए कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए। एमवी रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप के लिए कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप के लिए कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से छूटकर श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप के लिए कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप के लिए कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा। ये जलयान परसों सोमवार 18 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। जन सूचनाएं। गैर कानूनी कृत्यों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर रहता है। ऐसी किसी भी गतिविधि की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने आम जनता से सहयोग की अपील की है। आम जनता द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी कार्यों की गुप्त सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है। 112-0319-2321-00, 0319-2333-077 और 0319-2322-400। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। जन सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों भरा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम में पहले सुनिए हैरी आनंद, सुनिधि चौहान और साथियों को। फिल्म का नाम बिच्छू। समीर के लिखे गीत को संगीत से सजाया है आनंदराज आनंद ने।

दिलीप सेन, समीर सेन के संगीत निर्देशन में तैयार, अब लीजिए सुनिए अफलातून फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं ललित सेन और श्वेता शेट्टी की, गीत रचना आनंद पक्षी की।

ललित सेन और श्वेता शेट्टी के गाए अफलातून फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को आपकी रेडियो दोस्त लता राज नांदिनी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज शनिवार है और आज के दिन हम आप सभी युवा दोस्तों के लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम ऐसा भी होता है।
1: ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है।
0: दोस्तों यूं तो दुनिया रहस्यमयी चीजों से घिरी हुई है। कहीं समंदर अपने सीने में रास छुपाए बैठा है, तो कहीं आसमान अजीबोगरीब रंगों से हमें चौंका देता है। और आज हम आपको लेकर चलेंगे ऐसे ही कुछ अनोखे हैरान कर देने वाले रहस्यों की दुनिया में। दोस्तों जरा कल्पना कीजिए कि आप एक सूनी शांत जमीन पर खड़े हैं, चारों तरफ सन्नाटा है, कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, लेकिन फिर भी जमीन पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। पत्थर, हाँ वही पत्थर जो आमतौर पर हिलते भी नहीं, यहाँ अपने आप चल चुके होते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं अपने निशान। और यह अजीबोगरीब नजारा देखने को मिलता है अमेरिका की डेथ वैली में मौजूद रेस ट्रैक प्लाया नाम की जगह पर। दोस्तों अमेरिका के डेथ वैली में एक जगह है जहां पत्थर

ब खुद चलते हैं। जी हाँ, रेस ट्रैक प्लाया नाम की जगह पर भारी भरकम पत्थर रेत पर अपने निशान छोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं बिना किसी इंसान के धक्का दिए। कई सालों तक यह एक पहेली बना रहा। बाद में रिसर्च में पता चला कि पतली बर्फ की परत और तेज हवा मिलकर इन पत्थरों को धीरे धीरे खिसका देती है। लेकिन सोचिए, पहली बार जब किसी ने ये देखा होगा तो जरूर ये कहा होगा कि ये कैसे हुआ।

दोस्तों, क्या कभी आपने आसमान में ऐसा इंद्रधनुष देखा है जो पानी की बूंदों से नहीं बल्कि आग की लपटों जैसा चमकता हो? कल्पना कीजिए, नीले आसमान के बीच अचानक रंगों की एक जलती हुई पट्टी दिखाई दे, जैसे किसी ने बादलों पर रंगों की आग जला दी हो। जी हाँ, प्रकृति का यह अद्भुत नज़ारा कहलाता है सरकम हॉरिजॉन्टल आर्क, जिसे आम भाषा में लोग कहते हैं फायर रेनबो। दोस्तों, यह कोई साधारण इंद्रधनुष नहीं है। सामान्य इंद्रधनुष बारिश की बूंदों से बनता है, लेकिन फायर रेनबो बनता है ऊंचाई पर मौजूद पतले सिरस बादलों में छिपे छोटे छोटे बर्फ के क्रिस्टलों से। जब सूर्य आसमान में लगभग 58 डिग्री या उससे ज्यादा ऊंचाई पर होता है और उसकी किरणें इन बर्फ के क्रिस्टलों पर एक खास कोण से पड़ती हैं, तो रोशनी अपवर्तित होकर लाल, नारंगी, पीले और नीले रंगों की एक चमकदार पट्टी बना देती है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे आसमान में रंगों की आग जल रही हो।

दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसी रात देखी है जहां अंधेरा भी चमकने लगे, जहां समंदर की हर लहर सितारों की तरह झिलमिलाने लगे? अगर नहीं, तो जरा चलिए मालदीव के उन तटों की ओर, जहां रात होते ही समुद्र किसी सपने जैसा दिखाई देने लगता है। जी हाँ दोस्तों, इस अनोखी घटना को कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। यह कोई कैमरे का कमाल नहीं और ना ही कोई फिल्मी इफेक्ट है, बल्कि 100% प्राकृतिक चमत्कार है। समंदर में पाए जाने वाले बहुत ही सूक्ष्म जीव, जिन्हें प्लैंकटन कहा जाता है, जब लहरों की हलचल से हिलते हैं या कोई उनके बीच से गुजरता है, तो वे नीली रोशनी छोड़ते हैं। नतीजा ये होता है कि हर कदम, हर लहर, हर छींटा नीली रोशनी में नहाने लगता है। ऐसा लगता है जैसे आसमान के तारे धरती पर उतर आए हों और समंदर में बस गए हों। वैज्ञानिक बताते हैं कि यह रोशनी दरअसल इन जीवों की एक तरह की सुरक्षा प्रणाली होती है, लेकिन हमारे लिए यह एक ऐसा नजारा है जो जिंदगी भर याद रह जाता है।

दोस्तों, आग का रंग आपने हमेशा लाल या नारंगी ही देखा होगा। लेकिन सोचिए, अगर आग नीली हो जाए, अंधेरी रात में पहाड़ की ढलानों से नीली लपटें बहने लगें, तो वो नज़ारा डरावना होगा या खूबसूरत? जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया में मौजूद कावह इजन नाम का ज्वालामुखी दुनिया में अपने आप में बिल्कुल अनोखा है। यहाँ रात के समय ज्वालामुखी से निकलने वाली सल्फर गैस जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो जलने लगती है और उस आग का रंग नीला दिखाई देता है। असल में लावा लाल ही होता है, लेकिन सल्फर गैस की जल

ती हुई लपटें रात के अंधेरे में नीली आग जैसी दिखाई देती है। जब ये नीली लपटें काली चट्टानों के बीच बहती है तो ऐसा लगता है मानो धरती ने आसमान के सितारे उधार लेकर अपने सीने पर सजा लिए हों। यह नजारा जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि सल्फर गैस इंसानों के लिए हानिकारक होती है।

और इसी के साथ युववाणी का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल इसी समय हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अपनी रेडियो दोस्त लताराज नंदिनी को इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: लाइव फोन आउट प्रोग्राम हेलो डियर फ्रेंड्स आप सुनते हैं सोमवार बुधवार और शुक्रवार को, समय दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक। अब स्टूडियो से प्रेजेंटर्स आपको फोन करते हैं और मनपसंद गीतों से सजाते हैं महफिल को। अब तक आपने अपना नाम पता व फोन नंबर हमारे पास दर्ज ना कराया हो तो जल्दी से दर्ज कराएं इस नंबर पर 9474234000। इस प्रोग्राम का भरपूर आनंद आप लेते हैं हमारे विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम चैनल पर सप्ताह के 3 दिन 2:30 बजे से।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। अब आरंभ होता है फिल्म गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं लता मंगेशकर के गाए घर फिल्म के इस गीत से, जिसे लिखा है गुलजार ने, धुन बनाई R.D. बर्मन ने।

नया दौर फिल्म का ये गीत था आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीतकार थे साहिर लुधियानवी तथा संगीतकार थे ओपी नैयर। और अब कार्यक्रम में सुनते हैं आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में तैयार आपकी कसम फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की। गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की।

0: चित्रपट संगीत कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: असली भरोसा वही है जो समय के साथ और स्ट्रॉन्ग हो जाए, जैसे आपका भरोसा मारुति सुजुकी पे। और इसी भरोसे के लिए हम आपको कहना चाहते हैं थैंक यू स्पेशल लॉयल्टी रिवॉर्ड्स के साथ। अपग्रेड करें टू द ब्रांड न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरियस विद अ लॉयल्टी रिवॉर्ड ऑफ अप टू 30,000 और विक्टोरियस के 50,000 प्राउड ओनर्स के एक्सक्लूसिव सर्कल का हिस्सा बने।
2: ऑफर वैलिड फॉर एग्जिस्टिंग मारुति सुजुकी कस्टमर्स, TNC अप्लाई।
3: अंडमान रोड हो या सिटी राइड, now drive in style with our bold and powerful Toyota Hi-Rider. Smart hybrid technology, stunning looks, premium comfort and the highest mileage in its segment of up to 27.97 km per liter. All-in-one SUV. Exciting offer up to 1,80,000 and EMI start at just 7,777 per month. Visit Prince Toyota and win assured gifts on every test drive and call us at 0806-2358-621 today for exciting offers, exchange benefit and easy finance options. Toyota Hi-Rider, your stylish SUV for every journey. Prince Toyota, Garacharma and Diglipur. Let's move ahead with Toyota.
4: Some cars are designed to blend in, others are designed to be remembered. Meet the Maruti Suzuki Fronx. With powerful 1.0-liter turbo booster engine, Fronx delivers performance that matches its bold SUV-inspired design. Already trusted by more than 4 lakh proud owners across India, Fronx is now available starting at just Rs. 6.85 lakh with exciting offers available at your nearest Nexa showroom. So, why follow the road when you can lead it? Visit your nearest Nexa showroom and experience the Maruti Suzuki Fronx right now.
5: Nexa.
0: चित्रपट संगीत कार्यक्रम में फिल्मी गीतों के सिलसिले को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं नाम फिल्म का गीत मनहर उदास और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। बोल आनंद बख्शी के, संगीत पद किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आनंद बख्शी का लिखा एवं आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत था बेमिसाल फिल्म से। आवाज़ें थी लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सुरेश वाडकर की। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए सुरेश वाडकर और आशा भोसले की आवाज़ों में ईमानदार फिल्म का ये गीत।

0: सुरेश वाडकर और आशा भोसले की आवाज़ों में ये गीत था ईमानदार फिल्म से। प्रकाश मेहरा के लिखे गीत की तर्ज बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब सुनिए रोजगार समाचार।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रोजगार समाचार। अंडमान एवं निकोबार पुलिस में ग्रुप बी अराजपत्रित एवं ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। ये पद अंडमान एवं निकोबार पुलिस की विभिन्न इकाइयों में है। अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों द्वारा चुना गया पद अंतिम होगा। बाद में किसी भी परिस्थिति में बदलाव नहीं किया जाएगा। शारीरिक माप एवं सहन शक्ति परीक्षण PMET अंडमान एवं निकोबार पुलिस द्वारा विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। ये केवल क्वालिफाइड प्रकृति का होगा। लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित या लिखित अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित होगी। साथ ही ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा। सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी और उनके मूल दस्तावेजों का सत्यापन होगा। अंतिम परिणाम लिखित परीक्षा और ट्रेड टेस्ट के लिए प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया निर्धारित नियमों और पुलिस विभाग के आदेशों के अनुसार होगी। पुलिस रेडियो ऑर्गेनाइजेशन PR अंडमान एवं निकोबार पुलिस ग्रुप बी अराजपत्रित में रेडियो ऑपरेटर ASI के लिए कुल पद है 71, 36 पद अनारक्षित वर्ग के लिए, 24 पद OBC वर्ग के लिए होगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 4 पद रखा गया है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 7 पद है। रेडियो टेक्नीशियन ASI के लिए कुल पदों की संख्या है 12, 6 पद अनारक्षित वर्ग के लिए, 4 पद OBC वर्ग के लिए होगा तथा अनुसूचित जनजाति आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 1-1 पद है। सिपर ऑपरेटर ASI के लिए कुल पद है 2, अनारक्षित वर्ग और OBC वर्ग के लिए 1-1 पद रखा गया है। ग्रुप सी में फिटर इलेक्ट्रीशियन HC केवल पुरुष

उम्मीदवारों के लिए है। कुल पदों की संख्या 4 रखा गया है। अनारक्षित वर्ग और ओबीसी वर्ग के लिए 2-2 पद है। कांस्टेबल वीएचएफ ऑपरेटर पद के लिए 1 पद है, जो अनारक्षित वर्ग के लिए है। डीजल मैकेनिक केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए होगा। कुल पद है 2। अनारक्षित वर्ग और ओबीसी वर्ग के लिए 1-1 पद रखा गया है। फॉलोअर मैसेंजर के लिए पदों की संख्या है 16। अनारक्षित वर्ग के लिए 9 पद, ओबीसी वर्ग के लिए 6 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 1 पद है। पुलिस मोटर ट्रांसपोर्ट पीएमटी अंडमान एवं निकोबार पुलिस ग्रुप बी सब इंस्पेक्टर पीएमटी पद के लिए कुल पदों की संख्या है 2, जो ओबीसी वर्ग के लिए हैं। ग्रुप सी डीलिंग असिस्टेंट एचसी और स्टोर कीपर एचसी के लिए 1-1 पद रखा गया है।

0: मोटर ट्रांसपोर्ट पीएमटी, अंडमान एवं निकोबार पुलिस ग्रुप बी, सब इंस्पेक्टर पीएमटी पद के लिए कुल पदों की संख्या है 2, जो ओबीसी वर्ग के लिए हैं। ग्रुप सी डीलिंग असिस्टेंट एचसी और स्टोर कीपर एचसी के लिए एक एक पद रखा गया है, जो अनारक्षित वर्ग के लिए है। असिस्टेंट मैकेनिक पीसी के लिए 2 पद हैं। अनारक्षित और ओबीसी वर्गों के लिए एक एक पद है। मैकेनिक हेल्पर पीसी पद के लिए 2 पद हैं, जो अनारक्षित वर्ग के लिए है। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए पदों की संख्या है 15, अनारक्षित और ओबीसी वर्गों के लिए 7-7 पद हैं, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद है। पुलिस मैरीन फोर्स पीएमएफ अंडमान एवं निकोबार पुलिस ग्रुप बी अराजपत्रित सब इंस्पेक्टर मास्टर के लिए कुल पद है 2, अनारक्षित और ओबीसी वर्गों के लिए एक एक पद है। ग्रुप सी पुलिस कांस्टेबल ग्रीजर के लिए कुल पद है 4, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 2-2 पद रखा गया है। पुलिस कांस्टेबल लश्कर के लिए 7 पद कुल हैं, 3 पद अनारक्षित वर्ग के लिए, ओबीसी और अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए 1-1 पद रखा गया है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद है। रिक्तियां अस्थाई है जो बदल सकती है। महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण लागू होगा। कुछ पद केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए हैं। एसटी और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण सरकारी नियमों के अनुसार होगा। ईडब्ल्यूएस, एमएसपी, ईएसएम, भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण लागू है। भूतपूर्व सैनिकों को अपना नाम संबंधित बोर्ड में पंजीकृत कराना होगा। रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन प्रत्येक पद के लिए नियुक्ति पत्र योग्यता क्रम के अनुसार लागू किए जाएंगे। अभ्यर्थी अपने आवेदन अंडमान एवं निकोबार पुलिस की वेबसाइट police.andamannicobar.gov.in या e-recruitment.andamannicobar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन जमा करने से पहले भर्ती सूचना को ध्यान पूर्वक पढ़ें।
1: पुलिस विभाग में विभिन्न ग्रुप बी अराजपत्रित और ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 26 मई की मध्य रात्रि तक कर दी गई है। पात्रता की शर्तें और अन्य निर्देश संदर्भ के लिए उपलब्ध पूर्ण भर्ती सूचना में विस्तार से दिए गए हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन में सुधार के लिए संशोधन खिड़की 28 मई की मध्य रात्रि तक खुली रहेगी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार भर्ती प्रकोष्ठ पुलिस मुख्यालय से सभी कार्य दिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए अंडमान एवं निकोबार पुलिस की वेबसाइट police.andamannicobar.gov.in या e-recruitment.andamannicobar.gov.in पर उपलब्ध है। और अधिक जानकारी के लिए 25 अप्रैल 2026 का डेली टेलीग्राम देखा जा सकता है।
0: इसी के साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए।
2: असली भरोसा वही है जो समय के साथ और स्ट्रांग हो जाए, जैसे आपका भरोसा मारुति सुजुकी पे। और इसी भरोसे के लिए हम आपको कहना चाहते हैं थैंक यू स्पेशल लॉयल्टी रिवॉर्ड्स के साथ। अपग्रेड करें टू द ब्रांड न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरियस विद अ लॉयल्टी रिवॉर्ड ऑफ अप टू 30,000 और विक्टोरियस के 50,000 प्राउड ओनर्स के एक्सक्लूसिव सर्कल का हिस्सा बने।
3: ऑफर वैलिड फॉर एग्जिस्टिंग मारुति सुजुकी कस्टमर्स। TNC अप्लाई।
4: सम कार्स आर डिजाइन टू ब्लेंड इन, अदर्स आर डिजाइन टू बी रिमेंबर्ड। मिड द Maruti Suzuki Fronx with powerful 1.0-liter turbo booster engine. Fronx delivers performance that matches its bold SUV-inspired design. Already trusted by more than 4 lakh proud owners across India. Fronx is now available starting at just Rs. 6.85 lakh with exciting offers available at your nearest Nexa showroom. So, why follow the road when you can lead it? Visit your nearest Nexa showroom and experience the Maruti Suzuki Fronx right now.
5: Nexa. गौरवगान कार्यक्रम के तहत आइए सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

गौरवगान कार्यक्रम के तहत अभी आप कुछ देशभक्ति गीतों का आनंद ले रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। अब कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांति

0: पूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत

0: कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
2: विकसित भारत 2047 जब उस गोल उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
1: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: विकसित भारत जीरामजी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग

0: दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल कियुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानव से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's consistent support for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. US Secretary of State Marco Rubio terms India as cornerstone of United States' approach towards Indo-Pacific region. Defence Minister Rajnath Singh asserts the country is becoming self-reliant in defence manufacturing, inaugurates artillery shell manufacturing plant at Shirdi in Maharashtra. Centre asks Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of next month for strengthening defence infrastructure. 90 people killed in a coal mine explosion in China. And Indian grapplers Suraj Vashisht and Sagar Singh clinch silver medals at Asian Under-23 Wrestling Championships in Vietnam. Prime Minister Narendra Modi and US Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Tirth in New Delhi this afternoon. Mr. Modi said in a social media post that India and the US will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio briefed Mr. Modi on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Mr. Rubio shared the US perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अल्पी कुमारी।
1: और मैं संजय किशोर।
0: विज्ञान भारती में हम विज्ञान, तकनीक, शोध, नवाचार और समाज पर उनके प्रभाव से जुड़े विषयों को आप तक पहुंचाते हैं।
1: आज के अंक में हम चर्चा करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, विज्ञान और तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका पर।
0: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और सुपर कंप्यूटर,
1: दुर्लभ खनिजों के निष्कर्षण की नई तकनीक,
0: विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और बिहार में प्रवासी पक्षियों की गणना, खरीफ फसलों के नई किस्में एवं जैविक उर्वरक,
1: साथ ही सुनेंगे विज्ञान जगत की बातें, मई माह में जन्मे और दिवंगत महान वैज्ञानिकों के योगदान तथा मई माह के प्रमुख विज्ञान दिवस।

गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा। इन 9 दशकों में आकाशवाणी ने केवल समाचार और मनोरंजन ही नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक के जन जागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत होती है वर्ष 1927 से, किंतु वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। बाद में 1957 में इसे आकाशवाणी नाम मिला। स्वतंत्रता के समय देश में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे और इनकी पहुंच लगभग 11% आबादी तक थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वर्तमान में आकाशवाणी के 470 से भी अधिक केंद्र कार्यरत हैं, जो देश के लगभग 92% भौगोलिक सीमा और 99% जनसंख्या तक पहुंच रखते हैं। यह दुनिया के सब

सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है। यह आंकड़ा केवल प्रसारण क्षमता का संकेत नहीं देता, बल्कि यह दर्शाता है कि आकाशवाणी ने भारत के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक विज्ञान और तकनीक की जानकारी पहुंचाने में कितनी प्रभावी भूमिका निभाई है। आज FM, डिजिटल रेडियो और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से विज्ञान आधारित कार्यक्रम नई पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष केवल प्रसारण की यात्रा नहीं, बल्कि ज्ञान, शिक्षा और वैज्ञानिक चेतना के प्रसार की गौरव गाथा है। स्वतंत्रता के बाद देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। कम उत्पादन, पारंपरिक

0: केवल प्रसारण की यात्रा नहीं बल्कि ज्ञान शिक्षा और वैज्ञानिक चेतना के प्रसार की गौरव गाथा है। स्वतंत्रता के बाद देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। कम उत्पादन, पारंपरिक खेती और वैज्ञानिक जानकारी के अभाव के कारण किसान आर्थिक कठिनाइयों में थे। ऐसे समय में आकाशवाणी किसानों का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मार्गदर्शक बनकर सामने आया। कोविड-19 महामारी के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। वहीं लोग वैक्सीन से डर भी रहे थे, कहीं घरेलू उपचारों को वैज्ञानिक सत्य मान लिया गया था। ऐसे समय में आकाशवाणी ने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के माध्यम से प्रामाणिक जानकारियां प्रसारित की। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित थी, वहां रेडियो सबसे विश्वसनीय माध्यम बना। बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा और समुद्री तूफान जैसे आपदाएं हर वर्ष लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं। ओडिशा चक्रवात, बिहार बाढ़, असम की बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाओं के दौरान रेडियो जीवन रक्षक माध्यम के रूप में सामने आया। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में आकाशवाणी ने स्वयं को तकनीकी रूप से आधुनिक भी बनाया है। विज्ञान एवं तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका के बारे में आइए जानते हैं ICMR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर VK श्रीवास्तव से।
1: 1990-92 के बीच में ICMR ने आकाशवाणी के साथ मिलकर के एक रेडियो डेट प्रोग्राम किया। डेट मतलब ड्रग, अल्कोहल, टोबैको, एजुकेशन। ये ऑल इंडिया रेडियो के 84 स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुआ प्रोग्राम, 30 एपिसोड का 16 लैंग्वेजेस में। तो ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। सबसे ज्यादा का फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। इसका इवेल्युएशन हम सिर्फ दो जगह कर पाए, कर्नाटक और गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में। उससे पता चलता था 4-6% लोगों में, कहीं 4% कहीं 6% लोगों ने इस प्रोग्राम को सुनने के बाद में इन बुरी आदतों से छुटकारा पाया। एक सबसे और अच्छी बात थी, ये अपने से छोटे बच्चों को सिखाते थे, उनमें बुराइयां बताते थे, उनको शिक्षित करते थे। दो तरह का फायदा हुआ इस प्रोग्राम से। तो हम तो चाहते हैं इस तरह के प्रोग्राम और होते रहने चाहिए। सन 86 के आसपास भारतवर्ष में HIV का दौर शुरू हुआ। सन 88 में फिर मैंने HIV पर एक नेशनल फीचर, आधे घंटे का फीचर किया। उसमें हिंदुस्तान भर में जा जाकर जो उस समय के अपने एक्सपर्ट थे, मुंबई में डॉक्टर गिलाडा थे, चेन्नई में डॉक्टर सोलोमन थे, और यहाँ के उनकी पेशेंट्स के इंटरव्यू किए, यहाँ होम्योपैथिक एक्सपर्ट्स, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स, एलोपैथिक एक्सपर्ट्स, WHO, इन सबके से इंटरव्यू करके इनकी रिकॉर्डिंग करके 30 मिनट का प्रोग्राम एक फीचर किया।
0: विज्ञान जगत में किए गए अपने योगदान को याद करते हुए आकाशवाणी में कार्यरत पूर्व ADG मनोज पटेरिया ने अपने अनुभव इस तरह साझा किए।
2: मैंने नाटक भी लिखे विज्ञान पर जो ब्रॉडकास्ट हुए। समय नाम का नाटक था जो टाइम मशीन के ऊपर था, एक प्रदूषण के ऊपर था, जिसमें ये था कि किस प्रकार से प्रदूषण आने वाले समय में मुश्किलात पैदा कर सकता है।
3: अब बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और नवीन अनुसंधानों की। संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एनर्जी और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। IIT पटना के निदेशक डॉक्टर TN सिंह,
4: यहाँ पर 3 शोध के एक नए आयाम खुले हैं जिनको हम इनक्यूबेशन सेंटर कहते हैं, TBI, TIH। इन तीनों का मैंडेट अलग अलग है और इसमें एक नए नवाचार और नए तरह की शोध करने वाले विद्यार्थियों, न केवल IIT पटना के लेकिन बिहार और सुदूर राज्यों से भी आए हुए विद्यार्थी इसमें काम करते हैं। नई एक शोध हमारे यहाँ के एक शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर किया है कि डिमेंशिया की बीमारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है और उसके तहत उनका पेटेंट भी ग्रांट हुआ है। इस तरह से हमारे यहाँ 100 से ऊपर के पेटेंट फाइल हुए हैं और बहुत सारे ग्रांट भी हुए हैं। अभी भाषिनी प्रोजेक्ट चल रहा है जो अंतर इंस्टीट्यूशनल कार्यक्रम है, जिसमें कि कुछ IIT, कुछ NIT, कुछ यूनिवर्सिटी सभी मिलकर के ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें एक भाषा में यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सुनने वाला अपनी लोकल भाषा में उसको समझ सके और उसको सुन सके और प्रश्न भी कर सके अपनी भाषा में, तो वक्ता के पास उसकी भाषा में जिसमें वो बोल रहा है उसको वो प्रश्न का उत्तर देगा। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही सफल प्रयोग है यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए और पहली बार IIT पटना से विदेश में बैटरी गई है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। बिहार में पहला सुपर कंप्यूटर IIT पटना के प्रांगण में स्थित है। हमारे यहाँ जो सुपर कंप्यूटर है ये ब्रह्मास्त्र का हम बोलते हैं, ये सुपर कंप्यूटर की टेराबाइट में इसकी स्पीड हो, टेराबाइट बहुत ही फास्ट स्पीड, त्वरित काम को निष्पादित करने का इसके अंदर जो है काम है। AI के क्षेत्र में काफी यहाँ काम हो रहा है।

0: केवल हम भाषा तक ही नहीं ले, हम एआई के क्षेत्र में फॉर्मेशन तक के अंदर किस तरह से 5G, 6G को स्पीड अप किया जाए उसके लिए भी, और क्वांटम में भी यहाँ का फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विभाग जो है वो राष्ट्रीय स्तर के जो मिशन है क्वांटम का उसके साथ जुड़े हुए हैं।
1: दुर्लभ खनिज यानी रेयर मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स, ये ऐसे खनिज हैं जो स्वच्छ ऊर्जा, विद्युत, वाहन, रक्षा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उन्नत विनिर्माण उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर 17 खनिजों को दुर्लभ खनिज का दर्जा दिया गया है, जिनकी मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि विश्व ऊर्जा परिवर्तन यानी एनर्जी ट्रांजिशन और हरित प्रौद्योगिकी की ओर अग्रसर है। भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन या ANRF देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए धन देने, बढ़ावा देने और रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए अनिवार्य सर्वोच्च निकाय है। ANRF ने IIT पटना के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रत हती के परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक से दुर्लभ खनिज के निष्कर्षण के अनुसंधान को ग्रांट दिया है।
2: जो आपका दुर्लभ खनिज है और हम लोग बोलते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स है, ये है कि आपका जो हम लोगों का डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होता है, तो वो सब चीजों में ये दुर्लभ खनिज इस्तेमाल होता है। हर देश में किसी किसी जगह में आपका ये दुर्लभ खनिज के जो डिपॉजिट्स होता है, तो ये डिपॉजिट से अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते जो हम लोग उनको बोलते हैं कि प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी रिसोर्स, तो वो उसके जियोलॉजिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है हमारे पास सेकेंडरी रिसोर्स होता है। सेकेंडरी रिसोर्स ये होता है कि जैसे ई वर्ज्य होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है आपका, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो भी हम लोग डे टू डे यूज करते हैं, तो सारा चीज एक यूजुअल लाइफ पीरियड के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाता है, और ऑब्सोलीट हो जाने के बाद क्या है कि उसमें उससे हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से उसको हम लोग निष्कासित करते हैं। निष्कासित करने के लिए आपके पास तरीका जो होता है, टेक्निकल तरीका, वो बोलते हैं कि पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी एंड बायोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी में हम लोग क्या करते हैं कि आपको हीट ट्रीटमेंट देते हैं, और उससे क्या है कि अगर आप मेटेरियल प्राइमरी सोर्स पे अगर कोई मेटेरियल है, प्लास्टिक्स है, तो उसको जलाया जाता है, तो उससे प्रदूषण हो सकता है। तो इसलिए दूसरा तरीका क्या होता है कि आपके पास हाइड्रोमेटलर्जी होता है। हाइड्रोमेटलर्जी में जनरली लोग क्या करते हैं कि एसिड और अल्काली यूज करते हैं, तो वो जो एसिड और अल्काली होता है वो जनरली कन्वेंशनली लोग उसका स्ट्रांग एसिड और अल्काली यूज करते हैं। तो उसके बदले में अगर कुछ अल्टरनेटिव्स ये है कि अगर आप कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड यूज करें, और नाउडेज क्या है कि नोबेल जो टेक्निक आया है उसको बोलते हैं कि हम लोग डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट, उससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो हमें ANRF से जो रिसर्च मिला है, इससे हम लोग करें सेकेंडरी रिसोर्स परमानेंट मैग्नेट। उससे परमानेंट मैग्नेट जनरली आप देखेंगे व्हीकल्स में यूज होता है, जनरली देखेंगे विंड मिल में यूज होता है। सो परमानेंट मैग्नेट जब वो ऑब्सोलीट हो जाता है, उस परमानेंट मैग्नेट से, और मेजोरिटी ऑफ द सोर्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट आपका चाइना है, तो वो सब आप एक्सपोर्ट सब बंद कर दे। जो डेवलप कंट्रीज है जिनके पास क्रिटिकल मिनरल का मेजोरिटी ऑफ द रिजर्व्स है, वो लोग इसका दुर्लभ खनिज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। जो अगर स्वावलंबी बनना है भारत को, तो इसलिए क्या है कि हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से ये सब पदार्थ और दुर्लभ खनिज निष्कासित करना है। तो इसी संदर्भ में ये जो परमानेंट मैग्नेट से क्रिटिकल मिनरल निष्कासित करना डीप यूटेक सॉल्वेंट लेके, ये एक हमारा पहल है जिसमें हम लोग काफी शोध कर चुके हैं, और आगे इस शोध को हम लोग स्केल अप करेंगे।
3: और अब हम जानेंगे प्रवासी पक्षी के बारे में। प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों किलोमीटर का सफर तय करके हमारे देश, हमारे शहर और हमारे इर्द गिर्द पहुंचते हैं, और इन्हीं पक्षियों के लिए 9 मई 2026 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था, हर पक्षी महत्वपूर्ण है, आपका नजरिया मायने रखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पक्षी दो प्रमुख वजहों से प्रवास करते हैं, भोजन और घोंसले की तलाश में ये पूरी दुनिया में प्रवास करते हैं। वर्ल्ड लाइफ के अनुसार विश्व के पक्षियों की 40% प्रजातियां अब घट रही हैं। प्रवासी पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उनकी घटती संख्या जल की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति कमजोर सहनशीलता का कारण बन रही है। भारत में हर साल 370 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। बिहार में 70 से अधिक प्रवासी पक्षियों सहित कुल 260 से ज्यादा प्रजातियों के 10,000 से अधिक पक्षियों की गणना की गई है। आप ई बर्ड बिहार पर जाकर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पटना, भागलपुर या और भी जो क्षेत्र हैं, उनमें हाल ही में देखे गए पक्षियों की सूची और चेकलिस्ट को देख सकते हैं। बिहार में प्रवासी पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर देव।

0: नारायण चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी डिपार्टमेंट, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर।
1: पिछले कई सालों से बिहार का जो वन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो और बॉम्बे की संस्था है बीएनएचएस, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों के प्रयास से पक्षियों की गणना शुरू हुई है। 2022 से इसकी शुरुआत हुई और ये 26 लगभग 5 गणना हो चुकी और इससे काफी अच्छे परिणाम आए हैं। हम लोगों ने बिहार के 3800 जिलों में जितने भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स है जहां पर इन पक्षियों का वास होता है, ये प्रवासी पक्षी जहां से आकर के पनाह लेते हैं, वहां पर इसकी गिनती शुरू हुई और इसमें जो भी पक्षी विशेषज्ञ थे, जो बर्डर थे, जो ट्रेनर थे, उन लोगों को इसमें लगाया गया और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑर्डिनेटर की बहाली हुई जो एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं। इससे अच्छे परिणाम आए तो धीरे धीरे हर साल कुछ कुछ वेटलैंड की संख्या भी बढ़ती चली गई, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो इसमें देखा गया कि एक अच्छा डाटा तैयार हो गया और आने वाले दिनों में बिहार के पक्षियों पर एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, जो इसके पहले 2012 में ही एक बुक पब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा, बर्ड्स ऑफ बिहार, उसका जो इन्फॉर्मेशन था उससे कहीं ज्यादा इस रिपोर्ट के बाद जो ये छपेगा, तो आने वाले दिनों में जो एकेडमिक्स के फील्ड में ये एक अच्छी जानकारी साबित होगी।
0: और अब जानते हैं विज्ञान जगत की नवीनतम घटनाओं के बारे में। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाला सुपर एल नीनो 1950 के बाद सबसे शक्तिशाली में से एक हो सकता है, जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह कई क्षेत्रों में बाढ़, सूखा, हीट वेव और जंगलों में आग जैसी घटनाओं को बढ़ा सकता है। जलवायु परिवर्तन इसकी प्रकृति को और अधिक अनिश्चित बना रहा है। सुपर एल नीनो का मतलब समुद्र के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की असामान्य बढ़ोतरी से है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। खासकर दक्षिण एशिया पर इसका अधिक असर पड़ता है।
2: भारत के असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली बार सैटेलाइट ट्रैक की गई गंगा सॉफ्ट सेल कछुए को छोड़कर संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। यह संवेदनशील मीठे पानी की प्रजाति का कछुआ है, जो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके व्यवहार, प्रवास और पर्यावरणीय खतरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए ट्रैक की जा रही है। यह पहल वैज्ञानिकों को इस जलीय सरीसृप प्रजाति के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इस प्रजाति को असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। और अब स्वाद और सेहत से भरपूर बिहार की पहचान मखाना के बारे में जानते हैं। सुपर फूड बन चुका मखाना अब वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। मखाना अनुसंधान केंद्र में मखाना की नई प्रजातियों और उत्पादन तकनीकों पर कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में ICAR राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार।
3: कोरोना काल के बाद से जब स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता काफी तेजी से बढ़ी है, तो मखाना में पाए जाने वाले जितने औषधीय गुण है, इसमें पाई जाने वाली जितनी पौष्टिकताएं हैं, तो इन गुणों के प्रति, इन स्वास्थ्य लाभों के प्रति बहुत तेजी से दुनिया भर में जागरूकता हुई है। इसमें मिनरल्स काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम। पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे न्यूट्रिशन के लिए, जैसे आयरन, जिंक इत्यादि बहुत अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। इसके अलावा ये जीरो फैट फूड इसे मानते हैं, इसमें फैट की मात्रा बहुत ही कम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें बहुत कम होता है, मधुमेह के जो मरीज हैं वो भी बहुत से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, मोटापे की समस्या से जो ग्रसित है वो भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि फैट इसमें बहुत कम है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के माध्यम से भी एक नई प्रजाति अभी विकसित की जा रही है और मेरा मानना है कि अगले एक वर्ष में ये वैरायटी आ जाएगी, जिसकी उत्पादन क्षमता यहां से करीब 15-20% और ज्यादा होगी। और इसके अतिरिक्त कांटे रहित मखाना के प्रभेदों के विकास पर भी अभी चर्चा हो रही है।
0: हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने की बात कही है, ताकि खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा को प्राप्त किया जा सके। बिहार के 13 जिलों में जैविक खेती की जा रही है। कृषि विज्ञान में खरीफ खाद्यान्न की नई प्रजाति के विकास एवं ब्लू अलगी जैविक उर्वरकों के उपयोग के संबंध में बता रहे हैं डॉक्टर दिव्यांशु शेखर, कृषि विज्ञान केंद्र जाले, दरभंगा।
4: जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को प्राथमिकता में रखा है कि हम रासायनिक उर्वरकों से हटकर प्राकृतिक या जैविक उर्वरकों की तरफ बढ़े, जिससे कि न कि हमारा फसल की उत्पादकता बनी रहे, साथ में ही उसकी गुणवत्ता में भी कोई ह्रास न हो। खास तौर पे धान की फसल में जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको हम अजोला कहते हैं, उसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है या आवश्यकता है वो 10-20% तक हम उसके द्वारा कम कर सकते हैं। साथ में ही इसके प्रयोग करने से हमारे भूमि में कार्बनिक तत्वों की भी मात्रा बढ़ती है और

0: साथ जो खरपतवार होते हैं उनकी भी संख्या कम होती है।
1: और अब अंतरिक्ष की बात। हाल ही में विश्व का पहला ऑप्टो SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च किया गया। यह एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट है। अंतरिक्ष क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों के बारे में हमसे बात की भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुअनंतपुरम के कुलपति प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी ने।
2: दो चीज होता है, देखिए आप जो 100 साल से हम लोग कोडाईकनाल से सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं, ये जरूरी इसीलिए है कि वो हमारे सबसे नजदीकी तारे है, उसका चुंबक क्षेत्र का कुछ परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन का एक 11 साल का एक हम बोलते हैं सोलर साइकिल जैसा है। तो कभी कभी उसमें चुंबक क्षेत्र थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी कभी थोड़ा कम होता है। एंड ये जो बढ़ना और कमना का जो ऑसिलेटन पैटर्न जो है, इसको स्टडी करने के लिए एक डायनमो मैकेनिज्म को हम लोग मैथमेटिकली हम इस्तेमाल करते हैं। सोलर डायनमो एक थ्योरी है जो हमको समझने के लिए ये करते हैं कि क्यों ऐसा सूर्य में चुंबक क्षेत्र 11 साल का एक पीरियोडिसिटी क्यों रहता है। बट ये तो एक थ्योरी हो गया, थ्योरी को तो मैच करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए। ऑब्जर्वेशन जितना लंबा होगा तभी इतना अच्छा है। इसीलिए ये कोडाईकनाल में ऑब्जर्वेशन हम लोग 1904 साल से चालू किया। उसी जमाना में तो फोटोग्राफिक प्लेट होता था, फिल्म होता था, हमने वो पूरा जो आर्काइव है उसको पूरा डिजिटाइज किया। आजकल के जमाना में तो कोई हाथ से तो कुछ करते नहीं, आपको इमेज होना चाहिए जो डिजिटल मोड है। एक्चुअली पुराना आर्काइव है उसको डिजिटाइजेशन करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। तो ये 100 साल का पूरा डेटा डिजिटाइज करने के बाद हमने अभी अध्ययन किया कि ये 11 ईयर साइकिल कैसा होता है। कभी कभी एक साइकिल थोड़ा बड़ा होता है, कभी थोड़ा छोटा होता है। जब बड़ा होगा उसमें सोलर जो तूफान वो और ज्यादा होगा, जब थोड़ा चुंबक क्षेत्र थोड़ा कम होगा तो वो भी जानकारी होना चाहिए। एक तो है कि अभी हाल ही में ये तूफान आने वाला है या नहीं आने वाला, ये जानकारी। और एक है कि पहले ऐसा तूफान होता था कि नहीं होता था। अभी सन जो स्टार वो मिडिल एज में है, वो जब बड़ा हो जाएगा, वो रेड जायंट हो जाएगा, हम तो बच नहीं पाएंगे। अभी मिलियनियर में नहीं होने वाला है तो अभी सोचने का नहीं है, बट ये सब जानकारी होना चाहिए।
3: मई का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद खास है। कई महानतम वैज्ञानिकों का जन्म हुआ जिन्होंने भौतिकी, चिकित्सा और रसायन विज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस महीने देश के कुछ ऐसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञों का जन्म हुआ जिन्होंने न केवल भारत में आधुनिक विज्ञान और परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। डॉक्टर राजा रमन्ना, आप भारत के परमाणु कार्यक्रम के शिल्पकार कहे जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1925 को तुमकुर कर्नाटक में हुआ। K.R. रामनाथन, आप भारत के मौसम विज्ञान और ओजोन अनुसंधान के जनक माने जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1893 को पलक्कड़ केरल में हुआ। हरीश चंद्र, जो कि गणित और भौतिकी के महान सेतु कहे जाते हैं, आपका जन्म हुआ 11 मई 1923 को कानपुर उत्तर प्रदेश में। आप महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के सहायक भी रहे। आपने लाई ग्रुप्स और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में क्रांतिकारी सिद्धांत दिए जिन पर आज भी क्वांटम मैकेनिक्स और आधुनिक गणित टिकी हुई है। हमारे अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय भटकर, आप भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। आपका जन्म 11 मई 1946 को मोरंबा महाराष्ट्र में हुआ। आपके नेतृत्व में सीडेक ने साल 1991 में भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया। आगे नाम आता है प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गव का, जिनका जन्म 3 मई 1961 को हुआ था। आप भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे। पूरी दुनिया जब सबसे बड़ी महामारी COVID-19 से जूझ रही थी, तब भारत की वैज्ञानिक लड़ाई का नेतृत्व करने वाले मुख्य चेहरों में डॉक्टर भार्गव का नाम सबसे आगे था। और अब हम जानेंगे मई महीने में दुनिया ने विज्ञान जगत के कुछ बेहद प्रतिष्ठित चेहरों को खोया है। डॉक्टर मोनिका मोंटे फाल्कोन, आपका निधन 14 मई 2026 को हुआ। आपने समुद्री पारिस्थितिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर विलियम चार्ल्स लिविंगस्टन, आपका निधन 2 मई 2026 को 98 वर्ष की आयु में हुआ। आपने सौर्य खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया।
1: आज विज्ञान पत्रिका के इस

0: अंक में आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को याद करते हुए हमारे सुधी श्रोताओं ने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार।
1: शब्द ब्रह्म के मूल मंत्र को चर्चा करते हुए देश के जन जन की आवाज एवं सूचना क्रांति के उद्घोष के प्रतीक आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के गौरवमयी तस्तित्व के 90 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण आकाशवाणी परिवार और इसे करोड़ों श्रोताओं को मैं प्रेम कुमार अध्यक्ष बिहार विधानसभा हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। 8 जून 1936 को अपनी औपचारिक यात्रा शुरू करने वाला आकाशवाणी आज केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के सामाजिक सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास का जीवन साक्षी है। स्वाधीनता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत का निर्माण तक आकाशवाणी राष्ट्र के सूत्र में पिरोने का अभूतपूर्व कार्य किया है। संकट और आपदा के समय इसकी प्रमाणिक खबरों ने हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है, जिससे इसकी विश्वसनीयता आज भी शून्य है। जन जागृति और राष्ट्र निर्माण सुदूर गांव, खेतों, खलिहानों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक ज्ञान और चेतना का प्रकाश फैलाने में इस माध्यम की भूमिका रहती है। कृषि सुधारों से लेकर मन की बात जैसे संवादों के माध्यम से इसने जन जागृति को एक नई दिशा दी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति तक सरल भाषा में पहुंचाकर आकाशवाणी ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के संकल्प को सिद्ध किया है। मैं इस अवसर पर आकाशवाणी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि अद्वितीय संस्थान आगे की अपनी स्पष्टता, राजभक्ति और सेवा से देश को आलोकित करता रहेगा। रेडियो की वह मधुर पुकार आज भी दिलों में बसती है। आकाशवाणी की हर धुन भारत की आत्मा से लगती है।
2: पंचायती राज्य मंत्री बिहार सरकार दीपक प्रकाश।
3: मैं दीपक प्रकाश, मंत्री पंचायती राज विभाग। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबों के सामाजिक जीवन में, देश के राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और साथ ही साथ जो हमारा देश का इतिहास है, उन सबों में आकाशवाणी का एक विशेष रोल रहा है। आजादी की लड़ाई हो या विभिन्न कालखंडों में जन आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने का काम हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने कमेंडेबल काम किया है। हम सबों के बचपन की यादें भी आकाशवाणी से जुड़ी हैं। क्रिकेट की कमेंट्री आकाशवाणी पे सुननी हो, पुराने गाने आकाशवाणी पे सुनने हो, या सभी विद्यार्थियों के लिए टॉक शोज के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने की बात हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने काम किया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आकाशवाणी ने अपने को बदलने का भी काम किया है। एनालॉग से डिजिटल तक का सफर आकाशवाणी का विशेष रूप से कमेंडेबल है। आज के इस चकाचौंध और दिखावटी मीडिया के दौर में आकाशवाणी का एक विशेष स्थान है, जो कि हमें अपने जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आकाशवाणी का विशेष रूप से हम धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहेंगे कि आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबों के बीच किया जाने वाला मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। एक बार पुनः आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे करने के लिए बधाई देते हुए, और आकाशवाणी हम लोगों के बीच जीवन का और हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आज के युवा आकाशवाणी से जुड़े, इस बात की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: मेरा नाम नीलम चौधरी है, मैं एक्स IAS ऑफिसर हूं और एक कथक डांसर भी हूं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आकाशवाणी का नाम आते ही एक स्पंदन सा होने लगता है और याद आता है अपने स्टूडेंट लाइफ का वो स्टडी टेबल जहां हमेशा एक ट्रांजिस्टर रखा रहता था। चूंकि मैं म्यूजिक की फील्ड से हूं, इसीलिए म्यूजिक के लगभग सब कार्यक्रम में आकाशवाणी का सुना करती थी, चाहे वो शास्त्रीय संगीत का हो या फिल्मी गानों का हो, गैर फिल्मी गानों का हो, भजन हो, लोक संगीत हो, मैं सब कार्यक्रम सुनती थी और वो सारे गाने मुझे कॉन्सेंट्रेशन देते थे और मुझे पढ़ाई अच्छी मेरी होती थी। मैंने महसूस किया है कि आकाशवाणी ने समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों को अपने कार्यक्रम में इनकॉर्पोरेट किया है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र से हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो, तकनीकी क्षेत्र से हो, नारी सशक्तिकरण की बात हो, लगभग सभी क्षेत्र के लोगों के लिए इसने कार्यक्रम बनाया है। बच्चों के लिए हो, शाम में 7:30 बजे अनंत सिंह का न्यूज होता था, वो तो बहुत ही लोकप्रिय था और बहुत स्पष्ट और बहुत अनबायस्ड कार्यक्रम हुआ करता था। उसके अलावा नाटक में हवा महल और लोहा सिंह का नाटक हम लोग बहुत इंतजार करते थे और सुनना करते थे। तो ये रिचनेस आकाशवाणी में शुरू से रहा है। आज भी हर वर्ग के लिए कार्यक्रम बनाना, उसे सक्सेसफुली प्रसारित करना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है आकाशवाणी की और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से 90 वर्षों का सफर तय हुआ, उससे भी और आगे बढ़कर आकाशवाणी अपना कार्यक्रम करे, लोगों में प्रिय रहे और हर वर्ग के लोग इसमें जुड़े रहें।
5: प्रोफेसर दिनेश सिंह, पद्मश्री, उपाध्यक्ष, जम्मू एवं कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद और पूर्व कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय।
6: पूर्ण रूप से अपने हृदय से बधाई दे रहा हूं आकाशवाणी से जुड़े सारे जो हमारे सहयोगी हैं, और मैं चाहता हूं कि इसको एक त्योहार के रूप में भारत में मनाया जाए, त्योहार के रूप में कि आकाशवाणी ने भारत के लिए क्या

0: किया।
1: मैं आकाशवाणी से बचपन से जुड़ा हूँ और आकाशवाणी से अमृत बरसता है पूरे देश में, विश्व में। मैंने यहाँ से इतनी रचनात्मक युक्तियों को ग्रहण किया है, इसने भारत की आत्मा को आकाशवाणी ने सींचा है। अब इसके जो एनिवर्सरी आ रही है, इसके 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम सबको इसमें भागीदारी लेनी है और इस उत्सव को पूर्ण रूप से अपने अपनी जगह मनाना है। आकाशवाणी ने भारत का बहुत भला किया है।

0: ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे नई जानकारियों, नवीन शोध परक बातों एवं विज्ञान जगत की हलचलों के साथ।
1: तो सीखें कुछ नया, सोचें कुछ अलग। आज की विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती को तैयार करने में स्वर सहयोग रहा अल्पी कुमारी और संजय किशोर का। संयोजक थे दिलीप झा और प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार। आकाशवाणी पटना।
0: नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं श्री सीपी माधवन नंबूदरी द्वारा प्रस्तुत कर्नाटक शास्त्रीय गायन। श्री सीपी माधवन नंबूदरी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी के नाम से जाना जाता है, आकाशवाणी के ए ग्रेड वोकल आर्टिस्ट हैं और कर्नाटक संगीत में 2 दशकों से अधिक के उत्कृष्ट योगदान के साथ अत्यंत सम्मानित कलाकार हैं। उन्होंने 500 से अधिक एकल प्रस्तुतियां की है, जिनमें से अनेक में प्रसिद्ध कलाकारों जैसे डॉक्टर टी के मूर्ति, डॉक्टर उमयालपुरम के शिवरामन, श्री श्रीमुष्णम राजा राव तथा श्री मन्नारगुड़ी ईश्वरन ने संगति की है। उनके कार्यक्रम विदेशों में भी आयोजित हुए हैं, जिनमें अमरीका, पेरिस, दक्षिण पूर्व एशिया तथा खाड़ी के देश शामिल हैं। केरल के चंगनाशेरी में जन्मे माधवन नंबूदरी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा अपने प्रथम गुरु श्री पीजी पद्म कुमार से प्राप्त की। बाद में वे स्वर्गीय टीवी शंकर नारायणन के शिष्य बने तथा उन्हें श्री पीआर कुमार केरल वर्मा और श्री कलन्यूर चंद्रशेखरन जैसे प्रसिद्ध संगीतज्ञों से उन्नत मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। वे आरएलवी संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय त्रिपोणितरा में पूर्व संगीत प्रवक्ता रह चुके हैं। उन्हें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से जूनियर फेलोशिप भी प्राप्त हुई है और मद्रास म्यूजिक अकादमी से सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का सम्मान भी प्राप्त हुआ है।
3: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। वी ब्रिंग यू अ कर्नाटिक वोकल कॉन्सर्ट बाय श्री सीपी माधवन नंबूदरी, पॉपुलरली नोन एज चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी। ही इज एन ए ग्रेट वोकल आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी and a highly respected performer with over 2 decades of distinguished contribution to Carnatic music. He has presented more than 500 solo concerts, many of them accompanied by eminent maestros such as Dr. T.K. Murthy, Shri Umayalpuram K. Shivaraman, Shri Shri Mushnam Raja Rao, and Shri Mannarkudi Ishwaran. His performances have also reached audiences abroad, including concerts in the United States, Paris, Southeast Asia, and Gulf countries. Born at Chengannasheri in Kerala, Madhavan Nambudri began his musical training under his first guru, Sri P.G. Padmakumar. He later became a disciple of late T.V. Shankaranarayanan and also received advanced guidance from renowned musicians Shri P.R. Kumara Kerala Varma and Shri Kalanyur Chandrasekharan, a former music lecturer at the RLV College of Music and Fine Arts, Tripunatra. He is also a recipient of the Junior Fellowship from the Ministry of Culture, Government of India, and has been honored with the Best Musician Award from the Madras.

0: as Music Academy.
1: The contribution of Akashavani to the growth of artists like me is truly immeasurable. Akashavani has provided a dignified platform that nurtures talent and strengthens the cultural fabric of our nation. Best wishes to Akashavani for completing successful 90 years.
2: आज रात के प्रसारण में इनके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर विद्वान तिरुविरा विजु एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार.
0: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही विल बी अकंपनीड बाय विद्वान तिरुविरा विजु एस आनंद ऑन वायलिन, विद्वान कोटयम जी संतोष कुमार ऑन द मृदंगम एंड श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार ऑन द घटम.
2: श्री चंगनाश्री माधवन नंबूदरी अपने गायन की शुरुआत स्वाति तिरुनाल की रचना परम पुरुषम से कर रहे हैं, जो राग ललित पंचम पर आधारित है और खंडु चापू ताल में निबद्ध है.
0: श्री सीपी माधवन नंबूदरी बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विद परम पुरुषम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ स्वाति तिरुनाल इन द राग ललित पंचमम सेट टू खंडु चापू ताल.

0: प्रस्तुत है केसी केशव पिल्ले की एक कृति श्री बालकृष्णा पाहि माम, जो राग पूर्वी कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू श्री बालकृष्णा पाहि माम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ केसी केशव पिल्ले इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू रूपक ताल।

0: अपने गायन को जारी रखते हुए श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अब प्रस्तुत कर रहे हैं श्यामा शास्त्री द्वारा रचित रावे हिमगिरी कुमारी, जो राग तोड़ी पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: The next item is रावे हिमगिरी कुमारी in the राग तोड़ी, set to आदि ताल, composed by श्यामा शास्त्री।

0: इसके साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी का गायन समाप्त होता है। इनके साथ वायलन पर विद्वान तिरुविजा विजु एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार ने संगति की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: With that, we conclude.

0: the vocal recital by Sri C.P. Madhavan Nambudiri in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Vidwan Thiruvida Viju S. Anand on the violin, Vidwan Kottayam G. Santosh Kumar on the mridangam, and Sri Vadapalli R. Krishna Kumar on the ghatam. This broadcast was recorded at Akashvani Thiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashvani.
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधित चेतावनी में बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण समुद्र में वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से रहेगी, जो कि बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। अतः मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल शाम तक के मौसम संबंधित पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो भागों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेंगी तथा द्वीपों के अधिकांश भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय रात्रि के 11:01 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम पर कल सुबह 6 हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत

1948 के ज्येष्ठ माह की तीसरी तिथि तदनुसार 24 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:28 और 28 सेकेंड हुए हैं। आज की हमारी पहली सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का अभिवादन करते हैं।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 5:30 हुए हैं। शुभारंभ

0: इसके तहत सुनिए अनमोल विचार।
1: सोच बड़ी रखो, क्योंकि छोटी सोच इंसान को वहीं रोक देती है, जबकि बड़ी सोच उसे नए सपनों और नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। जब इरादे ऊंचे हों तो मुश्किलें भी रास्ता बन जाती हैं।
0: अनमोल विचार के बाद आरंभ होता है भक्ति रस का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। तो श्रोताओं, सबसे पहले सुनिए मातृवंदना संवेद स्वरों में।